मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 29वीं तिथि, तदनुसार 19 मई सन 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 5:56 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी प्रातःकालीन सभा।

सुप्रभात आगरा, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। सुबह के 6 बजने को हैं, अब समाचार होंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्वे को समझौते के तहत 100 अरब अमेरिकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए

0: ये मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनास गहर स्तोरे भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।
0: प्रधानमंत्री ने भारत की तेज आर्थिक प्रगति, युवा शक्ति, निवेशकों के अनुकूल माहौल और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का उल्लेख करते हुए नॉर्वे से मछली उत्पादन, जहाज निर्माण, हरित ऊर्जा, नवीकरणीय ऊर्जा, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में अधिक निवेश का आह्वान किया। उन्होंने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की भी सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे।
2: श्री मोदी इटली की प्रधानमंत्री के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तरीय वार्ता करेंगे, जिसमें समुद्री सुरक्षा और मजबूत कनेक्टिविटी प्रमुख विषय होंगे। इटली भारत को केवल यूरोप ही नहीं बल्कि पूरे भूमध्य सागरीय क्षेत्र तक पहुंच प्रदान करता है। आपूर्ति श्रृंखला साझेदारी और रक्षा सहयोग के दृष्टिकोण से यह अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह 5 देशों की यात्रा केवल कूटनीतिक प्रयास नहीं है, ये भारत के भविष्य के ऊर्जा मार्गों, AI साझेदारी, सेमीकंडक्टर पहुंच, रक्षा निर्माण और वैश्विक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के प्रति प्रतिबद्ध है, लेकिन वो परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था होगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्ले ऑफ में जगह बना ली है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 96.1 मीटर पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 6:05 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। सबसे पहले नमन अपनी मातृभूमि को।

0: श्रोताओं, मानव जीवन श्रेष्ठ है, इसे ईश्वर का वरदान समझकर सत्कर्म करते हुए जीना ही मानव जीवन का लक्ष्य है।
1: दीपावली के एक दिन पूर्व चतुर्दशी तिथि मंगलवार के दिन सायंकाल मेष लग्न में हुआ था। राख कर देने की अदगल नहीं होने देते, उसका सदा मंगल ही करते हैं। श्री हनुमान जी

श्रोताओं, प्रार्थना शक्ति ही सर्वोच्च शक्ति है। प्रार्थना आत्मा से निकले भाव को दर्शाती है। प्रार्थना के समय हम जिसकी प्रार्थना करते हैं उसकी निकटता का अनुभव करते हैं।

श्रोताओं, हम जहां भी हों, जिस हाल में हों, सदैव ये एहसास करें कि हम ईश्वर के साथ व ईश्वर की शरण में हैं।

श्रोताओं, इस भक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब समाप्त होता है। इस कार्यक्रम में आज आपने जो स्वर सुने वे थे सुरेश वाडेकर, किशोरी अमोनकर और अनुराधा पौड़वाल।

0: अभी श्रोता सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं चिंतन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विचार।
1: अधिकांश लोग व्यक्तिगत रूप से किसी नवीन सामाजिक ढांचे के निर्माण में सहायक नहीं होते हैं, बल्कि वर्तमान ढांचे में ही अपने आप को ढाल लेते हैं। किंतु समाज को तो सतत परिवर्तनशील जगत में जीवित होना है, और आवश्यकता पड़ने पर व्यक्तियों को समाज के ढांचे में परिवर्तन करने के लिए प्रयत्न करना पड़ता है। अपने समय की चुनौती का मुकाबला विद्यासागर का एक महान विभूति के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। उन्होंने सामाजिक परिवर्तन की आवश्यकता को अनुभव किया और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए

सदैव अडिग बने रहे। उनके विचार आज भी अमूल्य हैं, सामायिक हैं। देश में फैली बहुत सी कुरीतियों को दूर करने के लिए उन्होंने बहुत से कार्य किए। सती प्रथा, बाल विवाह जैसी कुरीतियों को दूर करने में विद्यासागर जी ने अहम भूमिका निभाई है। विधवाओं की दशा देख उनके मन में सदैव एक विद्रोह की चिंगारी जन्म ले लेती थी। उन्होंने एक बार इसके विरोध में कहा था, सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों ने सैकड़ों हजारों बेगुनाह स्त्रियों की जिंदगी को दूभर बना दिया है। स्त्री समाज का अभिन्न अंग है, जननी है, माता है। भला बिना स्त्री के समाज की कल्पना की जा सकती है? तब नारी के प्रति ये भाव क्यों, ये अत्याचार क्यों? हमें अपने दिमागों से इस प्राचीन कुरीतियों को निकालना होगा, और ये तभी संभव है जब ज्ञान का प्रसार हो, स्त्रियों को शिक्षित किया जाए, तभी वो बराबरी का दर्जा पा सकेंगी। उन्होंने कहा था, केवल विद्या ही वो वस्तु है जो मानव के लिए उसके अपने मस्तिष्क के खजाने, मानवीय विचारों की गरिमा, मानवीय कल्पना के मूल्य तथा धार्मिक विधि विधान और विश्वासों से अलग मानव जीवन के महत्व को प्रकट करती है। विधवा विवाह के बारे में वो कहा करते थे, विधवा विवाह समाज का अभिशाप नहीं है, वरन वरदान है। ऐसा करके हम एक जीवन समय से पूर्व नष्ट होने से बचा लेते हैं, जो अपने आप में पुनीत कार्य है। एक बार उन्होंने कहा था, जहां चाह है वहां राह है, और शुभ कार्य का चाहे कोई कितना ही विरोध करे, उसकी प्रगति रुक नहीं सकती। जो लोग विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा के विरोधी हैं, उनके बारे में ईश्वर जी का कहना था, कैसे ताज्जुब की बात है कि समाज के वे लोग जो इसकी सबसे अच्छी विरासत का संरक्षक होने का दावा करते हैं, पीड़ित समाज की जीर्ण बीमारी के इलाज पर चिढ़ और दुख महसूस करते हैं। ईश्वरचंद विद्यासागर जी का मानना था, धर्म लोगों को जोड़ता है, तोड़ता नहीं। धर्मगत रूढ़ियां, रीति रिवाज तभी तक मान्य हो सकते हैं जब तक उनसे किसी का अहित न हो, लेकिन जब धार्मिक कट्टरता अभिशाप बनने लगे तो उसका त्याग ही उचित है। ईश्वर हमारे हृदयों में निवास करता है, हमारी आत्मा में है। जरूरत उसे तलाशने भर की है। कितना अच्छा हो हम जंगलों पहाड़ों में भटकने की बजाय परमपिता परमेश्वर को अपने सदकार्य में खोजने का प्रयत्न करें। दिन भर में यदि एक भी शुभ कार्य हम कर पाते हैं, किसी का हित हम कर पाते हैं, तो जान लीजिए हमारा दिन सार्थक हुआ।

96.1 मीटर पर ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब आपको देते हैं हमारी इस सभा के शेष और अगली दोनों सभा में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी।

अब से कुछ देर बाद 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। 6:45 पर सुनेगा कार्यक्रम खेती की बातें, जिसमें वार्ता होगी गर्मियों में कृषक क्रियाएं। वार्ताकार होंगे डॉक्टर विनय सिंह। कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा का प्रसारण समय रहेगा 7:10, जिसमें भेंट वार्ता होगी घुटने का दर्द और उपचार विषय पर। डॉक्टर राकेश मोहनिया से बातचीत करेंगे नीरज जैन। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम होगा आसपास 7:31 पर। फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि 8:45 पर। पुरानी फिल्मों से गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम गीत मंजूषा में 9:25 पर। और 10:00 सुनेगा फिल्म संगीत का ही कार्यक्रम सुर सरिता। लोक संगीत का कार्यक्रम होगा 9:45 पर, जिसमें हरिओम सिंह सिकरवार प्रस्तुत करेंगे कुछ लोक भजन। शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम होगा 10:30 पर, कलाकार होंगी इरा मुखर्जी। 11:00 सुनेगा कार्यक्रम आज के कलाकार, जिसमें आज के कलाकार होंगे अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 11:30 पर आप सुनेंगे समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। इस कार्यक्रम में आज का विषय रहेगा स्वस्थ खेल भावना, खेलों की आत्मा है। श्रोताओं, ये विषय है वर्ल्ड फेयर प्ले डे के संदर्भ में, जो कि आज मनाया जा रहा है। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आप सुन सकते हैं 12:00। नई फिल्मों से गीत आप सुनेंगे कार्यक्रम नए तराने में 12:30 पर। 1:15 पर सुनिएगा महिलाओं का कार्यक्रम घर संसार। दोपहर 1:45 पर सुनेगा कार्यक्रम सुगम संगीत, कलाकार होंगे सरदार जसवंत सिंह। भूले बिसरे गीत आप सुनेंगे 2:45 पर। 3:00 सुनेगा कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का पुनः प्रसारण।

संकलन सभा में शाम 5:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युववाणी। शाम 6 बजे सुनेगा कार्यक्रम ग्राम्यलोक। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे भेंट वार्ता, संतुलित उर्वरक उपयोग का टिकाऊ खेती में योगदान विषय पर डॉक्टर जगमोहन सैनी से बातचीत करेंगे अनेंद्र सिंह। शाम 6:30 पर सुनेगा कार्यक्रम मजदूर मंडल। विविधा क्रम में शाम 7:10 पर आप सुन सकते हैं वार्ता ज्ञान संवेदना और संस्कृति के पुरोधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। वार्ताकार होंगे दीपांशु शर्मा। श्रोताओं, ये वार्ता प्रसारित होगी हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि के संदर्भ में।

रात 8 बजे आप सुनेंगे देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती। 10:30 पर होगा शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे इस सभा के शेष और अगली दोनों सुबह में प्रसारित होने वाले मुख्य कार्यक्रमों की कार्यक्रम विवरण में। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरितमानस गान।

रावण ने छल कपट करके सीता जी का हरण किया। साधारण मनुष्यों की भांति दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं। सती के साथ अगस्त ऋषि के आश्रम से लौटते हुए शिव जी ने प्रभु को देखा तो उनके हृदय में बहुत आनंद हुआ। उन्होंने उन्हें सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और अपने मार्ग पर चलते रहे। सती के मन में शंकर की यह दशा देखकर संदेह उत्पन्न हो गया। उन्हें शंका हुई कि जो स्वयं जगत का ईश्वर है, देवता मनुष्य तथा मुनि जिसके सामने सिर नवाते हैं, क्या वह एक राजपुत्र को इस प्रकार प्रणाम करेगा?

0: अभी श्रोता सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता गर्मियों के लिए कृषक क्रियाएं विषय पर। वार्ताकार हैं डॉक्टर विनय सिंह।
1: मृदा को पौधों की जड़ों की वृद्धि के लिए ढीला करना आवश्यक है, परंतु मृदा को इतना ढीला या पोला भी नहीं बनाना चाहिए कि पौधे बढ़वार करके उसमें पौधों की जड़ें स्थिर भी न रह सके। पौधों की आवश्यकता अनुसार भूमि में जल का संचय रह सके तथा मृदा के सभी आवश्यक तत्व पौधों को आसानी से प्राप्त हो सके। खेत में बीज बोने तक जितने भी कृषि कार्य करते हैं उन्हें प्रारंभिक कर्षण कहते हैं तथा खेत में बीज बोने के बाद फसल की कटाई तक जितनी भी कृषि यांत्रिक क्रियाएं की जाती हैं उन्हें द्वितीय कर्षण कहते हैं। गर्मियों में जुताई के द्वारा जायद की फसल लेने के लिए खेत को तैयार किया जाता है, बाद में पाटा चलाकर मृदा में नमी को सुरक्षित रखते हैं। तैयार किए गए खेत में

बीज मिट्टी के संपर्क में आसानी से आ जाते हैं और अंकुरण के लिए नमी प्राप्त कर लेते हैं। छोटे बीजों को बोने के लिए अधिक जुताई व बड़े आकार के बीजों को बोने के लिए कम जुताई की आवश्यकता होती है। मृदा से अधिक वायु संचार को बनाए रखने भी आवश्यक होता है। मृदा में वायु मृदा रंध्रों में पाई जाती है। इन्हीं रंध्रों में मृदा जल भी होता है। अधिक बड़े रंध्रों में वायु अधिक व वायु का संचालन भी अधिक होता है। गर्मियों में जुताई करने से मृदा में वायु एवं जल दोनों ही उचित मात्रा में उपस्थित रह सकते हैं। वायु की उपस्थिति में अनेक लाभदायक जीवाणु जैविक पदार्थों का विघटन करके पौधों के अप्राप्य तत्वों को उपलब्ध तत्वों में बदल देते हैं। इसके अतिरिक्त अनेकों जीवाणु क्रियाओं के लिए वायु की उचित मात्रा आवश्यक है। मृदा में 1-2% तक ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। जड़ों के वातावरण में 10-20% तक कार्बन डाइऑक्साइड के उपस्थित होने पर जड़ों की वृद्धि रुक जाती है। जिन खेतों में गर्मी की जुताई होती है उसमें कणों के समुच्चय बन जाते हैं, जिससे रंध्रों का आकार बड़ा हो जाता है। रंध्रों का आकार बड़ा होने के कारण मृदा में जल का नीचे की ओर संचार बढ़ जाता है। जैसे ही वर्षा होती है उसके पानी को भूमि की ऊपरी सतह सोख लेती है और नीचे की ओर चला जाता है। इस प्रकार मृदा कटाव द्वारा जल कम हो जाता है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए खेत को गर्मियों में जोतना अत्यंत लाभप्रद होता है। जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करना आवश्यक है, जिससे कि खरपतवारों की जड़ें ऊपर की सतह में आकर धूप वायु से नष्ट हो सके। गर्मियों में जुताई करने से अनेक कीट या इनके प्यूपा लार्वा आदि जुताई के समय भूमि की ऊपरी सतह पर आ जाते हैं। यहाँ पर ये कीड़े मकोड़े पक्षियों द्वारा खा लिए जाते हैं या तेज धूप में नष्ट हो जाते हैं। जुताई करते समय बहुत से कीड़े मकोड़े नष्ट हो जाते हैं और उनके पोषण के स्थान भी नष्ट हो जाते हैं। फसलों के कुछ हानिकारक रोगाणु व फफूंदी आदि जो मृदा के सड़े गले जैविक पदार्थों या फसलों के अवशेषों पर पनपते रहते हैं, गर्मी की जुताई के कारण नष्ट हो जाते हैं। गेहूं आदि का स्कैब रोग जो जिब्रेला नामक कवक द्वारा फैलता है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। अनेकों कवकों द्वारा मूल निगलन व पौधा अंगमारी जैसे पौधों के आक्रमण से फसलों को बचाया जा सकता है। मक्का व ज्वार के डंठल पर स्कैब रोग के जीवाणु शरण पाकर रबी में गेहूं या जौ की फसल पर आक्रमण करते हैं। यह सभी रोगाणु गर्मियों में कर्षण क्रिया करने से तेज धूप के कारण नष्ट हो जाते हैं। गोबर या कंपोस्ट खाद को खेतों में ढेरों के रूप में नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसा करने से अनेकों पोषक तत्व धूप या वायु से नष्ट हो जाते हैं। अतः जैविक खादों को भूमि की सतह पर बिखेर कर शीघ्र जुताई द्वारा खेतों में मिला देना चाहिए। गर्मियों में जुताई करके फसलें के अवशेष को भी मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना चाहिए। गर्मियों में की जाने वाली कर्षण क्रियाओं में निराई गुड़ाई भी महत्वपूर्ण है। यह कर्षण क्रिया बीज बोने के बाद खड़ी फसल में की जाती है। खड़ी फसल में निराई गुड़ाई करने से मृदा में वायु का संचार आसानी से होता रहता है। ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन अंदर जाती है और श्वसन क्रिया से तथा कार्बनिक पदार्थों के विघटन से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड आदि जैसे बाहर निकलती हैं। पौधों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। दलहनी फसलों की जड़ों की ग्रंथियों में रहने वाले जीवाणु वायुमंडल से नाइट्रोजन स्थिर करते हैं। उनको भी वायु से ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन लेने की आवश्यकता होती है। मिट्टी की सतह से मृदा जलवाष्प के रूप में सदैव उड़ती रहती है। गर्मियों में यह क्रिया और तीव्रता से होती है। जल की इस हानि को रोकने के लिए कृषि यंत्रों द्वारा सतह की मिट्टी को खुरचकर ढीली तथा भुरभुरी बना देना चाहिए। मिट्टी ढीली और भुरभुरी होकर सूख जाती है और मल्च का कार्य करती है। निराई गुड़ाई का एक मुख्य उद्देश्य खरपतवारों को नष्ट करना भी है। खरपतवारों को नष्ट करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करना अत्यंत आवश्यक होता है। जुताई एवं निराई गुड़ाई कर्षण क्रियाओं को लेकर देश में जो अनुसंधान हुए हैं

0: उन्होंने हमारे दृष्टिकोण में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिए हैं। खरपतवार नाशी रसायनों की उपलब्धि से अब बहुत सी फसलों में जुताई एवं निराई गुड़ाई द्वारा खरपतवारों को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं रह गई है, क्योंकि इन कर्षण क्रियाओं में खर्च अधिक आता है। अनुसंधानों से यह भी स्पष्ट हो गया है कि मक्का एवं गेहूं की खेती कम जुताई करके भी की जा सकती है, परंतु बीज की बुवाई के लिए सीड ड्रिल का प्रयोग करना पड़ता है और ऐसे खरपतवार नाशियों का भी प्रयोग करना पड़ता है जिनका कोई बुरा प्रभाव न हो। प्रत्येक आई क्षेत्र में किसान भाइयों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए जुताई की आधुनिक विचारधारा न्यूनतम कर्षण को अपनाना चाहिए। इसका अर्थ है कि उपज में कोई कमी किए बिना मिट्टी को कम से कम तैयार करने की कर्षण क्रियाएं करना।
1: अभी श्रोता सुन रहे थे वार्ता गर्मियों के लिए कृषक क्रियाएं विषय पर। वार्ताकार थे डॉक्टर विनय सिंह और कार्यक्रम था खेती की बातें। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। इस समय सुबह के 6:55 होने को है। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और नॉर्वे को 100 अरब अमरीकी डॉलर निवेश और भारत में 10 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य को हासिल करने के लिए मिलकर प्रयास करना चाहिए। श्री मोदी कल ओस्लो में भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। इस सम्मेलन में नॉर्वे के क्राउन प्रिंस हाकोन और प्रधानमंत्री योनस गहरस्तुर भी शामिल हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने व्यापार और आर्थिक साझेदारी समझौते के लागू होने के बाद दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश में हुई वृद्धि की सराहना की।
1: आज नॉर्वे और भारत के बिजनेस और रिसर्च कम्युनिटी के बीच होना, ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। कुछ साथियों को जो सुना, ये सुनकर ये विश्वास होता है कि हमारी पार्टनरशिप की नींव बहुत ही मजबूत है। ये केवल संभावनाओं की नहीं, ये एक प्रूवन पार्टनरशिप है।

0: प्रधानमंत्री ने भारत की हरित ऊर्जा नीति और नॉर्वे की स्वच्छ ऊर्जा, समुद्री क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करने तथा जलवायु वित्तीय सहयोग में वैश्विक नेतृत्व की सराहना की। उन्होंने दोनों देशों के व्यापारी समुदाय से नए सहयोग क्षेत्रों की पहचान कर आर्थिक साझेदारी मजबूत करने का आग्रह भी किया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज शाम इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से भी बातचीत करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया है। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने नई दिल्ली में देश में वाटर मेट्रो सेवाओं की शुरुआत को लेकर समीक्षा बैठक की। श्री सोनोवाल ने कहा कि केंद्र सरकार पहले चरण में गुवाहाटी समेत 18 शहरों में वाटर मेट्रो सेवा शुरू करने की योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि वाटर मेट्रो सेवा पर्यावरण के अनुकूल और किफायती सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था बनेगी। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट को जल्द ही संसद के दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ने पिछले वर्ष 12 अगस्त को इस समिति का गठन किया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने को मंजूरी दे दी है। ये कार्रवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश और सीबीआई की जांच के बाद की गई है। संदीप घोष पर मेडिकल कॉलेज में खरीद से जुड़े मामलों में वित्तीय अनियमितताओं का आरोप है। सीबीआई ने भ्रष्टाचार और आपराधिक साजिश के तहत मामला दर्ज किया है, जबकि प्रवर्तन निदेशालय भी धन शोधन के पहलुओं की जांच कर रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के अनुरोध पर उन्होंने ईरान पर सैन्य हमले को फिलहाल स्थगित कर दिया है। श्री ट्रंप ने कहा कि संघर्ष विराम के लिए गंभीर वार्ता हो रही है, जिसके कारण सैन्य हमलों को स्थगित कर दिया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जल्द ही ऐसा समझौता हो सकता है जो अमरीका और पश्चिम एशिया के देशों को स्वीकार्य होगा। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से जयपुर में शाम 7:30 बजे से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। Prime Minister Narendra Modi has appreciated the growth in bilateral trade and investment following the entry into force of Trade and Economic Partnership Agreement, TEPA. Attending the India-Norway Business and Research Summit in Oslo, along with Norway Crown Prince Haakon and Prime Minister Jonas Gahr Støre, Mr. Modi underlined the stakeholders on both sides should make efforts to achieve the investment target of $100 billion under TEPA and the consequent creation of 1 million jobs in India.
2: यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट लागू किया। ये यूनिक और स्पेशल एग्रीमेंट हमारे बीच टैलेंट, टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट और

0: होना, किसी तरह का इन्फेक्शन होना, या जो रूमेटिक फीवर इसे हम गठिया वायु बोलते हैं, उस तरह की बीमारी में भी जोड़ों में दर्द होने लगता है।
1: अच्छा, तो ये जो आर्थराइटिस बोलते हैं, तो ये भी ये घुटने का दर्द ही होता है?
0: हाँ, अर्थाइटिस को एक तरह से घुटने के दर्द को ही अर्थाइटिस बोलते हैं, ये एक बहुत बड़ा शब्द है। कुछ लोग गठिया वायु को भी अर्थाइटिस बोलते हैं, पर दोनों चीजें अलग अलग हैं। अर्थाइटिस के अंदर जोड़ की अंदर की संरचना प्रभावित होती है और गठिया वायु के अंदर जोड़ के बाहर की संरचना प्रभावित होती है।
1: डॉक्टर साहब, क्या ये रोग वंशानुगत है क्या?
0: नहीं, इस तरह का रोग वंशानुगत नहीं होता है, पर ये कोइंसिडेंस है कि कभी कभी फादर को या मैटरनल साइड में किसी को हो और बच्चों को भी इस तरह की बीमारी हो जाती है, परंतु इस तरह का रोग वंशानुगत नहीं होता है नॉर्मली।
1: अच्छा, महिलाओं और पुरुषों में होने वाला ये जो आर्थराइटिस है, इसके या दर्द है या दर्द की सीमा है, तो इसमें कुछ अलग अलग होता है या क्या है? ये
0: जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा होता है
1: जी।
0: बाकी जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होती है वो पुरुषों में महिलाओं की अपेक्षा ज्यादा होती है।
1: अच्छा, एक चीज हम अक्सर देखते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो वैसे वैसे घुटने के दर्द के रोगियों की संख्या में इजाफा होता जाता है, तो इसका क्या कारण है?
0: उसकी मुख्य वजह हम लोगों की जीवन शैली है। जो हम लोग पालथी मारते हैं, कूच मार के, जो हमारी इंडियन स्टाइल है, उसकी वजह से जॉइंट के अंदर वियर एंड टियर ज्यादा होता है। जो हम लोग रोजाना भाग दौड़ रहे हैं जिस तरह से, उसके सड़कों की वजह से तो वियर एंड टियर जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा आर्थराइटिस की संभावना ज्यादा होगी।
1: अच्छा, क्या जैसे हमारे खान पान का भी कुछ प्रभाव पड़ता है, विशेष रूप से पानी का प्रभाव?
0: हाँ, पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने की वजह से जॉइंट के अंदर आर्थराइटिस की संभावना अधिक बढ़ जाती है। वजन अधिक हो या यूरिक एसिड, जो लोग मांसाहारी होते हैं उन लोगों को भी आर्थराइटिस की संभावना यूरिक एसिड अधिक होने की वजह से अधिक हो जाती है।
1: तो ये तो विशेष रूप से कारण रहे कि घुटने का दर्द क्यों होता है और क्या क्या कारण होते हैं, इससे बचाव के लिए क्या उपाय करने चाहिए?
0: इसके बचाव के लिए सबसे अधिक बात यह है कि हम लोग अपनी नित्यक्रम प्रतिक्रिया में यदि हम लोग एक्सरसाइज करें, फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है आर्थराइटिस को रोकने में।
1: यानी कि जो नियमित अभ्यास है,
0: व्यायाम है, योगाज है, इनको नियमित करेंगे तो हम लोग इस बीमारी से को कम कर सकते हैं और इस बीमारी से बच भी सकते हैं,
1: काफी हद तक बच सकते हैं।
0: हाँ।
1: अच्छा, अगर किसी को ये प्रॉब्लम हो जाए तो उसके लिए क्या उपचार है?
0: उपचार में हम लोगों का सबसे बड़ा ये होता है कि जो दर्द है जो दर्द है वो दर्द के लिए दर्द कम करना, दूसरा जो जॉइंट्स के मूवमेंट है तो उस मूवमेंट को बरकरार रखना और किसी तरह की विकलांगता ना आए उस चीज को रोकना।
1: अच्छा, किसी व्यक्ति को कैसे मालूम पड़ेगा कि उसको ये प्रॉब्लम शुरू हो रही है या होने वाली है?
0: आर्थराइटिस की सबसे बड़ा लक्षण इसमें दर्द और सूजन, दो ही इसके लक्षण होते हैं। लास्ट स्टेज में मूवमेंट इसमें अफेक्टेड होते हैं।
1: अच्छा, तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर किसी व्यक्ति के घुटने में दर्द हो रहा है और लगातार दर्द हो रहा है तो उसको ये संभावना हो सकती है इस रोग के होने की।
0: बिल्कुल,
1: तो इसके लिए उसको तुरंत ही डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए और जो भी कुछ डॉक्टर सुझाएं या सुझाव दें उसके अनुसार कार्य करना चाहिए।
2: अभी श्रोता सुन रहे थे भेंटवार्ता घुटने का दर्द और उपचार विषय पर। डॉक्टर राकेश मोहनिया से बातचीत कर रहे थे नीरज जैन और कार्यक्रम था स्वास्थ्य चर्चा। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं संवेद स्वर में देशगान।

0: देश को प्रदूषण मुक्त बनाए, मन में ये संकल्प बनाए।
1: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
0: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
1: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
0: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं सोनी निगम। पहले मुख्य समाचार। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री

0: नरेंद्र मोदी को कल नॉर्वे के महामहिम राजा हेराल्ड पंचम द्वारा वहां का सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट का ग्रैंड क्रॉस प्रदान किया गया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल, मनोहर लाल और किरेन रिजिजू सहित कई अन्य मंत्रियों ने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि ये 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व के विकास का प्रतीक है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए प्रधानमंत्री श्री मोदी को इस उपलब्धि पर बधाई दी है। इससे पहले 17 मई को स्वीडन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने यहां के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई प्रदेश कैबिनेट की बैठक में 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में ग्रामीण निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण के निर्धारण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई। प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन समन्वय विभाग के मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि ये आयोग पंचायत चुनावों में पिछड़े वर्गों को आरक्षण प्रदान करने के लिए उनके सामाजिक और राजनीतिक पिछड़ेपन की जाँच करेगा।
1: आप सब लोग जानते हैं बड़ा प्रदेश है, 59,000 से भी ज्यादा पंचायतें हैं, हमारे सैकड़ों विकास खंड हैं, 75 जनपद हैं। तो पंचायत चुनाव कराने से पहले हमें आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना और भी चीजों को देखना है। उसके लिए अब आयोग अध्ययन करेगा और आयोग जैसा रिपोर्ट देगा उसके आधार पर पंचायत के चुनाव की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।
0: मंत्रिमंडल ने कल दो प्रमुख मेट्रो प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी। एक रिपोर्ट।
2: कैबिनेट बैठक में लखनऊ मेट्रो फेज 1B ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर चार बाग से वसंत कुंज परियोजना के लिए MOU को स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में आगरा मेट्रो रेल कॉरिडोर 2 में आगरा कैंट से कालिंदी बिहार तक मेट्रो स्टेशन निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण के प्रस्ताव को भी सहमति दी गई। बैठक में लखनऊ के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के नए परिसर में 1010 बेड का मल्टी स्पेशलिटी इमरजेंसी सेंटर अस्पताल, शिक्षण ब्लॉक तथा नए OPD ब्लॉक के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की गई। समाचार कक्ष से प्रेमचंद्र गुप्ता।
0: मंत्रिमंडल ने पशु चिकित्सा के छात्रों के इंटर्नशिप भत्ते को 4,000 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रूपए प्रतिमाह किए जाने और मिर्जापुर में 2,799 करोड़ रूपए की लागत से बिजली ग्रिड उन्नयन के प्रस्ताव पर भी मुहर लगा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा 2024 के तहत विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार के साथ प्रदेश को विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ाने में राज्य के प्रतिभाशाली युवाओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। इसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश देश के ग्रोथ इंजन के रूप में अपनी पहचान बना रहा है।
3: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया। एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी। उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है, अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और X हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने कहा है कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आयात में व्यवधान के बावजूद देश के तेल शोधक कारखाने सामान्य रूप से काम कर रहे हैं और भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त भंडार है। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल वाराणसी में कहा कि देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए हर संभव कदम उठा रही है। वाराणसी के जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति दिशा की बैठक की अध्यक्षता के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए श्री पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति पुनः आश्वस्त किया। वहीं पश्चिम एशिया में हाल की घटनाओं पर कल नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में पेट्रोल, डीजल, LPG और प्राकृतिक गैस का पर्याप्त भंडार है।
4: कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई 70%

0: परसेंट पर अभी बनी हुई है। मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 पीएनजी कनेक्शंस को गैसीफाई किया गया है। 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने पीएनजी कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है।
1: लखीमपुर खीरी में कल सुबह एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की मौत हो गई। ये हादसा उस वक्त हुआ जब पीलीभीत बस्ती राजमार्ग पर अदालिसपुर गांव के पास एक तेज रफ्तार ट्रक और सवारी वाहन की आमने सामने से टक्कर हो गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस सड़क दुर्घटना में हुई जान माल की हानि पर दुख व्यक्त किया। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए अनुग्रह राशि देने की घोषणा भी की गई है। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने कल गोरखपुर में 46वीं जूनियर नेशनल रोइंग चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। इस प्रतिस्पर्धा में 20 राज्यों की टीमें आज से 10 स्वर्ण सहित 30 पदकों के लिए दावेदारी करने उतर रही हैं। चैंपियनशिप के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय मंत्री श्री पासवान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के परिणाम स्वरूप गोरखपुर स्पोर्ट्स हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि गोरखपुर का रामगढ़ ताल अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आज से 22 मई तक प्रदेश के अधिकांश जिलों में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस के पार जाने की आशंका है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रशासन को पूरी सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। इस बीच केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने अत्यधिक गर्मी और लू की स्थिति से निपटने के लिए व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श जारी किया है।
2: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें। इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है। परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं। में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है। रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: मौसम विभाग ने आज से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की जबकि न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना जताई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। नॉर्वे के सर्वोच्च सम्मान रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई मंत्रियों ने 32वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रधानमंत्री को दी बधाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में 12 प्रस्ताव पारित। पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन और लखनऊ सहित आगरा मेट्रो के विस्तार को मिली मंजूरी। केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने देशवासियों को ईंधन की उपलब्धता के प्रति किया आश्वस्त, कहा देश में पेट्रोल और गैस की कोई कमी नहीं। और प्रदेश में भीषण गर्मी और लू का दौर जारी, केंद्रीय आयुष मंत्रालय ने जारी किया व्यापक जन स्वास्थ्य परामर्श। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
3: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक ना पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
4: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान कर

रेडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:31 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। स्वीकार कीजिए अपने रेडियो साथी सुरेखा दुबे का नमस्कार। श्रोताओं, जनपद के सभी 15 विकास खंडों में 23 मई तक वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांगजन पेंशन के लिए शिविर आयोजित किए जाएंगे। वहीं नगर निगम के सभी वार्ड और नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में योजनाओं का प्रचार प्रसार किए जाने के लिए भी शिविर आयोजित होंगे। डीएम ने बताया है कि जनपद के समस्त विकास खंडों में क्लस्टरवार ग्राम पंचायतों में पेंशन शिविरों का आयोजन किया जाना है। सहायक विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी को शिविर प्रभारी नामित किया गया है। शिविरों का आयोजन सुबह 10:30 से दोपहर 2 बजे तक निर्धारित स्थलों पर किया जाएगा।

श्रोताओं, दयालबाग और खंदौली के बीच पुल बनाया जाएगा जिससे एक दर्जन से अधिक गांव के लोगों के आवागमन का रास्ता आसान होगा। उनका समय और पेट्रोल दोनों की बचत होगी। उप परियोजना प्रबंधक ने बताया है कि पुल 12 मीटर ऊंचा, 500 मीटर लंबा होगा।

श्रोताओं, जनगणना 2027 की स्वगणना प्रक्रिया को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर किसी व्यक्ति के दो जिलों में घर हैं तो उसकी गणना कहाँ होगी। इसी तरह विवाहित बेटी, बाहर नौकरी या पढ़ाई कर रहे बेटे, किराएदार और विवादित संपत्ति को लेकर भी लोग भ्रम में हैं। जनगणना कार्य निदेशालय उत्तर प्रदेश के डिप्टी डायरेक्टर ने स्पष्ट किया है कि किसी व्यक्ति के दो जिलों में मकान हो सकते हैं और दोनों मकानों का रिकॉर्ड बनेगा, लेकिन व्यक्ति की जनगणना केवल उसी स्थान पर होगी जहां वह सामान्य रूप से रहता है, जहां व्यक्ति सामान्य तौर पर रहता है। जनगणना में उसी को आधार माना जाएगा। 7 मई से शुरू हुई स्वगणना 21 मई तक चलेगी। इसके बाद 22 मई से गणना कर्मी घर घर जाकर जानकारी लेंगे। स्वगणना आईडी उनके सत्यापन के बाद ही पूरी मानी जाएगी। अधिकारियों के अनुसार विवाहित बेटी सामान्य रूप से अपने ससुराल में गिनी जाएगी। वहीं जो लोग पढ़ाई या नौकरी के कारण लंबे समय से दूसरे शहर में रह रहे हैं, उनकी गणना वहीं होगी जहां वे रह रहे हैं। किराएदारों का रिकॉर्ड भी उसी मकान में बनेगा जहां वे रह रहे हैं। यदि एक ही मकान में कई किराएदार रहते हैं तो सभी का अलग अलग रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा। जनगणना अधिकारियों ने बताया कि जो लोग एक साथ रहते हैं और एक ही रसोई में भोजन बनता है, उन्हें एक परिवार माना जाएगा। यदि एक ही मकान में अलग अलग रसोई है तो उन्हें अलग अलग परिवार माना जाएगा। जैसे कि यदि एक मकान में मकान मालिक और तीन किराएदार रहते हैं तो सभी अलग अलग स्वगणना कर सकेंगे। यदि कोई व्यक्ति अदालत में विचाराधीन या विवादित संपत्ति को स्वगणना में दर्ज करता है तो उसका रिकॉर्ड भी लिया जाएगा। इसके लिए किसी दस्तावेज की जरूरत नहीं होगी। अधिकारियों ने बताया है कि स्वगणना में गलत या फर्जी जानकारी देने पर जनगणना कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है। गलत जानकारी देने या सवालों का जवाब देने से मना करने पर ₹1,000 तक का जुर्माना हो सकता है। वहीं यदि कोई जनगणना कर्मी अनुचित सवाल पूछता है, किसी की निजी जानकारी साझा करता है या जानबूझकर गलत जानकारी भरता है तो उसके खिलाफ 3 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। श्रोताओं, स्वगणना पोर्टल पर लोगों की निजी जानकारी सुरक्षित रखने के लिए साइबर सुरक्षा और इंक्रिप्शन तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। किसी व्यक्ति की निजी जानकारी सार्वजनिक नहीं की

जाएगी। सौगणना पूरी होने के बाद लोगों को 11 अंकों की SEID मिलेगी जो H अक्षर से शुरू होगी। प्रगणक के आने पर यही आईडी दिखानी होगी। किसी से भी OTP साझा ना करें। जनगणना कर्मी की पहचान उसके QR कोड वाले पहचान पत्र से सुनिश्चित की जा सकती है।

श्रोताओं, प्रदेश सरकार ने जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 की नियमावली में संशोधन करते हुए इसमें कई बदलाव किए हैं। जन्म से 21 दिन के बाद पंजीकरण कराने पर विलंब शुल्क अब पहले से ज्यादा देना होगा। 21 से 30 दिन के अंदर पंजीकरण कराने पर 2 रुपए की जगह 20 रुपए, 30 दिन से 1 साल के अंदर पंजीकरण कराने पर 5 रुपए की जगह 50 रुपए, जबकि 1 साल बाद पंजीकरण कराने वालों को 10 रुपए की जगह 100 रुपए देने होंगे। 1 वर्ष से ज्यादा देरी पर पंजीकरण में जिला मजिस्ट्रेट या एसडीएम से भी अनुमति लेनी होगी।

श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से बीएससी कृषि करने के लिए छात्रों की पहली पसंद आरबीएस कॉलेज है। यहां से छात्र बीए, बीएससी, बीकॉम के साथ ही बीएससी कृषि में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। स्नातक के साथ ही परास्नातक कार्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं। आरबीएस कॉलेज के प्राचार्य ने बताया है कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएससी कृषि में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। छात्र विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर समर्थ पोर्टल पर पंजीकरण कराने के बाद कॉलेज की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इंटरमीडिएट के प्राप्त अंकों से मेरिट तैयार की जाएगी।

श्रोताओं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय ने विधि और बीएड के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया है। अब छात्र 21 मई तक परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। 25 मई से परीक्षा कराई जाएगी। विश्वविद्यालय ने विधि और बीएड के परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 18 मई घोषित की थी। परीक्षा फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी न होने पर अंतिम तिथि को आगे बढ़ा दिया गया है। परीक्षा नियंत्रक के अनुसार बीएड प्रथम वर्ष सत्र 2025-27 और द्वितीय वर्ष सत्र 2024-2026 के छात्र परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। वहीं एलएलबी के सत्र 2025-26 के प्रथम, द्वितीय और तृतीय वर्ष और बीएलएलबी के सत्र 2025-26 के प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पंचम वर्ष के छात्र परीक्षा फॉर्म भर सकेंगे। सत्र 2025-28 के एलएलबी प्रथम वर्ष व बीएलएलबी प्रथम वर्ष के परीक्षा आवेदन पत्र छात्र छात्राओं की समर्थ आईडी के माध्यम से समर्थ पोर्टल पर संबंधित कॉलेज द्वारा ही भरे जाएंगे।

श्रोताओं, प्रथम आगरा जिला रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता 19 और 20 मई को एकलव्य स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी। प्रतियोगिता के सभी मुकाबले सुबह 9 बजे से प्रारंभ होंगे। आगरा जिला टेबल टेनिस एसोसिएशन की महासचिव ने बताया है कि प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों अंडर 9, अंडर 11, अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 महिला, पुरुष और वेटरन्स वर्ग के मुकाबले कराए जाएंगे। अंडर 9, 11, 13 और 15 वर्ग के मैच सुबह 9 बजे से शुरू होंगे, जबकि अंडर 17, 19 महिला, पुरुष और वेटरन्स वर्ग के मुकाबले शाम 4 बजे से होंगे। प्रतियोगिता में शामिल होने के इच्छुक खिलाड़ियों को पंजीकरण फॉर्म के साथ जन्म प्रमाण पत्र लाना अनिवार्य है। जिला प्रतियोगिता में शामिल होने वाले खिलाड़ी ही आगामी उत्तर प्रदेश राज्य रैंकिंग टेबल टेनिस प्रतियोगिता में

श्रोताओं, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा श्रोताओं, विवाह पंजीकरण में अब वर वधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार

श्रोताओ, राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में अब आयु प्रमाण के रूप में आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। प्रभारी जिला समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि आवेदन के लिए परिवार या कुटुंब रजिस्टर की प्रमाणित प्रति अथवा जन्मतिथि अंकित शैक्षिक प्रमाण पत्र ही स्वीकार किए जाएंगे। इसके अलावा श्रोताओं, विवाह पंजीकरण में अब वर वधु और उनके गवाहों की पहचान बायोमेट्रिक आधार सत्यापन के बाद ही होगी। सभी उप निबंधक कार्यालयों में ये लागू कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन के समय भी आधार सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

0: श्रोताओं, सूचनाओं का सिलसिला अभी जारी रहेगा, आइए सुन लेते हैं ये गीत।
1: Thank you.

श्रोताओं, आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से अपनी रेडियो साथी सुरेखा दुबे के साथ। श्रोताओं, आइए अब सुन लेते हैं कुछ रेलवे से संबंधित सूचनाएं। श्रोताओं, आगरा मथुरा सेक्शन में कीठम रुनकता के मध्य रेलवे फाटक संख्या 511 पर संरक्षा की दृष्टि से ट्रैक के अनुरक्षण का कार्य होना है। पीआरओ ने बताया है कि काम के चलते फाटक 20 मई की सुबह 8 बजे से 22 मई की शाम 7 बजे तक सड़क यातायात के लिए बंद रहेगा। गेट बंद रहने के दौरान रेल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सड़क यातायात को वैकल्पिक मार्ग फाटक संख्या 509 और रेलवे फाटक संख्या 514 से होकर निकलने की व्यवस्था की गई है। वाहन स्वामी 3 दिन वैकल्पिक मार्ग से होकर निकलेंगे। श्रोताओं, रेलवे ने गाड़ी उधना हजरत निजामुद्दीन उधना स्पेशल ट्रेन की घोषणा की है। पीआरओ ने बताया है कि ट्रेन उधना से 22 मई और हजरत निजामुद्दीन से 24 मई रविवार को चलेगी। ट्रेन उधना से शुक्रवार 22 मई की शाम 6 बजे चलकर शनिवार को शाम 7:25 पर आगरा कैंट और रात 12:15 पर हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी और ट्रेन हजरत निजामुद्दीन से रविवार 24 मई को रात 9:20 पर चलकर रात 12:25 पर आगरा कैंट आएगी। इसके अलावा श्रोताओं, गाड़ी काजीपेट निजामुद्दीन काजीपेट स्पेशल ट्रेन की घोषणा की गई है। पीआरओ ने बताया है कि ट्रेन काजीपेट से 22 मई और निजामुद्दीन से 25 मई को चलेगी। ट्रेन काजीपेट से शुक्रवार 22 मई को दोपहर 1:10 पर चलकर अगले दिन शाम 5 बजे आगरा कैंट व रात 11:40 पर निजामुद्दीन पहुंचेगी। 25 मई सोमवार को ट्रेन निजामुद्दीन से तड़के 3:40 पर चलकर सुबह 6:40 पर आगरा कैंट पहुंचेगी। और श्रोताओं, गाड़ी विजयवाड़ा फरीदाबाद विजयवाड़ा स्पेशल ट्रेन की घोषणा भी की गई है। पीआरओ ने बताया है कि ट्रेन विजयवाड़ा से 22 मई को और फरीदाबाद से 25 मई को चलेगी। ट्रेन विजयवाड़ा से शुक्रवार को सुबह 5:10 पर चलकर अगले दिन सुबह 11:30 पर आगरा कैंट और दोपहर 2:50 पर फरीदाबाद पहुंचेगी। ट्रेन फरीदाबाद से 25 मई को देर रात 1:10 पर चलकर सुबह 4:10 पर आगरा कैंट आएगी।

श्रोताओं, मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी समेत प्रदेश के अधिकांश जिलों में अगले एक सप्ताह तक अत्यधिक लू चलने की चेतावनी जारी की गई है। मंगलवार से 25 मई तक 60 से अधिक जिलों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए लोगों को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घरों से बाहर न निकलने की सलाह दी गई है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, झांसी, बांदा, आगरा और इटावा सहित कई जिलों में तापमान

तापमान 44 डिग्री से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। श्रोताओं, दरअसल पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के कारण उत्तर भारत में शुष्क और गर्म हवा का प्रभाव पड़ गया है। अगले एक सप्ताह तक दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक गर्म हवा लोगों के लिए परेशानी का कारण बनेगी। प्रदेश सरकार ने भी स्वास्थ्य विभाग व जिला प्रशासन को अलर्ट रहने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों में विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी घरों से अकारण बाहर न निकलने की अपील की है। श्रोताओं, आसमान से आग बरस रही है और हमारा शरीर भी इससे प्रभावित हो रहा है, तो ऐसे मौसम में हम कुछ सावधानी बरतें तो हम इस स्थिति पर काबू पा सकते हैं। जैसे कि श्रोताओं, दोपहर करीब 11-12 बजे से 3-4 बजे तक अपने घरों से अकारण ही बाहर निकलने से बचें। दोपहर में लंबे समय तक धूप के संपर्क में आने से बचें। हल्के ढीले हल्के रंग के पूरी बांह के सूती कपड़े पहने, सनग्लासेस लगाने के साथ साथ सनस्क्रीन का उपयोग करें। अगर धूप में किसी जरूरी काम से जाना भी पड़ रहा है तो बाहर जाते समय सावधानी बरतें। सिर को सूती कपड़े से या टोपी से या छाते से ढक कर रखें और खुद को हाइड्रेट रखने के लिए श्रोताओं, ORS घोल, घर में बने पेय पदार्थ, लस्सी, छाछ, नींबू पानी, इन सभी का आप उपयोग कर सकते हैं। श्रोताओं, तरबूज लंबे समय से गर्मियों का पसंदीदा फल रहा है, लेकिन कई शोधों से पता चलता है कि ये केवल हाइड्रेशन से कहीं अधिक लाभ प्रदान कर सकता है। ये बेहतर स्वास्थ्य के लिए छुपा वरदान साबित हो सकता है। तरबूज खाने वाले लोगों का आहार उच्च गुणवत्ता वाला होता है, जिसमें अधिक विटामिन, फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। कई अध्ययनों से पता चला है कि नियमित रूप से तरबूज खाने वाले लोगों का संपूर्ण आहार स्वस्थ होता है और यह हृदय और रक्त वाहिकाओं के बेहतर कार्य में भी सहायक हो सकता है। शोधकर्ताओं का कहना है कि तरबूज में पोषक तत्वों, एंटीऑक्सीडेंट और प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले यौगिकों का प्रभावशाली मिश्रण होता है, जो हार्ट और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य से जुड़े होते हैं। इसकी उच्च जल सामग्री कम कैलोरी से बेहतर बनाती है। श्रोताओं, अब जबकि मौसम कुछ ज्यादा ही गर्म हो चुका है और हम घरों में अपना एसी चलाते हैं, तो एसी चलाते वक्त कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत होती है, क्योंकि आजकल एसी में भी आग लगने के कई मामले सामने आ रहे हैं। तो श्रोताओं, उसमें हम कुछ सावधानी बरत सकते हैं, जैसे कि एसी का तापमान हमें 24 से 26 डिग्री के बीच रखना चाहिए और करीब करीब 5-6 घंटे चलने के बाद उसको कुछ देर के लिए जरूर बंद करें। 1.5 टन या उससे ज्यादा का एसी है तो उसकी वायरिंग कम से कम 4 mm की हो। वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए श्रोताओं, इसके लिए स्टेबलाइजर लगवा सकते हैं आप, और हर 15 दिन में एसी के फिल्टर साफ करें, क्योंकि गंदे फिल्टर से जो है कंप्रेसर पर प्रभाव पड़ता है। आउटडोर यूनिट कबाड़ के पास नहीं रखें, उसे खुले स्थान पर लगाएं और सीधी धूप से उसको आप बचाएं। आउटडोर यूनिट के पास कोई भी ज्वलनशील पदार्थ नहीं रखें। और श्रोताओं, अगर एसी बार बार ट्रिप होता है तो आप उसकी पहले जांच कराएं, उसकी सर्विसिंग कराएं। श्रोताओं, अगर आपको अधिक गर्मी या धूप की वजह से आप बीमार पड़ भी जाते हैं, जैसे कि अक्सर होता है कि ज्यादा धूप लगने से बेहोशी छाने लगती है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, तो श्रोताओं, मरीज के शरीर पर गीला कपड़ा लपेटकर उसको लिटा देना चाहिए। इससे श्रोताओं, शरीर का तापमान कम हो जाता है और साथ ही साथ डॉक्टर से हमें संपर्क करना चाहिए, क्योंकि श्रोताओं, अगर लू लग जाती है या गर्मी अधिक लग जाती है तो शरीर से पसीना निकलना बंद हो जाता है, बेहोशी आ जाती है, हाथ पैरों में दर्द होता है और शरीर का तापमान करीब 101 फारेनहाइट से अधिक हो जाता है। श्रोताओं, इसके लिए प्रशासन ने कंट्रोल रूम भी स्थापित किया है, उसके नंबर है, एक बार आप नोट कर लें, 0562

260-0412 मोबाइल नंबर है 9458569043। तो श्रोताओं, इन सभी उपायों को अपनाकर आप जो है अधिक गर्मी के प्रभाव से, अधिक धूप के प्रभाव से आप बच सकते हैं। और श्रोताओं, अब ये संदेश।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: और श्रोताओं, चलते चलते गुमशुदा संबंधी सूचना। पहली सूचना इस प्रकार से है, गुमशुदा का नाम है शालिनी। इनकी उम्र करीब 41 वर्ष है। कद 5 फुट 1 इंच। ये 1 अप्रैल 2026 से अपने घर से लापता हैं। इनकी सूचना मिलने पर श्रोताओं, आप थाना सदर बाजार पर संपर्क कर सकते हैं। अगली सूचना, गुमशुदा का नाम दीपक और इनकी उम्र है करीब 22 वर्ष। ये 15 अप्रैल 2026 से लापता हैं। इनकी सूचना मिलने पर श्रोताओं, थाना भिवाना जनपद हरियाणा में आप संपर्क कर सकते हैं। कार्यक्रम की अंतिम सूचना, गुमशुदा का नाम है राहुल कुमार जैन, रिंकी जैन, सर्वज्ञ जैन, धनिष्का जैन। श्रोताओं, ये 5 अप्रैल 2026 से ये सभी लोग फ्लैट नंबर 1-2 सपना सदन शांति नगर कमला नगर से लापता हैं। इनकी सूचना मिलने पर कृपया थाना कमला नगर जनपद आगरा पर आप संपर्क कर सकते हैं। गुमशुदा संबंधी सूचनाएं अब समाप्त हुई और इसी के साथ श्रोताओं, कार्यक्रम आसपास को समाप्त करने की अपनी रेडियो साथी सुरेखा दुबे को दीजिए अनुमति। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। अगला अनुप्रसारण कुछ ही देर में।

0: में हमारे बीच टैलेंट टेक्नोलॉजी और म्यूचुअल ट्रस्ट का एग्रीमेंट है। इसी एग्रीमेंट के माध्यम से एफ्टा कंट्रीज से भारत में अगले 15 वर्षों में 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट और 1 मिलियन जॉब्स क्रिएट करने का लक्ष्य है।
1: प्रधानमंत्री ने भारत के हरित परिवर्तन पर बल देते हुए देश के विकास, बढ़ती ऊर्जा मांग, जलवायु प्रतिबद्धताओं और नवीकरणीय ऊर्जा, ग्रिड अवसंरचना, हरित हाइड्रोजन और स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार का उल्लेख किया।
0: 2030 तक हमने 500 गीगावाट क्लीन एनर्जी और 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट नॉर्वे वेल फंड की भी प्राथमिकता है। मैं नॉर्वे को भारत के क्लीन एनर्जी फ्यूचर में अहम हिस्सेदार बनने के लिए आमंत्रित करता हूं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों देशों के व्यापारिक समुदायों से नई साझेदारियां बनाने, सहयोग के उभरते क्षेत्रों की पहचान करने और आर्थिक सहयोग को मजबूत करने का आग्रह किया। शिखर सम्मेलन में 50 से अधिक कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और भारत तथा नॉर्वे के व्यापार और अनुसंधान समुदायों के 250 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी को नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम ने रॉयल नॉर्वेजियन ऑर्डर ऑफ मेरिट के ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया। विदेश मंत्रालय के सचिव पश्चिम सिबी जॉर्ज ने प्रेस वार्ता में इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के हरित और समुद्री अर्थव्यवस्था में साझेदारी से अधिक निवेश आएगा, रोजगार सृजित होगा और भारत के लिए ऊर्जा सुरक्षा सहित सतत ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सकेगा।
2: Recognizing the ambitious
3: भारत के महत्वाकांक्षी समुद्री अमृतकाल विजन 2047 को मान्यता देते हुए दोनों नेताओं ने जहाज निर्माण, हरित जहाज रानी, जहाज पुनर्चक्रण, बंदरगाह अवसंरचना का विकास, नाविकों का प्रशिक्षण, मत्स्य पालन, जलीय कृषि और बंदरगाहों के हरितकरण सहित समुद्री अर्थव्यवस्था साझेदारी को बढ़ाने का आह्वान किया है।
2: ग्रीनिंग ऑफ पोर्ट्स।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे की यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। अधिक जानकारी ओस्लो से हमारी संवाददाता से।
4: भारत और 5 नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। TEPA लागू होने के परिप्रेक्ष्य में यह शिखर सम्मेलन व्यापार और निवेश संबंधों को अधिक मजबूत करने का प्रयास करेगा। वर्तमान में इन देशों के साथ भारत के द्विपक्षीय व्यापार का मूल्य 19 अरब डॉलर है। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली पहुंचेंगे। ये यात्रा इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के निमंत्रण पर हो रही है। श्री मोदी प्रधानमंत्री मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मत्तारेल्ला से भी मुलाकात करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी भारत और इटली के बीच व्यापार और निवेश को और बढ़ावा देने के लिए उद्योगपतियों से बातचीत भी करेंगे।
5: रोम पहुंचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इटली में बसे भारतीय समुदाय के सदस्यों से मुलाकात करेंगे, जिनकी यहां उल्लेखनीय उपस्थिति है। वे भारतीय मूल के बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी देखेंगे, जिसमें प्रवासी भारतीय समुदाय के बच्चों द्वारा गाया गया एक पंजाबी लोकगीत शामिल है। ये बच्चे रोम के पास स्थित फोंदी कस्बे से आते हैं, जहां उनके माता पिता कृषि क्षेत्र में कार्यरत हैं। ये पंजाबी लोक शैली का गीत एक जट किसान के गर्व, शक्ति और उत्साहपूर्ण जीवन का उत्सव मनाता है। रोम से आकाशवाणी के लिए सुपर्णा भाटिया।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार

0: जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत के मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। हनोई में कल भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए श्री सिंह ने कहा कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करने की नीति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन वह परमाणु धमकी के आगे नहीं झुकेगा और किसी भी दुश्मन की दुस्साहसपूर्ण कार्रवाई का करारा जवाब देने के लिए तैयार है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत सेमीकंडक्टर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये केवल तकनीकी प्रगति ही नहीं बल्कि नए भारत की पहचान भी है। गृह मंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के संभागीय मुख्यालय जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।
3: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 6 दशकों के दौरान नक्सलवाद के कारण बस्तर को बड़े पैमाने पर जो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक नुकसान हुआ है उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अगले 5 वर्षों में करेगी। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 वर्षों के दौरान बस्तर में स्थापित सुरक्षा बलों के करीब 200 कैंपों में से 70 कैंपों को जन सेवा केंद्रों में बदलकर उन्हें आदिवासी कल्याण का केंद्र बनाया जाएगा। इन सेवा केंद्रों में बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड, कौशल प्रशिक्षण सहित केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाओं से संबंधित सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। विकल्प शुक्ला, आकाशवाणी समाचार, रायपुर।
0: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा से संबंधित आरोपों की जांच कर रही न्यायाधीश जांच समिति ने संसद भवन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ये रिपोर्ट न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अंतर्गत वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार प्रस्तुत की गई। एक रिपोर्ट।
4: उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पिछले वर्ष 12 अगस्त को एक समिति का गठन किया गया था। रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों में उचित समय पर प्रस्तुत किया जाएगा। न्यायाधीश जांच समिति के पीठासीन अधिकारी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अरविंद कुमार, बम्बई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने श्री बिरला को न्यायाधीश जांच समिति की रिपोर्ट सौंपी। आनंद कुमार की रिपोर्ट साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: पश्चिम बंगाल सरकार ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय को मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आधिकारिक आदेश जारी कर निदेशालय को घोष के खिलाफ कथित वित्तीय अनियमितताओं और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। श्री अधिकारी ने कहा कि पूर्व की तृणमूल कांग्रेस सरकार ने इस मामले की जांच प्रक्रिया को लंबे समय तक जबरन और अनैतिक रूप से रखा था। ये मामला एक प्रशिक्षु डॉक्टर के साथ दुष्कर्म और हत्या से भी संबंधित है। सीबीआई ने 29 नवंबर 2025 को आर्जिकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंध में आरोप पत्र दाखिल किया था। अमरीका ने समुद्र में पहले से मौजूद रूस के तेल पर प्रतिबंधों की छूट की अवधि को एक महीने के लिए बढ़ा दिया है। अमरीका के वित्त विभाग ने कल एक आदेश जारी कर 17 अप्रैल या उससे पहले समुद्र में फंसे रूसी तेल पर प्रतिबंधों से मिली छूट की समय सीमा को 17 जून तक बढ़ा दिया है। इससे पहले अमरीका ने 5 मार्च को एक महीने के लिए रूस का तेल खरीदने पर भारत को प्रतिबंधों से छूट दी थी। कुछ दिनों बाद ये छूट अन्य देशों को भी दी गई, जो 11 अप्रैल को समाप्त हो गई थी। अमेरिका इस वर्ष 30 और 31 अक्टूबर को जॉर्जिया के अटलांटा शहर में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता करेगा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कल घोषणा की कि इस बैठक में दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के विदेश मंत्री शामिल होंगे, जिससे वैश्विक स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए G20 के मुख्य उद्देश्यों को आगे बढ़ाया जा सकेगा।

0: आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर प्लेऑफ में जगह बना ली है। चेन्नई में पहले बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 7 विकेट पर 180 रन बनाए। जवाब में सनराइजर्स हैदराबाद ने 19 ओवर में 5 विकेट पर लक्ष्य हासिल कर लिया। ईशान किशन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से शाम 7:30 बजे से होगा। मौसम विभाग ने आज मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा में दिन के समय मौसम गर्म और उमस भरा रहने की संभावना है। राजस्थान, विदर्भ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज रात भी गर्मी बने रहने का अनुमान है। जम्मू और कश्मीर तथा पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में आज बादल गरजने के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की गई है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
1: धन्यवाद जागृति। आज प्रकाशित अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपना शीर्षक बनाया है। दैनिक जागरण लिखता है, अमेरिका प्रतिबंध हटाए या लगाकर रखे, रूस से तेल खरीद जारी रखेगा भारत, सरकार की दो टूक, अपने देश की ऊर्जा जरूरत के हिसाब से तेल खरीदेंगे। हिंदुस्तान ने अमरीकी मीडिया रिपोर्ट के दावे को प्रमुखता दी है। ईरान का नया शांति प्रस्ताव भी खारिज। पंजाब केसरी ने लिखा है, ट्रंप ने युद्ध पूरी तरह खत्म करने के लिए रखी 5 शर्तें, जवाब में तेहरान ने भी 5 शर्तों की सूची थमाई। देशबंधु की खबर है, ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर लागू की नई व्यवस्था, स्ट्रेट के प्रबंधन के लिए नया निकाय बनाने की घोषणा की गई है। नवभारत टाइम्स के अनुसार, नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई ने सोमवार को महाराष्ट्र के लातूर से 10वीं गिरफ्तारी की। सीबीआई का दावा, नीट से 10 दिन पहले मिले थे सवाल। अमर उजाला ने अपने संपादकीय पृष्ठ में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा पर विश्लेषण दिया है। नए समीकरणों की उम्मीद शीर्षक से पत्र लिखता है, गहरे भू राजनीतिक संकटों और आर्थिक अनिश्चितताओं के दौर में प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की 6 दिवसीय यात्रा सिर्फ औपचारिक राजनयिक दौरा भर नहीं है, बल्कि इसके व्यापक कूटनीतिक, आर्थिक और सामरिक निहितार्थ भी हैं। दैनिक भास्कर की विशेष खबर ध्यान आकर्षित करती है, स्मार्ट से उबे लोग, बेसिक चीजों में सुकून की तलाश, जो गैजेट चुपचाप काम करे अब वही ज्यादा समझदार।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत नॉर्वे व्यापार और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भारत EFTA समझौते के तहत $100 अरब अमरीके निवेश और 10 लाख नौकरियों के सृजन का आह्वान किया। प्रधानमंत्री मोदी आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में सभी 5 नॉर्डिक देशों के नेताओं से मुलाकात करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर को भारत का मजबूत, आत्मविश्वासी और सक्षम राष्ट्र बनने का प्रतीक बताया। पश्चिम बंगाल सरकार ने वित्तीय अनियमितता मामले में आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कॉल्स फॉर $100 बिलियन इन्वेस्टमेंट एंड 1 मिलियन जॉब्स अंडर इंडिया EFTA एग्रीमेंट एट बिजनेस एंड रिसर्च समिट इन ओस्लो, नॉर्वे। Prime Minister Modi to meet leaders of all 5 Nordic nations at 3rd India-Nordic summit today. Defence Minister Rajnath Singh describes Operation Sindoor as testament to India's transformation into strong, confident and capable nation. Judges Inquiry Committee investigating allegations against Justice Yashwant Verma submits report to Lok Sabha Speaker Om Birla. West Bengal government allows ED to prosecute former principal of RG Kaur Medical College Sandeep Ghosh in financial irregularity case. And in IPL cricket, Sunrisers Hyderabad secure playoff berth, beating Chennai Super Kings by 5 wickets. Prime Minister Narendra Modi attended the India-Norway Business and Research Summit in Oslo. Crown Prince Haakon and the Prime Minister of Norway, Jonas Gahr Støre, also participated in the summit. Addressing the business and research community, Prime Minister Modi appreciated the growth in bilateral trade and investments following the entry into force of trade and economic partnership agreement, TEPA.

0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हासिल की गई बेमिसाल तरक्की और कामयाबी की वजह से बैन-उल-अक़वामी सतह पर भारत की बढ़ती हुई साख को उजागर किया। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने थाईलैंड, ईरान, नीदरलैंड, स्वीडन और मॉरिशस के अपने हम मनसबों और नुमाइंदों के साथ आला सतही बाहमी मीटिंगें कीं। ये मीटिंग कल जिनेवा में सेहत के 79वें आलमी इजलास के मौके पर हुई थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब नड्डा ने कहा कि मीटिंग में डिजिटल सेहत, दवासाजी, रेजिलियंट पब्लिक सेहत निज़ाम और जदीद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज में ताउन को मुस्तहकम करने पर तवज्जो दी गई। मरकजी वजीर सेहत जेपी नड्डा आलमी सेहत के 79वें इजलास में शिरकत के लिए फिलहाल स्विट्जरलैंड में हैं। ये मीटिंग कल शुरू हुई थी जो इस माह की 23 तारीख तक जारी रहेगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जस्टिस यशवंत वर्मा से मुतालिक इल्जामात की जांच कर रही जजेज इंक्वायरी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पार्लियामेंट हाउस में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को सौंप दी है। ये रिपोर्ट जजेज इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत कानूनी तकाजों के मुताबिक पेश की गई है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: लोकसभा स्पीकर की जानिब से हाईकोर्ट के साबिक जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ इल्जामात की जांच के लिए ये कमेटी गुज़िश्ता साल 12 अगस्त को तश्कील दी गई थी। कमेटी की रिपोर्ट मुनासिब वक्त पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में पेश की जाएगी। ये रिपोर्ट जजेस इंक्वायरी कमेटी के प्रेसाइडिंग अफसर और सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार ने बॉम्बे हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जस्टिस श्री चंद्रशेखर और कर्नाटक हाईकोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पेश की। आनंद कुमार और प्रिया मंडल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए जमीर रजवी।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह जगदलपुर में आज सेंट्रल जोनल काउंसिल की मीटिंग की सदारत करेंगे जो छत्तीसगढ़ में बस्तर का डिवीजनल हेडक्वार्टर है। इस मीटिंग में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के उजरायाला और सीनियर अहलकार शिरकत करेंगे। जनाब शाह ने बस्तर जिले में नेतनार गांव में पब्लिक सर्विस सेंटर का इफ्तिताह किया। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क्यादत में हुकूमत गुज़िश्ता 6 दिहाइयों में नक्सलवाद की वजह से बस्तर के अवाम को बड़े पैमाने पर हुए समाजी, माशी और सकाफती नुकसान की अगले 5 साल में भरपाई करेगी। उन्होंने कहा कि बस्तर डिवीजन में कायम किए गए तकरीबन 200 सिक्योरिटी कैंपों में से 70 कैंपों को अगले 1.5 साल में अवामी खिदमत के मराकज में तब्दील कर दिया जाएगा और उन्हें कबायली फलाह बहबूद के हब में तब्दील किया जाएगा। जनाब शाह ने कहा कि ये मराकज मरकज और रियासती सरकारों के तमाम फलाही स्कीमों, बैंकिंग, आधार, राशन कार्ड्स और हुनरमंदी की तरबियत से मुतालिक सहूलियात फराहम करेंगे। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: मगरबी बंगाल हुकूमत ने ईडी को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के साबिक प्रिंसिपल संदीप घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी की जानिब से जारी सरकारी हुक्मनामे ने मुबैना माली बेजाब्तगियों और काले धन को जायज बनाने के मामले में घोष के खिलाफ मुकदमा चलाने की राह हमवार कर दी है। इस सूरत हाल से निमटने के लिए साबिका टीएमसी हुकूमत की जानिब से अपनाए गए तर्ज अमल पर शदीद बरहमी का इजहार करते हुए जनाब अधिकारी ने कहा कि साबिका तृणमूल कांग्रेस हुकूमत ने बजोर ताकत गैर अखलाकी तरीके से तवील अरसे तक इस केस की जांच को रोके रखा। जनाब अधिकारी ने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और सच्चाई को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक मगरबी बंगाल के गवर्नर आरएन रवि मजाज अथॉरिटी के तौर पर एफआईआर, केस रिकॉर्ड और हकाइक की जांच से मुतमईन हैं और इस बात के हक में हैं कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के उस वक्त के प्रिंसिपल संदीप घोष पर अदालत में मुकदमा चलाया जाना चाहिए। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सर्बानंद सोनवाल ने नई दिल्ली में वाटर मेट्रो खिदमात की शुरुआत से मुतालिक जायजा मीटिंग की सदारत की। मुल्क में इन खिदमात का तवील अरसे से इंतजार किया जा रहा है। मरकजी वजीर ने कहा कि मरकज का मुल्क के 18 शहरों में वाटर मेट्रो खिदमात शुरू करने का मंसूबा है जिसमें गुवाहाटी को मरहला एक के तहत नामजद किया गया है। इसके अलावा श्रीनगर, पटना, वाराणसी, अयोध्या और प्रयागराज जैसे शहर भी मरहला एक में शामिल हैं जबकि आसाम के तेजपुर और डिब्रूगढ़ को प्रोजेक्ट के मरहला दो में शामिल करने की तजवीज है। वजारत ने साथ ही साथ कौमी वाटर मेट्रो पॉलिसी 2026 का मसौदा बैन

श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म एक फूल दो माली से। आवाजें थी आशा भोंसले और मोहम्मद रफी की। गीत के बोल लिखे थे प्रेम धवन ने, धुन बनाई थी रवि ने। आइए अब सुनते हैं आनंद बख्शी की रचना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर ने इस गीत को गाया है फिल्म फर्ज के लिए।

श्रोताओं, अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आशा भोसले और किशोर कुमार का गाया फिल्म बातों बातों में का ये गीत, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने, संगीतबद्ध किया है राजेश रोशन ने।

श्रोताओं, ये थे किशोर कुमार और आशा भोसले फिल्म बंदिश में। बोल आनंद बख्शी के थे और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। आइए अब सुनते हैं फिल्म बॉबी से ये गीत लता मंगेशकर और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में। शब्द रचना विठल भाई पटेल की है और संगीत रचना लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की।

और श्रोताओं, कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राजेंद्र कृष्ण की रचना, कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में फिल्म ब्लैकमेल के लिए इस गीत को अपनी आवाज दी है किशोर कुमार ने।

श्रोताओं, इसी के साथ फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि अब समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अगला अनुप्रसारण कुछ ही क्षणों में।

0: की नाराजगी के बाद जिला प्रशासन हरकत में आया। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी कृतिका जोशोना ने विभागीय अधिकारियों और सभी शासकीय अधिकारियों के साथ बैठक की। इस संबंध में जिलाधिकारी बस्ती कृतिका जोशोना ने बताया,
1: हमने सभी गौशालाओं को लेकर के एक विस्तृत बैठक की। इसमें हमने कुछ नए नोडल अधिकारी भी बनाए हैं। मीटिंग में हमने सबसे पहले तो जितने भी जीओ हैं उनसे सभी लोगों को अवगत करा दिया। इनको ये भी बताया कि जब ये निरीक्षण करने जाएं तो किस प्रारूप पे इनको निरीक्षण करना है, एज वेल एज गौशाला में इनको क्या देखना है। उसी के साथ गर्मी से बचाव के लिए सभी अधिकारियों को अवगत कराया गया है।
0: राजकीय इंटर कॉलेज बस्ती में प्राचार्य डॉक्टर विजय प्रकाश वर्मा की अध्यक्षता में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि एवं जिला विद्यालय निरीक्षक संजय सिंह ने छात्रों को एकाग्रचित होकर पढ़ने तथा मोबाइल से दूरी बनाकर पुस्तकों से जुड़ने हेतु प्रेरित किया। सम्मान समारोह में हाई स्कूल एवं इंटर के मेधावी 10 छात्रों व गृह परीक्षा में मेधावी छात्रों को प्रशस्ति पत्र व मेडल देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन मृत्युंजय कुमार द्वारा किया गया। कार्यक्रम को मूर्त रूप अजय प्रकाश लाल व अमित यादव द्वारा दिया गया। बस्ती जिले में प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा खाड़ी देशों में मौजूद हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन और ऊर्जा की बचत की गई अपील पर मंडल के ग्राम विकास विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों से देश हित में एवं मौजूदा हालात के कारण वैश्विक स्तर पर ईंधन की हर एक बूंद की बचत देश की अर्थव्यवस्था

0: को मजबूती देगी। इसको लेकर अपने निजी वाहनों को छोड़ बस, टैक्सी व साइकिल से ऑफिस आने की सलाह दी गई, जिसके क्रम में संयुक्त विकास आयुक्त निर्मल कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस निमित्त शासकीय वाहन का प्रयोग कम से कम किया जाए। इसी उद्देश्य से उनके द्वारा अपने आवास से साइकिल द्वारा कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों का संपादन किया गया एवं ईंधन की बचत के लिए मंडल के ग्राम विकास विभाग से संबंधित समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों से अपील की गई कि वे देश हित में कम से कम वाहनों का प्रयोग कर देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में अपना सहयोग प्रदान करें। बस्ती जिले में तहसील जूसो में फरियादियों की लगी भीड़, सदर तहसील में 90 शिकायतों में 6 का निस्तारण मौके पर कराया गया। बस्ती जिले में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाभियान के अंतर्गत 2 दिवसीय जिला प्रशिक्षण वर्ग एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ शनिवार को विक्रम ज्योत में हुआ। प्रशिक्षण वर्ग में कुल 11 सत्र आयोजित किए गए, जिसमें पहले दिन 7 तथा दूसरे दिन 4 सत्र संपन्न होंगे। मुख्य अतिथि डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी ने प्रदेश के सम्मुख चुनौतियों एवं निदान के हमारे प्रयास विषय पर संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बढ़ती शक्ति से घबराई देश विरोधी ताकतें सामाजिक और आर्थिक अस्थिरता फैलाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन भाजपा राष्ट्र के लिए निरंतर कार्य कर रही है। दूसरे सत्र में पूर्व मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी वैचारिक अधिष्ठान विषय पर अपने विचार रखे। बस्ती में गौ सेवा आयोग उपाध्यक्ष महेश शुक्ला ने कहा कि गौ आश्रय को अब 5 से 7 हेक्टेयर में निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज पशुपालकों की संख्या निरंतर घट रही है, लोगों को पशु पालने के लिए निराश्रित पशुओं के देखभाल के लिए जन आंदोलन के रूप में लेना चाहिए। गौ सेवा आयोग के उपाध्यक्ष श्री शुक्ल ने कहा कि राज्य सरकार गौ सेवा को केवल सांस्कृतिक दायित्व नहीं एक पवित्र के रूप में स्वीकार करते हुए सतत कार्य कर रही है। बस्ती जिले के सलटौआ विकास खंड में गरीबों के लिए बड़ी सौगात मिलने वाली, अब महंगे मैरिजहाल की टेंशन खत्म होगी। यहाँ वैवाहिक कार्यक्रमों के साथ मीटिंग और सरकारी आयोजन भी हो सकेंगे। ये बहुउद्देशीय भवन सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि गरीब परिवारों के आत्मसम्मान की नई नींव है। इस संबंध में ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि दुष्यंत विक्रम सिंह ने बताया।
1: मुझे लगता है जनपद ही नहीं प्रदेश का पहला ऐसा विकास खंड होगा जहां ऐसा भवन का निर्माण कराया जा रहा है, जहां गरीब परिवार सिर्फ इसके मेंटेनेंस का कॉस्ट देकर अपने बेटियों की शादी यहां पर ऑर्गेनाइज करा सकते।
0: बस्ती जिले की जिलाधिकारी कृतिका जोशना द्वारा जनपद में विभिन्न विकास खंडों के परिषदीय विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान विद्यालयों में साफ सफाई, छात्र उपस्थिति, शिक्षण व्यवस्था तथा मिड डे मील की गुणवत्ता का गहनता से परीक्षण किया गया। निरीक्षण की शुरुआत विकास खंड बनकटी स्थित पीएम श्री विद्यालय ड्योमी से हुई। जिलाधिकारी ने विद्यालय परिसर का भ्रमण कर साफ सफाई की स्थिति का जायजा लिया। वही जिलाधिकारी कम्पोजिट विद्यालय डाडीडीहा पहुंची, जहां कक्षाएं संचालित होती पाई गयी। जिलाधिकारी ने बच्चों से संवाद कर उनकी शैक्षिक गुणवत्ता और परीक्षण किया तथा आंगनबाड़ी में कार्यरत स्पेशल एजुकेटर प्रतीक्षा द्वारा किए जा रहे कार्यों की सराहना की। निरीक्षण के दौरान मिड डे मील व्यवस्था में गंभीर लापरवाही सामने आई। बच्चों को परोसी गई रोटियां मोटी एवं जली हुई पाई गई। भोजन की खराब गुणवत्ता को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने संबंधित प्रधानाध्यापिका अनीता द्विवेदी और रसोईया के विरुद्ध कारण बताओ नोटिस जारी करने का निर्देश दिया है। बस्ती जनपद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर फीटा काट कर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और जेल में महिलाओं द्वारा बनाए गए सजावटी सामानों की न्यायमूर्ति ने सराहना भी की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा आम आदमी को त्वरित न्याय दिलाने के लिए सुलह समझौता पर आधारित मामलों का निस्तारण होता है। बस्ती जिले में महाराणा प्रताप जयंती पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि 2022 की तरह 2027 में भी समाजवादी पार्टी का बुरा हश्र होगा। उन्होंने कहा कि बंगाल में करप्शन की समाप्ति का जनादेश है। बंगाल में गुंडागर्दी, बंगाल में हिंसा का रोहिंग्या और बांग्लादेशी की जो बड़ी मात्रा में इसी बंगाल के रास्ते से देश में हमारी संपत्तियों पर जिसका अधिकार भारत के नागरिकों का था उस पर आज बांग्लादेशी रोहिंग्या अपना कब्जा कर रहे थे, लेकिन अब वहाँ केवल हमारे देश के लोगों का कब्जा होगा।
2: बस्ती जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं सोनभद्र जिले की हलचल। आलेख और स्वर है मनोज कुमार सिंह का।
3: सोनभद्र में विगत दिनों आंधी तूफान से बड़े पैमाने पर जनधन की हानि हुई है। आंधी और तूफान के नुकसान का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि आधा दर्जन के करीब लोगों की मौत आंधी तूफान में हो गई, जबकि दर्जन भर से ऊपर लोग घायल हुए। आंधी तूफान के चलते अभी भी कई क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था ठप ही पड़ी है। जगह जगह बिजली के पोल उखड़ गए हैं, जिसे लगातार सुव्यवस्थित किया जा रहा है। आम के फल से लदे वृक्षों के फल बड़े पैमाने पर गिर गए हैं। जिलाधिकारी ने आधी तूफान में मृतकों के परिजनों को तत्काल 4 लाख की आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई है। सोनभद्र में एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत गुलाब जामुन को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। अब तक ऊर्जा के क्षेत्र में पहचान रखने वाले सोनभद्र को अब गुलाब जामुन मिष्ठान के रूप में भी जाना जाएगा। परंपरागत कारीगरों को प्रोफेशनल कारीगर बनाने के लिए उनको बाकायदा ट्रेनिंग दी जाएगी, साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए सरकार लोन भी उपलब्ध कराएगी, जिससे उनके हुनर को बढ़ावा मिल सके। जनपद सोनभद्र में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को उद्यम के क्षेत्र में नई उड़ान

0: रही है। जनपद के करीब 2000 युवाओं को ब्याज मुक्त 100% धनराशि दी गई है। सोनभद्र में 5 दिवसीय अंश निर्धारण का विशेष अभियान चलाया गया। राजस्व विभाग द्वारा आयोजित इस अभियान में जनपद की चारों तहसीलों को मिलाकर लगभग 20,000 से ज्यादा खाता धारकों के अंश का निर्धारण किया गया। जनपद सोनभद्र जो पूरे देश को विद्युत आपूर्ति करता है, यहाँ की बिजली उत्पादन से देश की राजधानी दिल्ली को रोशनी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य की जनपद के ही 834 मजरों को आज तक आजादी के लंबे अंतराल के बाद भी बिजली आपूर्ति नहीं की जा सकी है। नवागत जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने इस तरफ विशेष अभियान के तहत हर हाल में विद्युत व्यवस्था उपलब्ध कराने के विशेष निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने इस कार्य की प्रत्येक सप्ताह में खुद मॉनिटरिंग अपने पास रखी है। जिलाधिकारी के सख्त आदेश से बिजली विभाग के हाथ पांव फूल रहे हैं। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिन मजरों में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था नहीं हो पाई है वो अति दूरू क्षेत्र है। ऐसे में इस अभियान को अमली जामा पहनाना काफी परेशानियों भरा है। सोनभद्र में विगत माह भर के अंदर में 2 दर्जन से अधिक मौतें सड़क दुर्घटनाओं में हो गई हैं। आए दिन ओवरलोड ट्रकों के संचालन से दुर्घटनाओं का घटित होना जनपद के लिए अब आम बात हो गई है। परिवहन विभाग के साथ साथ खनन विभाग हर हाल में ओवरलोड वाहनों के संचालन को चालू रखना चाहता है। इसके लिए बाकायदा खनन और परिवहन विभाग अंदर खाने से अवैध वसूली करते हैं। जनपद सोनभद्र में प्रारंभ हुए जनगणना के कार्य में सरकारी अमला बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। 7 मई से प्रारंभ हुई जनगणना के प्रथम दिवस पर ही कुल 19,984 लोगों ने स्वगणना कर पूरे प्रदेश में एक दिन में सर्वाधिक गणना कर प्रदेश का प्रथम जिला बनने का गौरव हासिल किया है। जिलाधिकारी चर्चित गौड़ के कठिन प्रयास से इस अभियान को अमली जमा पहनाया जा सका है। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि किसी भी देश की जनगणना उस देश की आगामी विकास की धुरी होती है। जनगणना के आधार पर ही विकास की विभिन्न योजनाओं को लागू किया जाता है। जनपद में हाल के दिनों में तेज धूप और लू से आम जन जीवन प्रभावित है। तेज धूप का आलम यह है कि सुबह 9 बजे के बाद से लोग घर में सिमट जा रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा छा जा रहा है, जो देर शाम होने के बाद ही सड़कों पर रौनक नजर आ रही है। सर्वाधिक परेशानी जानवरों पंछियों को देखने में मिल रही है। हालांकि गौशालाओं में पीने के पानी की विशेष व्यवस्था के निर्देश हैं, जबकि नगर पंचायतों और ग्राम पंचायतों में पीने के पानी के लिए विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। हर ब्लॉक और जिला मुख्यालय पर पेयजल के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सामाजिक संस्थाओं द्वारा भी जगह जगह शरबत के साथ साथ पेयजल की व्यवस्था की जा रही है।
1: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजुषा। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे पुरानी फिल्मों से गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम की पहली पेशकश थी फिल्म प्रोफेसर से। आवाजें थी मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे थे शैलेंद्र ने, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। आइए अब सुनते हैं आशा भोंसले का गाया ये गीत। फिल्म का नाम है फिर वही दिल लाया हूँ। गीत मजरू का, संगीत ओपी नैयर का।
1: आशा जी को मैं इंसाइक्लोपीडिया समझती हूँ। चाहे किस तरह के भी गीत हो, क्लासिकल हो, बहुत मॉडर्न वेस्टर्न पॉप स्टाइल हो, मुजरा हो, कव्वाली हो, नॉटी हो, मिस्चिवस हो, डांस के गाने हो, हर तरह के गाने इन्होंने बहुत खूबसूरती से गाया।

अभी श्रोता सुन रहे थे फिल्म पेंगेस्ट का ये गीत आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में। शब्द रचना मजरूह की थी और संगीत रचना एसडी बर्मन की। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और हेमंत कुमार का गाया फिल्म पतिता से ये गीत, जिसे लिखा है हसरत जयपुरी ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत। इस गीत के साथ ही पुरानी फिल्मों से गीतों का कार्यक्रम गीत मंजूषा अब समाप्त होता है।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। आइए सुनते हैं लोक संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाने जा रहे हैं हरिओम सिंह सिकरवार के स्वर में कुछ लोक रचनाएं।

श्रोताओं, लोक संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्रों से। और आज इस कार्यक्रम में कलाकार हैं हरिओम सिंह सिकरवार, जिनके स्वर में आप सुन रहे हैं कुछ लोक भजन।

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का आगरा केंद्र। स्टूडियो की घड़ी में समय सुबह के 10 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता।

श्रोताओं, ये थे के और उनके साथी फिल्म भूल भुलैया में। गीत के बोल लिखित समीर ने, धुन बनाई थी प्रीतम ने। आइए अब सुनते हैं ऐश किंग और उनके साथियों को फिल्म बॉडीगार्ड में। शब्बीर अहमद और नीलेश मिश्र का लिखा ये गीत, हिमेश रेशमिया का संगीत।

श्रोताओं, फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अगली प्रस्तुति नीरज श्रीधर और सुजैन की आवाजों में फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी से, गीत इरशाद कामिल का, संगीत प्रीतम का। श्रोताओं, गीत आप सुनेंगे संदेश के बाद।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नीलेश मिश्र की रचना, प्रीतम के संगीत निर्देशन में, मोहित चौहान की आवाज में इस गीत को हमने लिया था फिल्म दिल तो बच्चा है जी से। और कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सुनिधि चौहान और कुणाल गंजावाला की आवाजों में फिल्म भागम भाग से ये गीत, जिसे लिखा है समीर ने, संगीतबद्ध किया है प्रीतम ने।

हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर और न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओं, इस समय स्टूडियो की घड़ी में सुबह के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे इरा मुखर्जी का ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही हैं राग मालकोंस में आलाप और धमार। सारंगी पर आपके साथ लहराते रहे हैं आशिक अली खां और पखावज पर हैं उदय कुमार मलिक।

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे इरा मुखर्जी से ख्याल गायन। आप प्रस्तुत कर रही थी राग मालकोस में अलाप और धमार। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आज के कलाकार। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी सदफ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। साथियों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी भारतीय फिल्म जगत के ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, संघर्ष और अभिनय प्रतिभा के बल पर विशेष पहचान बनाई। आप उन कलाकारों में गिने जाते हैं जिन्होंने छोटे छोटे किरदारों से शुरुआत करके बॉलीवुड में मुख्य अभिनेता के रूप में सफलता प्राप्त की। आपकी अभिनय शैली स्वाभाविक और प्रभावशाली मानी जाती है। ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के धनी अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी का आज ही के दिन यानी कि 19 मई को वर्ष 1974 में जन्म हुआ था। आपने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप दिल्ली में आ गए। यहाँ आकर आपको अभिनय में रुचि हो गई और आपने दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला ले लिया। यहाँ से स्नातक होने के बाद आप मुंबई चले गए। मुंबई में आने के बाद आप बॉलीवुड में अपनी किस्मत आजमाना चाहते थे। आखिरकार वर्ष 1999 में आमिर खान अभिनीत फिल्म सरफरोश से आपने बॉलीवुड में पदार्पण किया। इस फिल्म में आपने एक छोटी सी भूमिका निभाई। छोटी सी भूमिका निभाने के बाद भी आपने दर्शकों के दिलों में अपनी एक खास जगह बनाई। तो साथियों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में अभी हम आपसे और भी बातें करेंगे। फिलहाल सुनते हैं आपके द्वारा अभिनीत पहली फिल्म कयामत का यानी कि सरफरोश का ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में।

साथियों, सरफरोश फिल्म में एक छोटी सी भूमिका निभाने के बाद आपने रामगोपाल वर्मा की शूल फिल्म में काम किया। हालांकि इन फिल्मों में आपका रोल छोटा था, लेकिन ये आपके करियर की शुरुआत थी। इसके बाद वर्ष 2003 में मुन्ना भाई एमबीबीएस में आपने काम किया। इस दौरान आप लगातार संघर्ष कर रहे थे, आपको बड़े रोल नहीं मिले, लेकिन आप अपने अभिनय को बेहतर बनाते रहे। साथियों, कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर प्रतिभा, मेहनत और आत्मविश्वास हो तो वो किसी भी ऊंचाई तक पहुंच सकता है। आपने गरीबी, संघर्ष और असफलताओं का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। यही कारण है कि वर्ष 2007 में आपने अपने अभिनय से लोगों का ध्यान आकर्षित किया। वर्ष 2007 में आपने ब्लैक फ्राइडे फिल्म में असगर मुकादम के रूप में अपनी भूमिका निभाई। ये फिल्म वास्तविक घटनाओं पर आधारित थी और इसमें आपके अभिनय की प्रशंसा हुई। तो साथियों, इसी तरह नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में हम और भी ढेर सारी आपसे बातें करेंगे। फिलहाल आपको सुनवाते हैं ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। साथियों, वर्ष 2007 की ब्लैक फ्राइडे फिल्म के बाद आपने वर्ष 2009 में न्यूयॉर्क फिल्म में अभिनय किया। इसी वर्ष आपने फिल्म देवरी के गीत इमोशनल अत्याचार में रंगीला की भूमिका में एक कैमियो किया। इसके बाद वर्ष 2010 में आप पीपली लाइव फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका में नजर आए। इस किरदार ने पहली बार आपको एक व्यापक पहचान दिलाई। वर्ष 2012 आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वर्ष माना जाता है। इसी वर्ष आपकी कई शानदार फिल्में आईं। इस वर्ष आप सबसे पहले कहानी फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में आपने गुस्सैल स्वभाव वाले खुफिया अधिकारी खान का किरदार निभाया। इसके बाद आप अनुराग कश्यप की गैंगस्टर फिल्म और गैंग ऑफ वासेपुर दोनों ही फिल्मों में नजर आए। इस फिल्म में आपने फैसल खान का किरदार निभाया, जिसे आज भी लोग पसंद करते हैं। आपके संवाद, अभिनय शैली और चेहरे के भाव ने दर्शकों को अत्यधिक प्रभावित किया। यही वो समय था जब पूरा बॉलीवुड आपकी प्रतिभा को पहचानने लगा। तो साथियों, आपको भी सुनवाते हैं गैंगस्टर फिल्म का ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के सुप्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। साथियों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी को गैंग ऑफ वासेपुर फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म के बाद आप वर्ष 2013 में द लंच बॉक्स फिल्म में नजर आए। ये फिल्म अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत प्रसिद्ध हुई। इसके बाद वर्ष 2014 में आप किक फिल्म में नजर आए। इस फिल्म में आपका नकारात्मक किरदार लोगों को खूब पसंद आया। साथियों, वर्ष 2015 आपके करियर का एक और सुनहरा वर्ष था। इस वर्ष आपने कई सुपरहिट फिल्मों में अभिनय किया। बदलापुर, बजरंगी भाईजान और मांझी द माउंटेन मैन, इन सभी फिल्मों में आपने अपना शानदार अभिनय किया। मांझी द माउंटेन फिल्म, जिसे कि जी सिनेमा पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इस फिल्म में आपने दशरथ मांझी का किरदार निभाया। आपने अपने अभिनय से उस किरदार को जीवंत बना दिया। ये फिल्म मेहनत और प्रेम की प्रेरणादायक कहानी थी। इसी तरह आपने बजरंगी भाईजान फिल्म में एक पत्रकार की भूमिका निभाई, जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया। तो साथियों, आपको भी सुनवाते हैं बजरंगी भाईजान फिल्म का ये गीत।

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी के बारे में। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। साथियों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वर्ष 2016 में रमन राघव 2.0 फिल्म में अभिनय किया। इस फिल्म में आपने मानसिक रूप से अस्थिर अपराधी की भूमिका निभाई। इस किरदार को निभाना अत्यंत कठिन था, लेकिन आपने इसे बेहतरीन ढंग से निभाया। इसके बाद वर्ष 2017 में आपने मॉम फिल्म में अलग तरह का किरदार निभाया। वर्ष 2018 में आपने मंटो फिल्म में प्रसिद्ध लेखक सादत हसन मंटो का किरदार निभाया। इस फिल्म में आपके अभिनय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। इस फिल्म के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के श्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। इसके बाद वर्ष 2019 में आपने ठाकरे फिल्म में बाल ठाकरे की भूमिका निभाई। इस फिल्म में भी आपने अपने अभिनय से दर्शकों को प्रभावित किया। साथियों, नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने केवल फिल्मों में ही नहीं बल्कि वेब सीरीज में भी सफलता प्राप्त की। आपने सीक्रेट गेम्स में गणेश गायतोंडे का किरदार निभाया। यह किरदार इतना लोकप्रिय हुआ कि लोग आपके संवाद आज भी याद करते हैं। इस वेब सीरीज ने आपको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और अधिक प्रसिद्धि दिलाई। साथियों, अभिनय के इस जगमगाते सितारे का आज ही के दिन जन्म हुआ। तो आज हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र की ओर से

भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध अभिनेता नवाजुद्दीन सिद्दीकी को जन्मदिवस पर हार्दिक बधाई देते हैं और साथ ही आपके उज्जवल भविष्य की व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथियों, इसी चर्चा के साथ कार्यक्रम आज के कलाकार यही संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी सदफ को अनुमति दीजिए। नमस्कार।

आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:30 हो चुके हैं और अब समय है समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत का। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को आपकी रेडियो साथी सदफ का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओ, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे वर्ल्ड फेयर प्ले डे के उपलक्ष्य में स्वस्थ खेल भावना खेलों की आत्मा है विषय पर। साथियों, मनुष्य के जीवन में खेलों का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। खेल केवल मनोरंजन का साधन नहीं है बल्कि ये शारीरिक मानसिक और सामाजिक विकास का माध्यम भी है। खेल व्यक्ति को स्वास्थ्य सक्रिय और अनुशासित बनाते हैं, किंतु खेलों का वास्तविक महत्व तभी है जब उनमें स्वस्थ खेल भावना विद्यमान हो। यदि खेलों में ईमानदारी अनुशासन सम्मान और सहयोग की भावना ना हो तो खेल अपनी वास्तविक आत्मा खो देते हैं। इसलिए हर वर्ष 19 मई को वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया जाता है। इसे खेलों में ईमानदारी नियमों का पालन सम्मान और निष्पक्षता की भावना को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य लोगों को ये संदेश देना है कि खेल केवल जीतने के लिए नहीं बल्कि ईमानदारी अनुशासन और खेल भावना के साथ खेलने के लिए होते हैं। ये दिवस हिंसा धोखाधड़ी और अनुचित तरीकों का विरोध करता है तथा खिलाड़ियों और समाज में अच्छे मूल्यों को बढ़ावा देता है। इस दिवस की औपचारिक शुरुआत संयुक्त राष्ट्र संघ के 1 जुलाई 2024 के एक प्रस्ताव के साथ शुरुआत हुई। इसके बाद 19 मई को प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया जाने लगा। तो साथियों, इस विषय पर अभी हम आपसे और भी बातचीत करेंगे कि खेल भावना क्या है, खेल में हमें किस किस तरह की कौन कौन सी बातों को ध्यान में रखना चाहिए। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फेयर प्ले डे के उपलक्ष्य में स्वस्थ खेल भावना खेलों की आत्मा है विषय पर। साथियों, स्वस्थ खेल भावना का अर्थ है खेल के नियमों का पालन करना, ईमानदारी से खेलना, अपने प्रतिद्वंद्वी का सम्मान करना तथा हार और जीत दोनों को समान भाव से स्वीकार करना। एक सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो खेल को केवल जीतने का माध्यम न समझकर सीखने और व्यक्तित्व विकास का अवसर माने। खेल भावना व्यक्ति को धैर्य, सहनशीलता, आत्मविश्वास और सहयोग की शिक्षा देती है। खेल मनुष्य के जीवन को अनेक प्रकार से प्रभावित करते हैं। वे शरीर को स्वस्थ और मन को प्रसन्न रखते हैं। नियमित खेलकूद से शरीर में स्फूर्ति आती है तथा अनेक रोगों से बचाव होता है। खेल मानसिक तनाव को भी कम करते हैं और व्यक्ति में सकारात्मक ऊर्जा

उत्पन्न करते हैं। विद्यालयों में खेलों को शिक्षा का महत्वपूर्ण भाग माना जाता है क्योंकि वे विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में सहायक होते हैं। खेलों के माध्यम से बच्चों में नेतृत्व क्षमता, टीम भावना और अनुशासन का विकास होता है, तभी तो वे सच्ची जीत का महत्व समझ सकते हैं।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फेयर प्ले डे के उपलक्ष्य में स्वस्थ खेल भावना खेलों की आत्मा है विषय पर। साथियों, स्वस्थ खेल भावना जो है व्यक्ति को जीवन जीने की सही दिशा प्रदान करती है। जीवन में सफलता और असफलता दोनों आती हैं। खेल हमें सिखाते हैं कि हार से निराश नहीं होना चाहिए और जीत पर घमंड नहीं करना चाहिए। हार हमें अपनी कमियों को सुधारने की प्रेरणा देती है, जबकि जीत हमें आगे बढ़ने का उत्साह देती है। जो व्यक्ति खेल भावना को समझ लेता है, वह जीवन की कठिन परिस्थितियों का सामना भी साहस और धैर्य के साथ करता है। आज खेलों का क्षेत्र अत्यंत प्रतिस्पर्धात्मक हो गया है। प्रसिद्धि और धन की लालसा में कई बार खिलाड़ी अनुचित

साधनों का प्रयोग करने लगते हैं। कभी नियमों का उल्लंघन होता है, कभी धोखाधड़ी की जाती है और कभी विरोधी खिलाड़ियों के साथ अनुचित व्यवहार किया जाता है। ऐसी प्रवृत्तियां खेल भावना के विरुद्ध हैं। साथियों, खेलों की गरिमा बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि खिलाड़ी ईमानदारी और निष्पक्षता को सर्वोच्च महत्व दे, तभी तो अपने खेल में वो

तो अपने खेल में वो आगे बढ़ सकता है। साथियों, अभी हम इस विषय पर आपसे और भी ढेर सारी बातें करेंगे कि खेल भावना क्या है, खेलों में प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो क्या होती है। फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

केंद्र से। साथियों, आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फेयर प्ले डे के उपलक्ष्य में स्वस्थ खेल भावना खेलों की आत्मा है विषय पर। साथियों, स्वस्थ खेल भावना केवल खिलाड़ियों के लिए ही नहीं बल्कि दर्शकों के लिए भी आवश्यक है। दर्शकों को भी खिलाड़ियों का सम्मान करना चाहिए, हारने वाली टीम का उपहास नहीं उड़ाना चाहिए। खेलों का उद्देश्य आपसी भाईचारा और सद्भाव बढ़ाना है, न कि घृणा और शत्रुता फैलाना। इतिहास में अनेक ऐसे उदाहरण मिलते हैं जहां खिलाड़ियों ने जीत से अधिक खेल भावना को महत्व दिया है। कई बार खिलाड़ी स्वयं अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं या घायल प्रतिद्वंदी की सहायता करते हैं। ऐसे कार्य खेलों की महानता को बढ़ाते हैं और समाज के लिए प्रेरणा बनते हैं। महान खिलाड़ी केवल अपने रिकॉर्ड के कारण महान नहीं कहलाते बल्कि अपने अच्छे व्यवहार और खेल भावना के कारण सम्मान प्राप्त करते हैं। यही एक अच्छे खिलाड़ी की पहचान है और खेलों की सच्ची शान है।

साथियों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आग

साथियों, आज के कलाकार कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, आप ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड फेयर प्ले डे के उपलक्ष्य में स्वस्थ खेल भावना खेलों की आत्मा है विषय पर। साथियों, आज के समय में विद्यार्थियों और युवाओं में स्वस्थ खेल भावना का विकास अत्यंत आवश्यक है। केवल पढ़ाई ही जीवन में सफलता नहीं दिला सकती, बल्कि खेल व्यक्ति को व्यवहारिक जीवन की शिक्षा देते हैं। यदि बच्चों में बचपन से ही ईमानदारी, अनुशासन और सहयोग की भावना विकसित की जाए तो वे अच्छे खिलाड़ी ही नहीं बल्कि अच्छे नागरिक भी बन सकते हैं। साथियों, स्वस्थ खेल भावना खेलों की वास्तविक आत्मा है। खेल तभी सार्थक है जब उनमें निष्पक्षता, सम्मान और सहयोग की भावना हो। स्वस्थ खेल भावना व्यक्ति के चरित्र का निर्माण करती है और समाज में एकता, सद्भाव तथा सकारात्मकता को बढ़ावा देती है। हमें अपने जीवन में खेल भावना को अपनाकर खेलों को केवल जीत हार तक सीमित न रखकर मानवता और अच्छे संस्कारों का माध्यम बनाना चाहिए, तभी हम खेलों की आत्मा को यानी कि स्वस्थ खेल भावना को जिंदा रखते हैं और अपनी विजय पताका फहराते हैं।

श्रोताओं, इसी के साथ कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत यहीं संपन्न करने की अपनी रेडियो साथी सदफ को अनुमति दीजिए। नमस्कार, ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: शबदंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश, आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं उमंग कार्यक्रम में।
3: और मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है पुराना तालाब डुमराओं से वलीउल्लाह अंसारी और बेबी पूजा मलिक जी ने।
2: शिक्षा जितनी रोचक होगी सीखना भी उतना ही रोचक और मनोरंजक होगा।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर विचार के लिए। आइए अब सुनते हैं श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखते हैं,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
3: नमस्ते।
2: उमंग कार्यक्रम में कहानी जुर्माना सुनी, कहानी पसंद आई। अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला जी पर केंद्रित कार्यक्रम बेहद पसंद आया। कार्यक्रम प्रस्तुति ने दिल जीत लिया। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं। उमंग कार्यक्रम का हर एपिसोड जरूर सुनते हैं। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आता है। कहानी लालची कुत्ता, शहीद रामप्रसाद बिस्मिल जी पर केंद्रित मेरी माँ एवं सम्राट अशोक पर प्रसारित कार्यक्रम सुने और पसंद आए। देश विदेश की जानकारी के साथ ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस संदेश के लिए। और अगला संदेश हमें मिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का।
2: साथ ही साथ हमें संदेश प्राप्त हुआ है जालंधर से संदीप कौर, प्रभा कौर और राधिका कौर।
3: और डोंडिया खेड़ा से प्रभा जटोलिया ने लिखा है, चेतक कविता बहुत अच्छी लगी, आपको बधाई।
2: चमन पार्क दिल्ली से डॉक्टर सोनम, डॉक्टर सना और डॉक्टर अदीबा लिखते हैं, ये भी जानिए के तहत उड़ान का इतिहास और कल्पना चावला पर जानकारी बेहद अच्छी लगी। आज का कार्यक्रम दिल छू गया। परीक्षा कहानी बहुत अच्छी लगी। विमलेश चौधरी जी और अजीत होरो जी को बहुत बहुत बधाई।
3: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है दिल्ली से रेशमा अंसारी, शकीला अंसारी और सईद अंसारी जी का। और साथ ही साथ बागपत से सुंदर और सुंदरी और बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का। धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए।
2: स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। तो आइए करते हैं शुरुआत एक कविता से।
3: श्रोताओं अंदाजा जरूर लगाइएगा कि ये कविता किस विषय पर है। आइए सुनते हैं कविता।
2: घने पत्तों की छाया गहरी, जंगलों की श्रृंखला घनेरी, प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत।
3: प्रतिदिन वर्षा गाती गीत, इस जंगल की यही है रीत। श्रोताओं आपने अंदाजा जरूर लगा लिया होगा कि हम एक ऐसे जंगल या वन की बात कर रहे हैं जहां अक्सर वर्षा होती रहती है। तो विमलेश जी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं।
2: जी अजीत जी, पिछले सप्ताह हमने चर्चा की थी समुद्र की, आज हम चर्चा करेंगे ऐसे वनों की जहां वर्षा होती रहती है, जिन्हें हम वर्षा वन कहते हैं। अजीत जी, अब ये सवाल उठता है कि वर्षा वन किसे कहते हैं या दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा क्या है?
3: जी विमलेश जी, देखिए तकनीकी रूप से वर्षा वन या रेन फॉरेस्ट उसे कहते हैं जहां साल भर बहुत अधिक वर्षा होती रहती है
2: जी,
3: और जहां हर समय नमी पाई जाती है और साथ ही साथ घने सदाबहार पेड़ पौधों के साथ वन्य जीवन भी बहुत ही समृद्ध होता है
2: जी। एक बात और जोड़ दूं इस सूचना में कि यहां वर्षा सालाना औसत

0: औसतन 70 से 80 इंच तक होती है। पृथ्वी के कई वर्षावन तो ऐसे भी हैं जहां साल भर लगातार वर्षा होती रहती है, कभी कभी ही रुकती है।
1: लेकिन एक और प्रश्न है विमलेश जी मेरे मन में कि वर्षा वनों में इतनी बारिश क्यों होती है, अन्य जगहों पर क्यों नहीं होती?
0: श्रोताओं को बता दें कि इसकी वजह है वर्षा वनों का भूमध्य रेखा या इक्वेटर के पास होना।
1: तो जरा श्रोताओं को बताइए ना कि इससे फर्क क्या पड़ता है।
0: फर्क ये पड़ता है कि भूमध्य रेखा के आसपास वाले क्षेत्रों में सूरज की किरणें इन क्षेत्रों पर सीधी पड़ती हैं,
1: जी,
0: जिससे भूमि और जल दोनों बहुत गर्म हो जाते हैं। तो आइए जानते हैं इससे क्या होता है।
1: तो इससे होता यह है कि इस क्षेत्र में भाप बहुत अधिक बनती है, समुद्रों और नदियों से बहुत अधिक भाप बनती है, जो भाप आकाश में जाकर बादल बनाती है, और जब बादल भारी हो जाते हैं तो वर्षा होती है। इसीलिए इस क्षेत्र में गर्मी और नमी के कारण वर्षा बहुत अधिक होती है।
0: लेकिन श्रोताओ, जरूरी नहीं है कि सभी वर्षा वन भूमध्य रेखा के पास ही हों। इसके अलग अलग कारण हैं, लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा या पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। लेकिन निष्कर्ष ये निकलता है कि वर्षा वन सबसे अधिक भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी की काल्पनिक मध्य रेखा के आसपास ही पाए जाते हैं। आइए अब जानते हैं वर्षा वनों की और कुछ रोचक बातें।
1: तो श्रोताओं, एक बड़ी रोचक बात है वर्षा वनों के बारे में, और वो ये है कि समुद्र के बाद वर्षा वनों को धरती का फेफड़ा भी कहा जाता है।
0: जी,
1: ऐसा इसलिए कि सदाबहार पेड़ पौधों के कारण ये वन भारी मात्रा में प्राणवायु यानी ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसके कारण हम सुगमता से सांस ले पाते हैं। वर्षा वन तो क्या, हमें पृथ्वी की सारी वनस्पतियों के प्रति हमेशा आभारी होना चाहिए।
0: जी, यही कारण है अजीत जी कि चारों वेदों और पुराणों में वनस्पति की स्तुति की गई है, उन्हें नमन किया गया है। पुराणों में विशेषकर पद्म पुराण और स्कंद पुराण में वृक्षारोपण को पुनीत कार्य बताया गया है।
1: जी,
0: और इससे पूर्व भी आदि मानव और जनजातियां प्रकृति की पूजा करती रही हैं। हड़प्पा संस्कृति में भी वृक्षों को विशेष आदर दिया गया है। चलिए श्रोताओं, अब जानते हैं अजीत जी से वर्षा वनों की एक और बहुत रोचक बात।
1: जी विमलेश जी, श्रोताओं, एक और रोचक बात वर्षा वनों की ये है कि ये जैव और वनस्पति विविधता के अद्भुत भंडार हैं। यानी जितने पेड़ पौधे, जीव जंतु और अनोखे सूक्ष्म जीव इन वर्षा वनों में पाए जाते हैं, उतने कहीं और नहीं पाए जाते।
0: जी,
1: तो अब एक और रोचक बात जानते हैं विमलेश जी से।
0: जी श्रोताओं, आपने ऊंचे से ऊंचे पेड़ देखे होंगे, लेकिन वर्षा वनों के पेड़ों की ऊंचाई का तो कहना ही क्या। कुछ वर्षा वनों के पेड़ 40 से 60 मीटर तक ऊंचे हो सकते हैं। और हाँ, ये पृथ्वी के तापमान और जलवायु को संतुलित रखने में अहम भूमिका निभाते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी सामान्य जानकारी वर्षा वनों की। श्रोताओं, वर्षा वन तो क्या, सभी वनों का यही संदेश है कि हमें ना काटो।
0: जी,
1: जितना हो सकता है पेड़ लगाओ, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम्हें शुद्ध हवा के लिए और फिर सांस लेने के लिए भी तरसना होगा।
0: जी हाँ, कल नहीं परसों नहीं, लेकिन आज ही अवसर है संभलने का और पेड़ों को बचाने का। अब आज का प्रश्न, आज की ही जानकारी से।
1: तो आज का प्रश्न है, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन ले।
0: अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
1: 8800440559 यानी हमारे IVRS नंबर, और audio@cit.nic.in यानी हमारे ईमेल पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: तो श्रोताओ, बारी है हमारे शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सबसे पहले सुनते हैं कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक प्यारे डॉगी की रोचक कहानी है। वो एक पेड़ के नीचे सो गया था और जब जगा तो उसने देखा कि उसका सारा शरीर बैंगनी रंग का हो गया है। लेकिन क्यों, आइए जानते हैं एक मजेदार कार्यक्रम के माध्यम से।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है NCERT की कक्षा 2 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सारंगी के एक पाठ पर आधारित कार्यक्रम बैंगनी जोजो।
2: जोजो एक सफेद कुत्ता था। वह एक पेड़ के नीचे सो रहा था। वो जग गया।
3: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?

0: उसने देखा एक बादल को आकाश में धीरे धीरे चलते हुए।
1: बादल बादल, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो सफेद हूं।
0: बादल हट गया। जोजो ने ऊपर सूरज को देखा।
1: सूरज सूरज, क्या तुमने मुझे दिए बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो पीला हूं।
1: कौवे कौवे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? नहीं नहीं, मैं तो काला हूं। गुब्बारे गुब्बारे, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
2: नहीं, मैं तो लाल हूं।
1: घास घास, क्या तुमने दिए मुझे बैंगनी धब्बे?
3: नहीं, मैं तो हरी हूँ।
0: बेचारा जोजो।
1: किसने दिए मुझे बैंगनी धब्बे? आहा, तो वो जामुन का पेड़ था।
4: तो बच्चों, सुना आपने? अब जरा याद कीजिए कि जोजो किस किस के पास गया। और कुछ फलों के नाम लिखिए और उनका रंग बताइए। बैंगनी जोजो, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार ममता मलकानी और बाबला कोचर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक तनु गुप्ता तथा निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। और साथ ही हमारे ईमेल पर भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है audio@cieet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। बैंगनी जोजो, अभी आपने सुना यह कार्यक्रम। श्रोताओं, और प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री।
5: इस कार्यक्रम में महान पर्यावरण नेत्री गौरा देवी के जीवन और पर्यावरण बचाने में उनके प्रसिद्ध अभियान चिपको आंदोलन की जानकारी दी गई है। ये कार्यक्रम हमें उत्तराखंड के रमणीक राज्य में ले चलता है और वहाँ की पर्वतीय संस्कृति की झलक भी प्रस्तुत करता है।
4: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम गौरा देवी एक महान पर्यावरण नेत्री।
1: भारत के सबसे रमणीक राज्यों में से एक है उत्तराखंड। इसी उत्तराखंड के चमोली जिले में एक गांव है लाटा। ये गांव विशेषकर बड़े बड़े पेड़ों के कारण जाना जाता है।
2: लाटा गांव के ग्रामीण खेती बाड़ी और पशुपालन द्वारा अपनी जीविका चलाते थे। दिन भर खेतों और जंगलों में काम करने के बाद जब ग्रामीण शाम को घर आते तो उनके नृत्य और लोक संगीत से सारी घाटी गूंज जाती।
1: इसी गांव में सन 1925 में एक प्यारी सी बालिका ने जन्म लिया। नाम रखा गया गौरा। गौरा का बचपन से ही पेड़ पौधों के प्रति बहुत लगाव था। यदि गांव के बच्चे किसी भी प्रकार से फूल पत्तियों और पौधों को कष्ट पहुंचाते तो वो उन्हें मना करती और उन्हें समझाती भी।
3: मारो, मारो, ठीक से निशाना लगाओ।
4: अरे इस बार भी नहीं लगी।
5: अरे
3: नहीं लगा ना? लाओ लाओ, रुको रुको रुको।
5: तुम लोग इस पेड़ पर पत्थर फेंक रहे हो।
3: हा?
5: अभी तो फल भी नहीं लगे। गोविंद, तुम तो सबसे बड़े हो, इनको क्यों नहीं समझाते?
3: अरे पत्थर फेंका है तो क्या हो गया, पेड़ ही तो है ना। देखो।
5: मैंने मना किया है ना कि पेड़ पौधों को पत्थर मत मारो, उन्हें चोट लगती है।
4: तुम हमें इस तरह रोका टोका मत करो।
5: मैं तो टोकूंगी और बार बार रोकूंगी।
3: बड़ी आई रोकने वाली। हाँ, वही करेंगे।
1: तो साथियों, ये था गौरा का पेड़ पौधों के प्रति लगाव और स्नेह। स्थानीय लोग बताते हैं कि गौरा ने अपने गांव में कई पौधे लगाए थे जो आज भी जिंदा हैं।
2: समय बदला। उस समय की रीति के अनुसार गौरा की शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में पास के गांव रैणी के मेहरबान सिंह के साथ हो गई।
1: सब कुछ ठीक चल रहा था कि तभी शादी के मात्र 10 वर्षों के बाद पति मेहरबान सिंह की मृत्यु हो गई। गोद में 2.5 वर्ष का बच्चा था। पति के निधन के बाद 22 वर्ष की गौरा देवी पर अपने बच्चे और बूढ़े सास ससुर के भरण पोषण का पूरा बोझ आ गया। उन्हें काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाते हुए जितना भी समय गौरा के पास बचता था वो उसे गांव के कामों में लगा देती थी। गौरा अपने गांव के महिला मंगल दल की अध्यक्ष भी बनी।
2: महिला मंगल दल का विशेष काम था गांव की महिलाओं के रोजगार और उनकी स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर ध्यान देना। स्त्रियों पर होने वाली घरेलू हिंसा की स्थिति में महिलाओं के समूह द्वारा हस्तक्षेप करना और ये भी सुनिश्चित करना कि ग्रामीण बालिकाओं की पढ़ाई नियमित रूप से चल रही है या नहीं।
6: बहनों, अब हमें ये देखना है कि हमारे गांव में शराबखोरी तो कम हो गई है और इसके चलते चलते आगे बच्चियों की पढ़ाई भी शुरू करनी पड़ेगी हमें।
5: हाँ, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी तो पढ़ने जाने लगी है अब।
6: अरे वाह, कितनी अच्छी बात बताई इसने।
2: लेकिन मेरा आदमी तो अभी काम ही पे नहीं जाता।
6: आप तो काम करती है ना?
2: हाँ मैं करती हूँ, लेकिन उसे होता क्या है?
6: मैं तो ये मानती हूँ कि नारी सशक्तिकरण एक बहुत जरूरी अंग है हमारे समाज का। नारी सशक्त बनेगी तभी तो परिवार सशक्त बनेगा।
1: समय बीतता गया। सन 1962 की बात है। चमोली के ग्रामीण अंचल में विकास के लिए तत्कालीन प्रशासन द्वारा सड़क बनाने का निर्णय लिया गया, जिसके कारण गौरा के गांव रैणी और आसपास के गांवों के लोगों की पुश्तैनी जमीन छिन गई।
2: गढ़वाल क्षेत्र के जंगलों में अंगू का पेड़ प्रचुरता में पाया जाता है। खेती करने के लिए पारंपरिक कृषि के औजार अंगू पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने वन विभाग के अधिकारियों से निवेदन किया कि उन्हें खेती करने के औजार बनाने

0: रखने के लिए अंगों के पेड़ों को काटने की अनुमति दी जाए।
1: लेकिन वन विभाग भला कहां सुनने वाला था। एक ओर वन विभाग ने ग्रामीणों को साफ इनकार कर दिया तो दूसरी ओर जंगल की जमीन का कुछ हिस्सा खेल सामग्री बनाने वाले एक निर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। अंगू पेड़ों की लकड़ी से उम्दा स्तर की खेल सामग्री भी बनाई जाती थी। दिन था 24 मार्च 1976। इस दिन रैणी और आसपास के गांवों के कुल 2400 पेड़ों को काटने का आदेश दे दिया गया। इन जंगलों को बचाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। गांवों के स्त्री पुरुषों ने बड़ी मुस्तैदी से मोर्चा संभाल रखा था और हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वे तैयार थे।
0: लेकिन संयोग कहिए कि उसी दिन गांव के लोगों को उनके उन खेतों का मुआवजा दिए जाने का आदेश हुआ जो सन 1962 के अधिग्रहण के कारण उनसे छिन गए थे। रैणी, मलारी और लाता गांव के लगभग सभी पुरुष मुआवजा लेने जिला मुख्यालय चमोली चले गए।
1: इधर पुरुषों की अनुपस्थिति में 100 से भी अधिक मजदूर रैणी और उसके आसपास के गांवों के जंगलों की ओर बढ़ने लगे। गौरा देवी उस समय गांव में ही महिला मंगल दल की स्त्रियों के साथ बातचीत कर रही थीं। उन्हें नहीं पता था कि ठेकेदारों की अगुवाई में मजदूरों का दल जंगल की ओर आ रहा है।
0: और तभी गांव की एक लड़की दौड़ती हुई आई। वो बहुत डरी हुई थी।
2: गौरमा,
3: क्या बात है चंपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? कहां से आ रही हो?
2: गौरमा, वो लोग आ रहे हैं।
3: कौन लोग आ रहे हैं? अरे कहां आ रहे हैं, कुछ तो कहो।
2: गौरमा,
3: हाँ,
2: पहाड़ की ओर से ठेकेदार के बहुत से मजदूर जंगल की ओर आ रहे हैं।
3: क्या?
2: हाँ गौरमा, उनके हाथों में कुल्हाड़ियाँ, रस्सियाँ और पेड़ काटने वाली आरी है। मैं बकरी चराने गई थी तो देखा कि 3-4 ट्रक आकर रुके। उनसे मजदूर उतरे और जंगल की ओर बढ़ने लगे।
3: अच्छा, तो ये बात है। बहनों, चलो हम सब तैयार हो जाएं।
4: बिल्कुल,
3: समय आ गया है अब इस गांव के जंगल को बचाने का।
5: हाँ, हाँ, सब तैयार है।
6: किसी भी हाल में जंगल कटने नहीं देंगे।
7: नहीं कटने देंगे,
2: बिल्कुल नहीं कटने देंगे।
1: और चल पड़ी गौरा जंगल की ओर। उसके साथ गांव की 27 स्त्रियां थीं। उनकी चाल में दृढ़ता थी, आंखों में संकल्प झलक रहा था और उनके नारों में ऊंच था।
3: ये है जंगल के उपकार,
8: मिट्टी पानी और बया,
3: मिट्टी पानी और बया,
8: जिंदा रहने के आधार।
0: और अब वो स्त्रियां वहां पहुंच गईं, जहां मजदूर पेड़ों को काटने के लिए तैयार खड़े थे।
3: अरे ओ हरिया, तू तो इसी गांव का है ना रे, जिस जंगल ने तुझे पाला पोसा बड़ा किया, तेरी सारी जरूरतों को पूरा किया, उसे नष्ट करने के लिए कुछ पैसों के लालच में आकर तूने कुल्हाड़ी उठा ली। शर्म आनी चाहिए तुझे।
9: आगे बढ़ो।
7: अरे कहां से?
9: तुम इनकी बातों में मत आओ। मैंने तुम्हें पेशगी दी है, पेशगी इस काम के लिए। बोलो शुरू।
7: छिपक जाएंगे, छिपक जाएंगे, ऐसा नहीं होने देंगे।
3: आगे बढ़कर तो दिखाओ तुम। एक भी पेड़ को हम हाथ नहीं लगाने देंगे, आज
2: नहीं लगाने देंगे।
3: बहनों, आगे बढ़कर छिपक।

0: वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: मजदूरों के सामने एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वे जिस पेड़ की ओर बढ़ते, गांव की स्त्रियां भागकर उसी पेड़ से चिपक जाती। इस संघर्ष में लगभग 4 घंटे बीत गए थे। इस दौरान किसी ने भागकर ये सूचना गांव के पुरुषों तक पहुंचा दी।
2: ये खबर वैसे भी जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में लोग जंगल की तरफ आने लगे। स्थिति बिगड़ती देख ठेकेदार और जंगल काटने वाले मजदूर वहां से भाग खड़े हुए।
0: ठीक है, तो वहां चलो, उन पेड़ों को काटो, चलो।
1: बता दें कि इन पेड़ों की कटाई को रोकने के प्रयास में ये आंदोलन 3 साल पहले 1973 में शुरू हुआ था। इसकी नींव सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत और चंडी प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में रखी गई थी।
2: इस घटना ने गौरा देवी को चिपको आंदोलन की महान नेत्री बना दिया और इसकी गूंज पूरे विश्व में सुनाई पड़ी। गौरा देवी विश्व मीडिया में चिपको वुमन के नाम से मशहूर हुई। इस घटना का बहुत बड़ा प्रभाव ये पड़ा कि सरकार ने हिमालयी क्षेत्र में आगामी 15 वर्षों के लिए वनों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया और राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार पर्यावरण मंत्रालय गठित करने पर विमर्श संभव हुआ।
1: जुलाई सन 1991 में 66 साल की उम्र में इस महान पर्यावरण नेत्री का निधन हो गया।
2: एक साक्षात्कार में गौरा देवी ने जंगल के प्रति अपना स्नेह दर्शाते हुए कहा था,
3: ये जंगल हमारी माता के घर जैसा है। यहाँ से हमें फल, फूल और सब्जियां मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधों को काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आएगी।
1: चिपको आंदोलन अहिंसक आंदोलन था जिसमें ग्रामीणों और गढ़वाल की बहनों ने पेड़ों को कटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगा लिया। इस महान पर्यावरण नेत्री को हमारा नमन।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी, एक महान पर्यावरण नेत्री। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, ध्वनियांकन विकास सांगवान, कलाकार बाबला कोचर, पूनम एस कुदेसिया, ममता मलकानी, प्रज्ञा, प्रवीण शर्मा और गीतांजलि, आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्माण सहायक कुसुम लता, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर अपनी प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। साथ ही आप ईमेल पर भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम गौरा देवी। आशा है श्रोताओं ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अब हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: श्रोताओं अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30 हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम नए तराने का। आइए सुनते हैं मीत ब्रदर्स और यासिर देसाई की मधुर आवाजों में फिल्म शिमला मिर्च का ये गीत।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे शिमला मिर्च फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं फिल्म सुपर 30 का ये गीत। उदित नारायण और श्रेया घोषाल की मधुर आवाजों में। गीतकार हैं अमिताभ भट्टाचार्य, संगीतकार हैं अजय अतुल।

0: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
1: साथियों, अंतराल से पहले आप सुन रहे थे सुपर 30 फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म ऑलवेज कभी कभी से, शफाकत अमानत अली की आवाज में। अमिताभ भट्टाचार्य के लिखे इस गीत को अपने खूबसूरत संगीत से सजाया है प्रीतम ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे ऑलवेज कभी कभी फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं यासिर देसाई और शाश्वत सचदेव की आवाजों में फिल्म उरी का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं राजशेखर ने, धुन बनाई है शाश्वत सचदेव ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे उरी फिल्म का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं सुनिधि चौहान और विक्रांत की आवाजों में फिल्म वन डे जस्टिस डिलीवर्ड का ये गीत। गीतकार हैं स्मिता विनू, संगीतकार हैं विक्रांत परिजात।

साथियों, इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। और अब श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को है और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे यात्रा के दूसरे दिन आज तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। ये विभिन्न क्षेत्रों में भारत नॉर्डिक सहयोग की दिशा में एक और कदम होगा। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: भारत और पांच नॉर्डिक देशों के प्रधानमंत्रियों की उपस्थिति में आज तीसरा भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बढ़े हुए क्षेत्रीय सहयोग को और मजबूत करेगा। 2022 में डेनमार्क के कोपेनहेगन में पिछला सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी और नवाचार, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण, यह चर्चा के मुख्य क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री मोदी डेनमार्क, आइसलैंड और फिनलैंड के प्रधानमंत्रियों के साथ विपक्षीय बैठक भी करेंगे। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, ओस्लो, नॉर्वे।
0: प्रधानमंत्री आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का दो दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं।
2: इटली के विभिन्न हिस्सों से आए भारतीय समुदाय के सदस्यों के लिए यह अवसर किसी ऐतिहासिक पल से कम नहीं है। शिक्षा, कृषि, डेयरी फार्मिंग, रियल एस्टेट और अन्य व्यवसायिक क्षेत्रों से जुड़े ये लोग दोनों मित्र देशों के शीर्ष नेताओं के बीच होने वाली इस उच्च स्तरीय द्विपक्षीय बैठक से अपनी अपनी आकांक्षाएं और अपेक्षाएं लेकर आए हैं। भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन नागरिक भी भारत में उभरते व्यवसायिक अवसरों को लेकर उत्साहित हैं। आकाशवाणी के लिए रोम से सुपर्णा भाटिया।
0: भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो गई है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह परियोजना इस मार्ग पर लोगों की भीड़भाड़ कम करने और समय की पाबंदी तथा परिचालन दक्षता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने जनता और निर्वाचन आयोग की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता पर जोर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज 0.3% की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार।

0: હાશમી છે. उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में यूपी ट्रिपल एस सी 2024 के तहत मुख्तलिफ ओहदों पर सिलेक्टेड 932 उम्मीदवारों को तकर्री लेटर तकसीम किए. प्रोग्राम को खिताब करते हुए वजीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत ने गुज़िश्ता 9 सालों में 9 लाख से ज्यादा नौजवानों को तकर्री लेटर तकसीम किए हैं. उन्होंने कहा कि हुकूमत के साथ रियासत को मुख्तलिफ हलकों में आगे बढ़ाने में रियासत के होनहार नौजवानों ने भी अहम किरदार अदा किया है, जिसके नतीजे में आज रियासत मुल्क के ग्रोथ इंजन के तौर पर अपनी पहचान बना रहा है.
1: 9 वर्ष की शानदार यात्रा में चुनौतियां थी, लेकिन उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक मुकाबला किया गया. एक टीम भावना के साथ परिणाम लाया गया कि 9 वर्ष में हमने उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी. प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त कर दी. उत्तर प्रदेश अब बीमारू राज्य नहीं है. अब तो उत्तर प्रदेश देश की अर्थव्यवस्था का एक ग्रोथ इंजन बन करके भारत के विकास में अग्रिम भूमिका के साथ अपने आप को खड़ा कर रहा है.
0: हुकूमत ने कहा है कि मगरबी एशिया तनाजों की वजह से दरामदाद में रुकावट के बावजूद मुल्क की तेल रिफाइनरी फैक्ट्री मामूल के मुताबिक काम कर रही हैं और हिंदुस्तान के पास खाम तेल का वाफिर जखीरा है. मगरबी एशिया में हाल के हादसात पर कल नई दिल्ली में मुनक़िद बैन वजारती प्रेस कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए पेट्रोलियम और कुदरती गैस वजारत की ज्वाइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि मुल्क में पेट्रोल, डीजल, LPG और कुदरती गैस का वाफिर जखीरा है.
2: कमर्शियल LPG की सप्लाई 70% पर अभी बनी हुई है. मार्च के महीने से लेकर अभी तक लगभग 7,37,000 PNG कनेक्शंस को गैसिफाई किया गया है. 2,76,000 कनेक्शंस के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा चुका है और 7,76,000 से अधिक ऐसे कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने PNG कनेक्शन के लिए अपने आप को रजिस्टर कराया है.
0: दरअसल हुकूमत ने YouTube के उन वीडियो की तर्दीद की है जिसमें दावा किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 9 दिनों के तेल का जखीरा बचा है. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की फैक्ट जांच यूनिट ने दावा को खारिज करते हुए बताया है कि मुल्क में तकरीबन 60 दिनों के खाम तेल का जखीरा है. दरअसल उत्तर प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और LPG की फराहमी पूरी तरह मामूल पर है. अवामी जुमरे की तेल मार्केटिंग कंपनियों ने वाजे किया है कि रियासत में ईंधन वाफिर मकदार में है और किसी भी तरह की घबराहट या ज्यादा खरीदारी की जरूरत नहीं है. तेल कंपनियों ने आवाम से अपील की है कि वो किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और ईंधन की दस्तयाबी से मुतल्लिक जानकारी सिर्फ सरकारी जराए से ही हासिल करें. जेठ महीने के तीसरे बड़े मंगल पर दारुल हुकूमत लखनऊ के मंदिरों से लेकर जगह जगह बजरंग बली के जयकारे गूंज रहे हैं. मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का इनेकाद हो रहा है. मंदिरों में भंडारों के साथ ही भक्तों की जानिब से पूरे शहर में सैकड़ों भंडारे मुनक़िद किए जा रहे हैं. इस मौके पर आज आकाशवाणी लखनऊ में भी बजरंग बली की पूजा के साथ भंडारे का इनेकाद किया जा रहा है, जहाँ शाम तक प्रसाद तकसीम किया जाएगा. रियासत में शदीद गर्मी और लू का कहर जारी है. महकमा मौसमियात ने आज से 22 मई तक रियासत के बेशतर इजला में लू चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. इस दौरान कई इजला में दर्ज हरारत 47 डिग्री के पार जाने के इम्कान है. मौसम के मिजाज को देखते हुए वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने इंतजामिया को पूरी तरह अलर्ट रहने के अहकाम दिए हैं. इस दौरान मरकजी वजारत आयुष ने शदीद गर्मी और लू के हालात से निपटने के लिए अवामी सेहत मशाविरात जारी किया है.
3: यह परामर्श आम लोगों, कामगारों और बड़े सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा खेल आयोजनों में शामिल लोगों के लिए जारी किया गया है, ताकि वे गर्मी और लू से होने वाली बीमारियों से अपना बचाव कर सकें. इसमें कहा गया है कि शिशु, बच्चे, गर्भवती महिलाएं, बुजुर्ग, बाहर काम करने वाले लोग और दिल की बीमारी या उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियों से ग्रसित लोग लू के दौरान सबसे ज्यादा जोखिम में रहते हैं, इसलिए इनकी विशेष देखभाल और निगरानी जरूरी है. परामर्श में कार्यस्थलों, सार्वजनिक कार्यक्रमों और बाहरी गतिविधियों के लिए खास सावधानियां बताई गई हैं. में छायादार आराम स्थल की व्यवस्था, समय समय पर पानी पीने के लिए ब्रेक और लू के लक्षणों के बारे में जागरूकता फैलाना शामिल है. रिशु जायसवाल के साथ अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली.
0: दरअसल महकमा मौसमियात ने आज से 4 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत में 2 से 4

4 डिग्री सेल्सियस की जबकि कम से कम दर्ज हरारत में 2 डिग्री सेल्सियस के इजाफे का इम्कान जाहिर किया है। महकमा मौसमियात ने आगरा, औरैया, बलिया, बांदा, भदोई, चित्रकूट, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, जालौन, जौनपुर, झांसी, कानपुर देहात, कानपुर शहर, कौशाम्बी, महोबा, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली और वाराणसी के कई मकाम पर हीटवेव से लेकर शदीद हीटवेव चलने के इम्कान का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नशर किया जाएगा।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है हमारी बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम घर संसार।

कार्यक्रम घर संसार में मेरी सभी श्रोता बहनों का स्वागत है। आज ये कार्यक्रम सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आपके साथ आज मैं हूँ आपकी अपनी सखी लक्ष्मी शर्मा। आज आप और हम मिलकर करेंगे अपने मन की बात, कुछ घर परिवार की बात। बहनों, आप और हम अक्सर एक बात बोलते हैं या सुना भी होगा दूसरों के मुंह से कि जो जीता वही सिकंदर। पर क्यों हम हमेशा जीतने वाले की ही बात क्यों करते हैं, कभी हारने वाले के बारे में बात क्यों नहीं करते? व्यक्ति हारे या जीते ठीक है, पर क्या कुछ सीखना नहीं है उस हार या जीत से? तो हमेशा हम लोग हार या जीत का ही जिक्र क्यों करें, सीख का भी तो कर सकते हैं। बहनों, आज के समय में भौतिकता की अंधी दौड़ में हर कोई जीवन में सफल होना चाहता है, अपने बच्चों को सफल देखना चाहता है, बड़ा आदमी बनते देखना चाहता है, सब कुछ हासिल करते देखना चाहता है। लेकिन एक कड़वा सच यह है कि हम इंसान हैं और हमारे हाथ में केवल प्रयास करना है, फल देना उस ईश्वर के हाथ में है। भगवद गीता में भी कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कि हमारे हाथ में सिर्फ कर्म करना है, परिणाम देना उस ईश्वर के हाथ में है। तो ऐसे में हमें ना सिर्फ खुद को बल्कि अपने बच्चों को भी यह समझाना होगा कि हर बार जीतना जरूरी नहीं होता। जरूरी होता है पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत से, पूरी लगन और मेहनत के साथ प्रयास करना। हम जिस देश में रहते हैं वहाँ लगभग 140 करोड़ की आबादी है और हर व्यक्ति ये चाहता है कि वह जीवन में सफल हो, बड़ा आदमी बने। और हम समझते हैं कि शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने अपने जीवन में कभी प्रयास ना किया हो, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए, बड़ा आदमी बनने के लिए। लेकिन क्या हमारी पूरी आबादी आज अपने सपनों को पूरा कर पाई? क्या हमारी पूरी आबादी आज उस मुकाम को हासिल कर पाई जिसको पाना उनके लिए किसी सपने के समान था, जो उनका लक्ष्य था? शायद नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं इसमें आपकी मेहनत के साथ साथ आपके लक का भी साथ होना जरूरी है। तो ऐसे में हमें ये चाहिए कि हम हमेशा अपने सर्वोत्तम का प्रयास करें, लेकिन साथ ही साथ सबसे खराब के लिए भी अपने आप को तैयार करके रखें। अंग्रेजी में कहते हैं ना कि थिंक फॉर द बेस्ट बट रेडी फॉर द वर्स्ट। अपने आप को, अपने दिल दिमाग को कुछ इस तरह से तैयार करें कि अगर सफलता मिलती है तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन किसी कारणवश अगर हम सफल नहीं भी हो पाते हैं तो हमें अपना दिल छोटा नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, अपने आप को हीन या निराश महसूस करने नहीं देना है। आजकल आप देखिए, लोग जरा जरा सी बातों से तनाव में आ जाते हैं, जीवन में छोटी छोटी असफलताओं से घबरा कर आत्महत्या जैसे कदम उठा लेते हैं, ना अपने बारे में सोचते हैं, ना अपने घर परिवार के बारे में सोचते हैं। खासकर अगर हम हमारे बच्चों की बात करें जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, चाहे फिर वो किसी खास एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो परीक्षा परिणाम अगर उनके

मन के अनुकूल नहीं आता तो वो या तो गहरे तनाव में चले जाते हैं या फिर अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। अब यहाँ पर सोचने और समझने वाली बात यह है कि कई बार हम जो सोचते हैं कि अगर यह हासिल हो जाए तो ये हमारे लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, उसके उलट ईश्वर ने उससे कुछ अलग हमारे लिए रास्ते, दिशा, दशा तय कर रखी होती है। हमें हमेशा अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, क्योंकि बहनों जीवन में हार जैसी कोई चीज़ नहीं होती, या तो जीत होती है या फिर सीख होती है। असफलता यह नहीं बताती कि हम अपने कार्य में सफल नहीं हुए, बल्कि वह हम सफल क्यों नहीं हुए वह बताती है और तरीका सुझाती है कि अगली बार हमको ये गलती नहीं करनी है। तो बहनों अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को यही सिखाएं, समझाएं और बताएं कि जीवन में हार से डरना नहीं है, प्रयत्न करते रहना है, लगातार आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि कई बार कहते हैं ना कि आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। तो हार और जीत से ऊपर उठकर आइए सुनते हैं ये गीत विजयी भवा फिल्म मणिकर्णिका से।

0: बहनों, हमारी भारत सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और कार्य बल में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए कौशल भारत मिशन यानी स्किल इंडिया मिशन फॉर वुमेन के तहत कई विशेष प्रशिक्षण और कल्याणकारी योजनाएं चला रही है। इनका उद्देश्य महिलाओं को रोजगार, स्वरोजगार और छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण देना है, जिससे महिलाएं आत्मनिर्भर और सशक्त बनें। आज के समय में केवल पढ़ाई ही नहीं बल्कि कौशल यानी स्किल भी बहुत जरूरी हो गया है। इन प्रशिक्षणों की मदद से महिलाएं ना केवल नौकरी पा सकती हैं बल्कि अपना खुद का व्यवसाय भी शुरू कर सकती हैं। इससे वे आर्थिक रूप से मजबूत बनती हैं और समाज में उनका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। स्किल इंडिया के माध्यम से महिलाओं को सिलाई, ब्यूटी, कंप्यूटर, डिजिटल मार्केटिंग और छोटे व्यवसाय से जुड़े कई प्रकार के प्रशिक्षण दिए जाते हैं। इन सभी प्रशिक्षणों में पंजीकरण के लिए आप कौशल भारत पोर्टल या प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की आधिकारिक वेबसाइट का उपयोग कर सकती हैं। इन पाठ्यक्रमों को सफलतापूर्वक पूरा करने पर प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है। रोजगार मेलों द्वारा प्लेसमेंट भी दिया जाता है या फिर अपना काम शुरू करने के लिए लोन भी दिया जाता है। ये सभी पाठ्यक्रम पूरी तरह से निःशुल्क हैं। इसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं को वित्तीय, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान दिलाना है। मैंने आज की महिला एक कुशल प्रबंधक है। वह घर के बजट से लेकर बच्चों की शिक्षा, परिवार के स्वास्थ्य और समय प्रबंधन तक हर जिम्मेदारी को समझदारी से निभाती है। आधुनिक तकनीक और शिक्षा ने उन्हें और भी सक्षम बना दिया है। महिलाएं आर्थिक रूप से सहयोग देकर अपने घर की आय को भी बढ़ा रही हैं। इस तरह वे घर और बाहर दोनों जिम्मेदारियों को संतुलित करते हुए एक आदर्श उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं। इसी विषय बदलते परिवेश में गृह प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका विषय पर सुनते हैं वार्ताकार हैं दिव्या गुप्ता।
1: बदलते परिवेश में गृह प्रबंध में महिलाओं की भूमिका। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत में प्राचीन काल से ही गृह प्रबंध में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। गृह प्रबंध एक साधारण कार्य नहीं है। इसके लिए यह आवश्यक है कि कार्यों को सुव्यवस्थित ढंग से किया जाए और प्रत्येक क्षेत्र में सावधानी बरती जाए। इसका अर्थ किसी कार्य को पूरा करना मात्र नहीं होता, बल्कि यह अत्यंत सूक्ष्म और कुशलता पूर्वक बनाई जाने वाली योजना है, जिसको परिवार के सभी सदस्यों की संतुष्टि और अधिकतम लाभ के लिए किया जाता है। आज के बदलते परिवेश में भी घर प्रबंध का संपूर्ण दायित्व गृहिणी पर ही है। गृह प्रबंध प्रत्येक परिवार की व्यवस्था के विकास में सहायक होता है। गृहिणी की कुशलता और निपुणता गृह प्रबंध की प्रमुख कसौटी है। इसके बदलते हुए परिवेश ने महिलाओं को शैक्षिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त किया है और उनके सम्मान में भी वृद्धि हुई है। जो महिलाएं कार्यरत हैं, उनको दोहरी जिम्मेदारी निभानी पड़ रही है। कार्यरत महिलाएं अपने क्षेत्र में और घर प्रबंधन में दोहरी मेहनत कर रही हैं। इन सभी जिम्मेदारियों के बावजूद भी महिलाएं खुशी खुशी अपने कार्य कर रही हैं। इस बदलते हुए परिवेश में यह देखा जा रहा है कि शिक्षण सेवा क्षेत्र ने महिलाओं को अत्यधिक आकर्षित किया है। निश्चित अवधि तक कार्य, निश्चित नियम, राजनैतिक हस्तक्षेप का अभाव आदि अनेक ऐसे कारक हैं जिसके कारण महिलाओं का आकर्षण शिक्षण क्षेत्र की तरफ बढ़ा है। एक निश्चित अवधि तक कार्य करने के बाद महिलाएं अपने घर में भी अपना कार्य आसानी से कर लेती हैं। बदलते हुए परिवेश में गृह प्रबंधन एवं दोहरी जिम्मेदारियों के बोझ के चलते तनाव एवं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिर चुकी महिलाओं ने अब अपने लिए भी समय निकालना शुरू कर दिया है। खाना बनाने से लेकर बच्चों की परवरिश को वह अपनी प्राथमिकता मानती थी, अब इस सोच में भी बदलाव आया है। अब घरों में पति या अन्य परिजनों ने भी कामकाज में हाथ बटाना शुरू कर दिया है तो महिलाओं का स्वास्थ्य पहले से बेहतर पाया जाने लगा है। स्वस्थ महिला स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज का निर्माण करती है। हमारे देश की आबादी का लगभग आधा हिस्सा

0: महिलाएं ही हैं। संविधान में इन्हें पुरुषों के समान ही अधिकार मिले हैं, किंतु पूर्वाग्रह एवं लिंग भेद के परिणाम स्वरूप महिलाओं को अनेक असमानताओं का सामना करना पड़ता है और हिंसा का शिकार भी होना पड़ता है। लेकिन बदलते परिवेश ने महिलाओं को आत्मरक्षा भी सिखा दी है। प्राचीन काल में महिलाओं के सामने मुख्य समस्या संघर्ष की थी, लेकिन बदलते परिवेश के साथ महिलाओं ने अपने कार्य और परिवार के साथ समायोजन करना सीख लिया है। अब इस कार्य को वे बखूबी निभा भी रही है। प्राचीन काल में पुरुषों ने महिलाओं के जीवन को, उनकी योग्यता को, उनकी कार्यशैली को निर्धारित करने की कोशिश की, परंतु इस बदलते हुए परिवेश में महिलाओं ने यह साबित कर दिया कि महिलाएं भी अपनी अलग पहचान रखती हैं और अपने जीवन में उचित चुनाव करने की क्षमता रखती हैं। शिक्षा के प्रचार प्रसार से देश में शिक्षित महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है और वे पढ़ लिख कर नौकरियां करने लगी हैं। जिस समाज में महिलाओं की कमाई को पहले अनुचित समझा जाता था, उसी समाज में महिलाओं की कमाई से घर चलने लगे। पति पत्नी दोनों मिलकर कमाते हैं, अब ये गर्व की बात समझी जाती है। इस बदलते परिवेश में महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। अब हमारे देश की महिलाओं ने अपने घरों में आर्थिक सहयोग प्रदान करना भी शुरू कर दिया है। एक तरफ महिलाएं अपने परिवार की अर्थव्यवस्था में सहयोग कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ वे अपनी आय को अपनी इच्छा अनुसार व्यय करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। बदलते हुए परिवेश में गृह प्रबंधन में यह देखा जाता है कि परिवार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो समय का प्रबंध करता है, निर्णय लेता है, समस्याएं हल करता है, दूसरों से काम लेता है और दूसरों को अपनी जिम्मेदारी में सहयोगी बनाता है। निसंदेह एक कुशल गृहिणी ही ये सारे कार्य वहन करती है और परिवार की कसौटी पर खरी उतरती है। कहा भी गया है कि बिन घरनी घर भूत का डेरा, अर्थात जिस घर में गृहिणी नहीं है वहाँ जाकर देखिए, घोर अव्यवस्था दिखाई देगी और सारा घर बिखरा हुआ नजर आएगा। इस बदलते परिवेश में महिलाओं का महत्व एक प्रबंधक से भी अधिक होता है, क्योंकि गृह प्रबंध में एक महिला को कार्य क्षेत्र में कार्यालय के प्रधान की, बच्चों की शिक्षा में शिक्षिका की, घर की अर्थव्यवस्था में वित्तीय सलाहकार की भूमिका अदा करनी पड़ रही है। अगर वह इन जिम्मेदारियों को ठीक से ना निभाए तो घर की व्यवस्था ही चरमरा जाए और इन सब का खामियाजा पूरे परिवार को ही उठाना पड़ जाए। इन सब के अलावा बदलते हुए परिवेश में महिलाओं की भूमिका आय व्यय को संतुलित करके बजट बनाने की भी है। महिलाएं पूरे महीने की आय व्यय का विवरण बनाती हैं, घर के विभिन्न खर्चे एवं आय व्यय का ध्यान रखती हैं, बजट के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यदि बजट से अधिक व्यय है तो उसके बजट के अनुसार कार्य हो रहा है या नहीं, यदि बजट से अधिक व्यय हो तो उनके कारणों से अवगत होना और अगले बजट में उसी के अनुसार सुधार करना, ये सभी कार्य महिलाओं का ही है। इसलिए हमारे भारतीय समाज में प्रारंभ से ही नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। यह देवी तथा पूज्या है। आचार्य मनु ने कहा भी है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं। नारी न केवल घर की बल्कि संपूर्ण राष्ट्र की निर्माता भी है। अपनी आज वार्ता को विराम देने से पहले मैं सभी महिलाओं से यही कहना चाहूँगी कि अपनी सभी जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपनी रक्षा अर्थात आत्मरक्षा का ख्याल जरूर रखें, क्योंकि सुरक्षित नारी ही सुरक्षित देश का निर्माण करती है।
1: अभी हम सुन रहे थे वार्ता बदलते परिवेश में गृह प्रबंधन में महिलाओं की भूमिका। वार्ताकार है दिव्या गुप्ता। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, पर समय है एक छोटे से अंतराल का।

बहनों, आजकल आप देखिए हमारे परिवार एकाकी होते जा रहे हैं। रिश्तों में वह अपनापन, वह प्यार, वह नज़दीकी नहीं रह गई है। वह आपसी लगाव ख़त्म हो गया है। उसका कहीं ना कहीं कारण यह है कि हम आपस में एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं। हम अपनी अपनी जगह सही हैं, सामने वाला भी अपनी जगह सही है, लेकिन तू गलत मैं सही की एक कश्मकश हम एक दूसरे से दूर होते जा रहे हैं। कई बार हम अपनी बात सामने वाले के आगे रख नहीं पाते, कई बार सामने वाले की बात को समझ भी नहीं पाते, जो रिश्तों में दूरियों का कारण बनता जा रहा है। एक घर सिर्फ दीवारों से नहीं बल्कि वहाँ रहने वाले लोगों के बीच के प्यार और सम्मान से बनता है। अक्सर हम बाहर की दुनिया में बहुत सभ्य बनते हैं, लेकिन अपनों के साथ बात करते समय धैर्य खो देते हैं। परिवार में खुशहाली का राज बहुत सरल है।

0: कम से कम एक साथ खाना खाएं, बिना जज किए एक दूसरे की बात सुनें और एक दूसरे की राय का सम्मान करें। जब हम जिम्मेदारियां बांटते हैं और एक दूसरे के अपमान की जगह सम्मान को चुनते हैं तो घर का वातावरण खुद ब खुद सकारात्मक हो जाता है। मैनू परिवार में रिश्ते सिर्फ बोले गए शब्दों से नहीं बल्कि अनकही भावनाओं से भी बनते और मजबूत होते हैं। जब हम सिर्फ कहा हुआ ही समझते हैं तो कई बार ऐसे में सामने वाले का असली दर्द या उसकी खुशी या उसकी ज़रूरत हमसे छूट जाती है। तो अब वक्त आ गया है जब हम सिर्फ उन बातों को नहीं जो हमसे कही गई हैं बल्कि उन बातों को भी समझना सीखें जो अनकही हैं। जो सामने वाला हमसे उम्मीद करता है, जो सामने वाला हमसे कहना तो चाहता है पर किसी कारणवश हमसे कह नहीं पा रहा है, तो उन सभी अनकही बातों को समझना भी रिश्तों को जिंदा रखने के लिए, उन्हें बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। कई बार आंखें वो बोल देती हैं जो जुबान नहीं बोल पाती है, वहीं कई बार हमारे कार्य व्यवहार से वह दिख जाता है जो सामने वाला खुद अपनी जुबान से नहीं कह पा रहा है। रिश्तों को बनाने में पूरा जीवन गुजर जाता है जबकि बिगड़ने में एक पल का समय नहीं लगता। वादे निभाना और गलतियों पर माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं बल्कि रिश्तों को निभाने की सबसे बड़ी ताकत है। एक शांत और सुरक्षित घर वही है जहां हर सदस्य खुद को सुना हुआ और महत्वपूर्ण महसूस करे। ये छोटे छोटे नियम ही किसी परिवार की नींव को मजबूत बनाते हैं और मुश्किल समय में हमें टूटने से बचाते हैं। याद रखें, दुनिया में सब कुछ मिल सकता है लेकिन एक खुशहाल परिवार का साथ सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है। तो घर सिर्फ एक मकान नहीं बल्कि एक ऐसा सुरक्षित कोना बनाएं जहां सुख और शांति का वास हो, रिश्तों में प्यार बना रहे। तो अपने लिए और अपनों के लिए आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म हमसे।
1: बम चिक चिक बम, चिक बम बम बम चिक चिक

बहनों, आजकल आप देखिए हमारे युवा पीढ़ी में, हमारे बच्चों में और तो और हम खुद भी खान पान को लेकर लापरवाही और बाहर के खाने को लेकर आकर्षण बहुत बढ़ रहा है। अब स्थिति यह है कि हम घर के शुद्ध, ताज़ा, साफ सुथरे खाने के बजाय बाहर के चटपटे, तेज मिर्च मसाले के और स्वास्थ्य के लिए अहितकर खाने को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि आजकल स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत छोटे बच्चों में बहुत कम उम्र से देखने को मिल रही हैं। मीठे को लेकर हमारे अंदर जो आकर्षण है वो आप देखिए बहुत कम उम्र में लोगों को डायबिटीज़ का शिकार बना रहा है। एक तो चीनी वैसे ही हमारे स्वास्थ्य के लिए हितकर नहीं है, उसमें भी उसका ज़रूरत से ज़्यादा सेवन तो बहुत ही नुकसानदायक है। इसी तरह से मैदा भी हमारे शरीर को नुकसान पहुँचाती है। लेकिन आप देखिए आजकल बाजारों में दुकानें भरी पड़ी हैं, मैदे से बने खाद्य पदार्थों को लोग बड़े चाव से बड़े स्वाद लेकर खा रहे हैं, जिसकी वजह से मोटापा, हार्मोनल डिसबैलेंस, शरीर में सुस्ती, ताकत और स्फूर्ति में कमी, ये सभी परेशानियां देखने को मिल रही हैं। तो बहनों, आप खुद को भी और अपने बच्चों को भी इन दो मीठे और स्वादिष्ट जहरों से जितना हो बचा कर रखें। चीनी का

सेवन नाम मात्र का जहाँ जरूरत हो वहाँ करें, चाहे फिर चाय दूध हो या मिठाइयाँ। क्या फायदा कि एक बार में इतनी खा लो कि फिर जिंदगी भर नहीं ना मिले। बीमार हो जाए वो अलग, उससे अच्छा है आज ही उस पर रोक लगाकर सीमित कर दो। ऐसे ही मैदा को जितना हो ना कहें, जब कभी कभार कुछ खाने का मन हो तो कोशिश करें घर में बनाकर साफ सुथरा खाएं। क्योंकि बहनों, ये हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है जिसकी देखभाल स्वयं हमको करनी है। तो उसे बजाय बीमार करने के, क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ों में लगाकर सकारात्मक कार्यों में लगाया जाए। क्योंकि किसी ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। बहनों, समय हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के।

सुथरा खाएं, क्योंकि बहनों ये हमारा शरीर एक मंदिर की तरह है जिसकी देखभाल स्वयं हमको करनी है। तो उसे बजाय बीमार करने के क्यों ना कुछ अच्छी चीज़ों में लगाकर सकारात्मक कार्यों में लगाया जाए, क्योंकि किसी ने कहा है कि एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास है। बहनों समय हो गया है आपसे विदा लेने का, फिर होगी आपसे मुलाकात। ये कार्यक्रम आप सुन रहे थे आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। तो बहनों अपनी सखी लक्ष्मी शर्मा को दीजिए अब इजाज़त। नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं सरदार जसवंत सिंह की आवाज में गजलें। तो आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

साथियों, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं सरदार जसवंत सिंह की आवाज में गजलें। आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे सरदार जसवंत सिंह की आवाज में गजलें, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। दोपहर के 2 बजने को है। कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व के आदेश को वापस लेने से इनकार और मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन का उद्देश्य प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा, सतत विकास और व्यापार जैसे क्षेत्रों में नॉर्डिक देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे के अलावा डेनमार्क, आइसलैंड और स्वीडन के प्रधानमंत्री भी शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने आज ओस्लो में आइसलैंड की प्रधानमंत्री क्रिस्टन म्योल फ्रॉस्टडॉटर और फिनलैंड के प्रधानमंत्री पेटरी ओर्पो के साथ द्विपक्षीय बैठक की। और जानकारी के लिए बात करते हैं नॉर्वे में मौजूद हमारी संवाददाता संगीता गोडबोले से। संगीता, नॉर्वे के साथ साझेदारी भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है?
1: कनकलता, नॉर्डिक देश अपनी 90% से अधिक बिजली ग्रीन स्रोतों से उत्पन्न करते हैं। भारत का अपना एक महत्वाकांक्षी ऊर्जा परिवर्तन लक्ष्य है। इसी विषय में नॉर्डिक तकनीकी विशेषज्ञता का लाभ पवन ऊर्जा, जल विद्युत, बायोमास जैसे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने में हो जाएगा। हरित भागीदारी की दिशा में उठाया गया सबसे ठोस कदम कल था। इससे नॉर्वेजियन कंपनियां हरित हाइड्रोजन, नीली अर्थव्यवस्था, चक्रीय अर्थव्यवस्था जैसे क्षेत्रों में नवाचार और निवेश कर सकेंगी। भारत एक डेडिकेटेड पवेलियन के साथ नॉर शिपिंग 2027 में भी भाग लेगा। कल व्यापार शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस हिस्सेदारी को बढ़ाकर 25% करने का विजन साझा किया है।
0: धन्यवाद संगीता। भारत और स्वीडन का विश्वास है कि वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में सहयोग से साझा समृद्धि और सतत भविष्य का मार्ग प्रशस्त होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन द्वारा लिखे गए एक लेख में इस बात का उल्लेख किया गया है कि बढ़ती भू राजनीतिक अनिश्चितता, ऊर्जा असुरक्षा और आर्थिक बिखराव के समय में दुनिया को फैसला करना है कि वो या तो संकीर्ण राष्ट्रीय सोच की ओर लौट जाए या फिर आपसी सहयोग को सुदृढ़ करे।
2: इस लेख में दोनों प्रधानमंत्रियों ने इस बात का जिक्र किया है कि समय जब संयुक्त राष्ट्र अपनी 80वीं वर्षगांठ मना रहा है, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और बहुपक्षवाद का महत्व और भी अधिक स्पष्ट हो गया है। दोनों नेताओं ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संप्रभु समानता पर आधारित नियमों से संचालित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था ने दशकों तक स्थिरता और विकास सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाई है। लेख में ये भी बताया गया है कि एक प्रमुख विकास इंजन और ग्लोबल साउथ की जिम्मेदार आवाज के तौर पर निकट भविष्य के लिए भारत के दो महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं। पहला 2047 तक विकसित देश का दर्जा हासिल करना और दूसरा 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करना। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का ये दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। प्रधानमंत्री मोदी इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के व्यक्तिगत निमंत्रण पर वहां जा रहे हैं। केवल भारतीय प्रवासी ही नहीं बल्कि स्थानीय इटालियन लोग भी भारत में व्यावसायिक अवसरों की तलाश करने के लिए उत्सुक हैं। और जानकारी के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता सुपर्णा भाटिया से, जो इस समय रोम में मौजूद है। सुपर्णा, प्रधानमंत्री का आज इटली में क्या क्या कार्यक्रम है?
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इटली पहुंचने वाले हैं, जो उनके 5 देशों के दौरे का अंतिम चरण है। इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्रों की तलाश में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत है और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। मुझे यहाँ भारतीय प्रवासी समुदाय से बात करने का भी अवसर मिला, जो प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित हैं।
0: जानकारी के लिए धन्यवाद सुपर्णा।

0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वियतनाम के राष्ट्रपति तोलाम से भेंट की और दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी महत्वपूर्ण है। श्री सिंह ने कहा कि भारत और वियतनाम साझा मूल्यों, रक्षा, सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में घनिष्ठ सहयोग साझा करते हैं। श्री सिंह ने हनोई में वियतनाम के रक्षा मंत्री जनरल फान वान जियांग के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की। दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, रक्षा उद्योग, प्रशिक्षण और क्षेत्रीय स्थिरता में सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग से मुलाकात के लिए चीन की यात्रा पर हैं। क्रेमलिन के अनुसार दोनों नेता आर्थिक सहयोग और प्रमुख क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। ये यात्रा चीन रूस मैत्री संधि के 25वें वर्षगांठ के मौके पर आयोजित की गई है। ये वार्ताएं ऐसे समय में हो रही हैं जब वैश्विक भू राजनीतिक तनावों के बीच चीन अमरीका और रूस दोनों के साथ अपने संबंधों को संतुलित करने का प्रयास कर रहा है। यूक्रेन संघर्ष को लेकर पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद चीन रूस का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और रूसी तेल तथा गैस का प्रमुख खरीदार बना हुआ है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने सार्वजनिक स्थानों से पकड़े गए लावारिस कुत्तों को टीकाकरण या नसबंदी के बाद वापस न छोड़ने के अपने पूर्व निर्देशों को वापस लेने से इनकार कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रमनाथ की अध्यक्षता वाली पीठ ने नवंबर 2025 के आदेश में संशोधन की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया और अधिकारियों को ऐसे कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने का निर्देश दिया। अदालत ने बच्चों, बुजुर्गों और राह चलते लोगों पर कुत्तों के हमलों की बेहद चिंताजनक घटनाओं का हवाला देते हुए कहा है कि यह समस्या हवाई अड्डों और आवासीय कॉलोनियों सहित संवेदनशील सार्वजनिक क्षेत्रों तक पहुंच गई है। पीठ ने चेतावनी दी है कि निर्देशों का पालन न करने वाले अधिकारियों को अवमानना और अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
0: भारतीय रेलवे ने जम्मू श्रीमाता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि ये कार्य देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण भूभागों में सुरक्षित और विश्वसनीय संपर्क सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला किया गया है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन प्रोजेक्ट को 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। रेल मंत्री ने कहा है कि ये प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाले हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर पर क्षमता को बढ़ाएगा और रेल सेवाओं की समय की पाबंदी और ऑपरेशन लचीलेपन को बेहतर बनाने में मदद करेगा। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को स्मार्ट पावर का एक सटीक उदाहरण बताया है। वे आज राष्ट्रीय राजधानी में सेंटर फॉर लैंड वॉरफेयर स्टडीज में सुरक्षा से समृद्धि सतत राष्ट्रीय विकास के लिए स्मार्ट पावर विषय पर आयोजित एक सेमिनार को संबोधित कर रहे थे।
2: ऑपरेशन सिंदूर डिलीवर्ड मिलिट्री प्रिसिशन इन्फॉर्मेशन कंट्रोल।
3: ऑपरेशन सिंदूर ने सटीकता, सूचना नियंत्रण, कूटनीतिक संकेत और आर्थिक संकल्प को सुसंगत राष्ट्रीय कार्रवाई के रूप में प्रस्तुत किया। इसने दुश्मन पर गहरा प्रहार किया और आतंकी ढांचे को ध्वस्त कर दिया तथा एक लंबे समय से चली आ रही रणनीतिक धारणा को भी तोड़ दिया। सेना ने फिर इसके बाद सोच समझ कर विवेक सम्मत ढंग से अपनी कार्रवाई रोक दी। 88 घंटे चला ऑपरेशन सिंदूर स्मार्ट पावर का सबसे पूर्ण और सटीक उदाहरण था।
2: स्मार्ट पावर इन इट्स मोस्ट कंप्लीट एक्सप्रेशन।
0: मिजोरम में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण SIR शुरू हो गया है। मिजोरम के मुख्य चुनाव अधिकारी डॉ. लाल रोजामा ने कहा कि संशोधन प्रक्रिया के दौरान अत्यधिक सावधानी और सतर्कता बरतने की आवश्यकता है क्योंकि अधिकारी सीधे तौर पर मतदाता सूचियों का काम संभालेंगे। उन्होंने अधिकारियों से पूरी ईमानदारी, सटीकता और सतर्कता के साथ काम करने का आग्रह किया ताकि मिजोरम के वास्तविक नागरिक अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई, जो एक सप्ताह से भी कम समय में दूसरी बढ़ोतरी है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत अब 98.64 रुपए प्रति लीटर है जबकि डीजल की कीमत 91.58 रुपए है। मुंबई में पेट्रोल 107.59 रुपए और डीजल

0: 94 रुपए 8 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। कोलकाता में पेट्रोल की कीमतें 109 रुपए 70 पैसे और डीजल की 96 रुपए 7 पैसे दर्ज की गई, जबकि चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 104 रुपए 49 पैसे और डीजल की 96 रुपए 11 पैसे प्रति लीटर है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जलडमरों मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भुवन चंद्र खंडूरी का आज एक निजी अस्पताल में लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। वे 91 वर्ष के थे। सेना के पूर्व मेजर जनरल रहे श्री खंडूरी ने 2 बार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री भी रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके निधन को एक अपूर्णीय क्षति बताया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री खंडूरी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली, मध्य प्रदेश, पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में आज भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया है। बिहार और मराठवाड़ा में भी आज ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में अगले 5 दिन तक लू चलेगी। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिन के लिए भीषण गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार दिन के समय दिल्ली में कुछ स्थानों पर भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। एक रिपोर्ट।
1: विभाग के अनुसार दिल्ली में आज का अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। कल मौसम विभाग के रिज क्षेत्र स्टेशन पर 44.6 डिग्री सेल्सियस, सफदरजंग स्टेशन पर 43.4 डिग्री सेल्सियस, लोदी रोड स्टेशन पर 43.8 डिग्री सेल्सियस और पालम स्टेशन पर 43.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: उत्तर प्रदेश में अगले सप्ताह भीषण गर्मी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य में बांदा 47 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ लगातार दूसरे दिन भी देश का सबसे गर्म स्थान रहा।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ऊपर बना हुआ है। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि धरती माँ के लिए पूरी मानवता एक परिवार है। सोशल मीडिया पोस्ट में संस्कृत सुभाषितम साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि संपूर्ण विश्व एक घर की तरह है, जहाँ हर संस्कृति का अपना महत्व और सम्मान है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। कल रात चेन्नई में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही हैदराबाद ने प्लेऑफ में जगह बना ली है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 136 अंक के वृद्धि के साथ 75,451, जबकि निफ्टी 42 अंक बढ़कर 23,692 पर था। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रौद्योगिकी, नवीकरणीय ऊर्जा, रक्षा और व्यापार में सहयोग को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित 3rd भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने समाचार पत्र में एक संयुक्त लेख में वैश्विक अनिश्चितता के इस दौर में साझेदारी पर जोर दिया। सर्वोच्च न्यायालय का टीकाकरण या नसबंदी किए गए लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के अपने पूर्व आदेश को वापस लेने से इनकार। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी में अगले 3 दिन के लिए लू का येलो अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम उपशास्त्रीय संगीत। श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित रामकृष्ण से क्लैरिनेट वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं मिश्र पहाड़ी धुन।

श्रोताओ, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित रामकृष्ण से क्लेरिनेट वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे मिश्र पहाड़ी धुन। श्रोताओ, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं देवाशीष चक्रवर्ती से गिटार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे हैं भटियाली धुन।

श्रोताओं, उपशास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे देवाशीष चक्रवर्ती से गिटार वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे भटियाली धुन। इससे पहले आपने सुना पंडित रामकृष्ण से क्लैरिनेट वादन। आप प्रस्तुत कर रहे थे मिश्र पहाड़ी धुन। इसी के साथ ही उपशास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:45

मिनट हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से भूले बिसरे गीत। आइए सुनते हैं फिल्म हमराज का ये गीत महेंद्र कपूर की आवाज में। साहिल लुधियानवी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है रवि शंकर ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे हमराज फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं फिल्म आंखें से। आवाज़ है लता मंगेशकर की। गीत के बोल लिखे हैं साहिर लुधियानवी ने, संगीतबद्ध किया है रवि शंकर ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे वो कौन थी फिल्म का ये गीत। आवाज़ थी लता मंगेशकर की, गीत के बोल लिखे थे रज़ा मेहंदी अली खान ने, धुन बनाई थी मदन मोहन ने। और इसी गीत के साथ पुरानी फिल्मों पर आधारित भूले बिसरे गीतों का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे

0: स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद का। तो श्रोताओं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद। इस कार्यक्रम की संवादक हैं गरिमा शाह के, प्रस्तुतकर्ता हैं श्री अनिंद्र सिंह।
1: हेलो मेरी पसंद, एक कार्यक्रम जहां गूंजती हैं आपकी फरमाइशें, महकते हैं आपके एहसास और सजती है आपके मनपसंद गीतों की महफिल। तो आइए आज की इस मधुर प्रस्तुति का आगाज करते हैं और सुनते हैं अपने पहले कॉलर को।
2: हेलो
1: हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
2: जी मैं इरम बोल रही हूँ।
1: इरम, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: जी मैं आगरा से बोल रही हूँ।
1: अच्छा, आप क्या करती हैं?
2: अभी मैं पढ़ रही हूँ।
1: क्या पढ़ाई कर रही हैं आप?
2: बीए कर रही हूँ मैं अभी।
1: अच्छा, बीए में कौन से सब्जेक्ट से आपके आपका क्या इंटरेस्ट है?
2: मेरे पास इकोनॉमिक है।
1: अच्छा, तो आप आकाशवाणी आगरा के कार्यक्रम सुनती हैं?
2: जी जी बिल्कुल सुनते हैं।
1: कौन सा प्रोग्राम आपको ज़्यादा पसंद आता है?
2: वो कुछ बातें कुछ गीत आता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है
1: अच्छा, उसमें क्या खास लगता है आपको?
2: क्योंकि उसमें हर चीज नए नए अपडेट, जैसे आज का दिन क्या है कल क्या है और वो भी इंफॉर्मेशन मिलती है और साथ में अच्छे अच्छे सॉन्ग सुनने को मिलते हैं।
1: अच्छा, तो आपको गाने सुनना पसंद है?
2: जी जी
1: आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
2: आप सलमान खान के कोई भी गाने बजा दीजिए, मुझे सलमान खान के बहुत गाने पसंद है।
1: ठीक है, आपको हम सलमान खान के सॉन्ग्स में से कोई भी एक गाना सुनवाते हैं
2: जी जी
1: और
2: बिल्कुल
1: आप
2: बिल्कुल
1: आगे भी हमें कॉल करते रहेगा।
2: बिल्कुल बिल्कुल थैंक यू।

0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: मैं हितेश बात कर रहा हूँ मैम।
0: हितेश, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: मैं आगरा के राजपुर क्षेत्र जंजीत नगर से बात कर रहा हूँ।
0: और आप क्या करते हैं?
1: मैं टेक्सटाइल मार्केट में जॉब करता हूँ।
0: अच्छा हितेश, आप क्या क्या शौक रखते हैं?
1: मैम मुझे म्यूजिक सुनना और क्रिकेट खेलना बेहद पसंद है।
0: तो आप क्रिकेट के लिए रोज टाइम निकाल पाते हैं?
1: मैम ऐसा नहीं हो पाता, लेकिन कोशिश करते हैं। जब भी छुट्टी होती है तो हम चार दोस्त मिलकर क्रिकेट खेलने के लिए जाते हैं।
0: अच्छा, ये तो बहुत अच्छा शौक है। एक्चुअली फिटनेस के लिए बहुत अच्छा रहता है।
1: हाँ मैम।
0: राइट, तो आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: मैम मुझे 90s के दौर के गाने सॉन्ग बहुत पसंद है, बट क्या नाम है, मैं सुनना आज पसंद करूंगा डर फिल्म का, उदित नारायण की चहकती हुई आवाज में सजा हुआ सॉन्ग है तू है मेरी किरण, वो मुझे बहुत पसंद है।
0: बहुत ही उम्दा चॉइस है आपकी। चलिए आपको ये गीत सुनवाते हैं और आप हमें आगे भी कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा आकाशवाणी आगरा के साथ।
1: थैंक यू।

0: दोस्तों आपको बता दें कि हर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आप हमारी फ़ोन लाइंस पर कॉल करके अपनी फरमाइश बता सकते हैं। हमारे फ़ोन नंबर्स हैं 0562-3501-852 और 0562-2970-337। और आप हमें सुन सकते हैं हर सोमवार रात 10 बजे आकाशवाणी आगरा पर। इसी का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं अगले दिन यानी मंगलवार दोपहर 3 बजे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले कॉलर से। हेलो।
1: हेलो, हाँ मैं ज्योत्सना बोल रही हूँ।
0: ज्योत्सना, हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी, हम आकाशवाणी आगरा से बात कर रहे हैं।
1: हाँ,
0: ज्योत्सना आप क्या करती हैं?
1: मैं टीचर हूँ और मैं आपके प्रोग्राम रेगुलर बेसिस पर सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका सुबह में भी आता है ना वो आज के कलाकार
0: जी,
1: और कुछ बातें कुछ गीत।
0: जी
1: मैम आपकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ।
0: थैंक यू। अच्छा ज्योत्सना जी, और इसके अलावा और क्या आपके शौक हैं, आप क्या करती हैं टीचिंग के अलावा? वैसे तो टीचिंग बहुत अच्छा जॉब है और हमें भी डर के रहना पड़ेगा आपसे।
1: नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपको मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, आप तो मेरी फेवरेट हो।
0: जी अच्छा, आप बताइए और क्या क्या शौक हैं आपके?
1: मुझे गाने सुनना पसंद है, आपका प्रोग्राम सुनना पसंद है और खाना खाना पसंद है अपने फ्रेंड्स के बने हुए हाथों का।
0: अच्छा, मतलब
1: और
0: खाना बनाना पसंद नहीं है आपको?
1: बनाना भी पसंद है पर जब फ्रेंड बना के खिलाए तो ज्यादा अच्छा लगता है।
0: हाँ, ये तो सबको पसंद है।
1: हाँ,
0: और
1: और मुझे मेहंदी लगाना पसंद है, बांसुरी बजाना पसंद है।
0: काफी अच्छे अच्छे शौक रखते हैं आप। और
1: थैंक
0: आपके
1: यू।
0: घर में कोई और भी सुनता है रेडियो?
1: हाँ, मेरी मदर सुनती है मेरे साथ में कभी कभी, या मतलब मैं नहीं होती हूँ तब भी सुनती है।
0: अच्छा जी, अब बताइए आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
1: मेरे को वो वाला गाना सुनना है, वो मैं कोई ऐसा गीत गाऊँ कि आरजू जगाऊँ अगर सुनता हूँ।
0: यस बॉस मूवी का।
1: हाँ,
0: जी बहुत अच्छी चॉइस है आपकी। ठीक है, आपको ये गीत सुनवाते हैं और आप आगे भी सुनते रहिएगा आकाशवाणी आगरा और हमें कॉल करते रहिएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।
1: थैंक यू।
0: धन्यवाद।

0: हेलो।
1: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर
0: हाँ
1: रहे हैं?
0: नमस्ते मैम,
1: नमस्ते।
0: मैं राम भरोसे बात कर रहा हूँ मैम।
1: राम भरोसी जी, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
0: मैं इटावा से बात कर रहा हूँ।
1: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
0: पशुपालन का काम है मैम हमारा।
1: पशुपालन का?
0: जी,
1: तो आप कौन कौन से पशुओं की देखभाल करते हैं?
0: देखभाल तो हम सभी के करते हैं जितने भी हमने पाल रखे हैं, जैसे बकरियां हैं और उसके बाद गाय हैं, भैंस हैं, इन लोगों की देखभाल करती
1: अच्छा,
0: हूँ। जी
1: और इसके अलावा कुछ और करते हैं?
0: जी इसमें टाइम नहीं मिलता मैम, दूसरा करने का समय कहाँ है हमारे पास, इसी में पूरा दिन निकल जाता है। घर
1: और आपके घर परिवार में कौन कौन है?
0: परिवार में सब लोग हैं, मतलब वैसे तो सब लोग हैं लेकिन मतलब बड़ा परिवार है मैम, आप किस इतना बताएंगे लंबा हो जाएगा और
1: अच्छा
0: जी।
1: अच्छा ठीक है। तो आपके घर में भी रेडियो सुनने का शौक रखते हैं सब?
0: मैम हम तो शुरू से बचपन हमारा रेडियो से शुरुआत हुई, हमारे खिलौने नहीं थे हमारे पास, हम रेडियो ही सुनते थे शुरू में। हमारे पिताजी थे और
1: जी
0: दादाजी थे तो हम अपने भाइयों को जब खिलाते थे ना गोद में लेके, तो रेडियो बजता रहता था और हमें उन्हें डोरी गाने नहीं पड़ती थी, हम उसी पे, पहला गाना हमने
1: जी
0: रेडियो पे सुना था वो यशोदा का नंदलाला।
1: अच्छा, हाँ जी जी
0: जी, वो बहुत पहले, मुझे याद आज भी याद है वो ये गाना,
1: हाँ तब तो रेडियो
0: मतलब
1: का ही जमाना होता था,
0: जी
1: तो
0: बिल्कुल
1: सब
0: बिल्कुल।
1: वही सुनते थे।
0: रेडियो तो एक तरह से मान लीजिए हमारी रग रग या खून में बसा हुआ है हमारे।
1: तो अभी आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगे?
0: मैम अब वैसे इतनी खुशी है कि आप अपनी पसंद का सुनवा देंगे, वो भी हम सुन लेंगे अगर आप सुनवाना चाहें तो।
1: जी, हम तो अपनी पसंद से सुनवा ही देंगे।

0: बट अगर आपको कुछ पसंद
1: मैम
0: हो तो आप भी
1: साजन
0: बता
1: फिल्म का
0: दीजिए।
1: गाना है, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम।
0: ठीक है, आपको आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं
1: जी बहुत बहुत
0: और
1: शुक्रिया मैम।
0: आगे भी कॉल करते रहिएगा।
1: जी बिल्कुल बिल्कुल, अरे हमने कहा रेडियो हमारी हमारे खून में बसा हुआ है, तो हम तो लगातार जुड़े हुए हैं और जुड़े
0: जी
1: रहेंगे हमेशा
0: जी
1: मरते दम तक।
0: जी जी
1: चलिए
0: कॉल करने
1: ठीक
0: के
1: है
0: लिए
1: मैम।
0: धन्यवाद।
1: जी जी शुक्रिया मैम।

0: हेलो
1: हेलो, क्या ये आकाशवाणी आगरा है?
0: हेलो, मेरी पसंद कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कौन बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं दिवाकर बोल रहा हूँ मैडम।
0: हाँ जी दिवाकर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: जी, मैं कमला नगर से बोल रहा हूँ मैडम।
0: अच्छा, और आप क्या करते हैं?
1: कंप्यूटर पढ़ाता हूँ मैडम।

0: अच्छा, तो दिवाकर जी कंप्यूटर पढ़ाने के अलावा आप पूरा दिन और क्या करते हैं?
1: मैं कंप्यूटर असेंबल करता हूँ, इसके अलावा इनकम टैक्स का मेरा काम है, शेयर मार्केट का काम है, इंटरनेशनल शेयर मार्केट भी करता हूँ, कमोडिटी भी करता हूँ, गोल्ड सिल्वर का काम भी करता हूँ।
0: अच्छा, काफी सारे काम आप एक साथ कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं।
1: हाँ, बहुत आराम से हो जाता है, बल्कि मन लगा रहता है मैडम।
0: हाँ, ये बात तो अच्छी कही आपने, अगर हम बिजी रहते हैं तो हमारा मन लगा रहता है। तो आपको गीत संगीत में रुचि है?
1: हाँ, बहुत रुचि है मैडम, मैं पुराने से लेकर नए गीत तक सभी तरह के गीतों को सुनता हूँ और सभी जॉनर के गीतों को सुनता हूँ।
0: जी जी जी, तो आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगे?
1: ये मेरे अंधेरे उजाले ना होते अगर तुम ना आते मेरी जिंदगी में, फिल्म का नाम प्रेम पत्र।
0: ठीक है, हम आपको आपके पसंद का गीत सुनवाते हैं।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहरकालीन सभा यहीं संपन्न होती है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहरकालीन सभा यहीं संपन्न होती है।

0: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज तथा न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर हमारे स्टूडियो की घड़ी में संध्या के 5 बजने को है। हमारी संध्याकालीन सभा अब आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार, प्रतीक्षा कीजिए।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन आज नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में शुरू हुआ। सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्री शामिल हैं। बैठक का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना है। इस सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा होगी। भारत और नॉर्डिक क्षेत्र के बीच फिलहाल व्यापार और आर्थिक भागीदारी समझौता लागू है। सम्मेलन में भारत और इस क्षेत्र के देशों के बीच व्यापार और निवेश का विस्तार करने के उपायों पर चर्चा होने की संभावना है। नॉर्डिक ब्लॉक के साथ भारत का द्विपक्षीय व्यापार 19 अरब डॉलर के करीब पहुंच गया है। सम्मेलन से भारत और नॉर्डिक देशों के बीच बहुआयामी सहयोग को और विस्तार मिलने तथा पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा का अवसर प्रदान करेगा। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्टरन फ्रॉस्टडॉटी, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेटरी ओर्पो और डेनमार्क के प्रधानमंत्री सुश्री मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: इस यात्रा से भारत इटली रणनीतिक संबंधों को कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नई गति मिलने की उम्मीद है। व्यापार, निवेश और औद्योगिक साझेदारियों से जुड़ी सहयोग योजनाओं की घोषणा होने की संभावना है, क्योंकि दोनों देश आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और सहयोग के नए क्षेत्र

0: की तलाश में है। व्यापारिक संबंध पहले से ही मजबूत हैं और इस यात्रा के दौरान होने वाली उच्च स्तरीय वार्ताओं के बाद इनके और आगे बढ़ने की उम्मीद है। भारतीय प्रवासी समुदाय प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर विशेष रूप से उत्साहित है।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने कहा कि वर्तमान वैश्विक स्थिति और भू राजनीतिक अनिश्चितताओं को भारत के लिए व्यापारिक प्रक्रियाओं को सुदृढ़ करने, तेजी से सुधार करने, अधिक लचीलापन विकसित करने और आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करने के अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 6 लेन वाले एक्सिस नियंत्रित DND सोहना राजमार्ग संख्या 148NA का निरीक्षण किया। श्री गडकरी ने कहा कि दिल्ली NCR क्षेत्र में 87,000 करोड़ रुपए की लागत वाली लगभग 1,850 किलोमीटर की सड़क परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। उन्होंने कहा कि 225 किलोमीटर लंबी 13,000 करोड़ रुपए की लागत वाली परियोजनाएं अभी निर्माणाधीन है। श्री गडकरी ने कहा कि एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सुरंगों और एलिवेटेड कॉरिडोर के माध्यम से सरकार दिल्ली NCR के पूरे परिवहन नेटवर्क का आधुनिकीकरण कर रही है और इसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार कर रही है। रेलवे ने 54 किलोमीटर लंबे क्यूल झाझा तीसरी लाइन योजना के लिए 962 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। ये परियोजना हावड़ा दिल्ली कॉरिडोर की क्षमता को बढ़ाएगा। रेलवे ने अरक्कोनम चेंगलपट्टू दोहरीकरण परियोजना के लिए भी 993 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। चेन्नई उपनगरीय रेल नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए यह फैसला लिया गया है। साथ ही जम्मू श्री माता वैष्णो देवी कटरा खंड पर 238 करोड़ रुपए की लागत से महत्वपूर्ण ढलान स्थिरीकरण, सुरंग पुनर्निर्माण और पुल संरक्षण कार्यों को मंजूरी दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित बुरी तरह बीमार या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा की गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और ऋषभ पंत की जगह KL राहुल को उप कप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उप कप्तान होंगे। विराट कोहली, KL राहुल और ईशान किशन भी टीम में शामिल है। जयपुर में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला लखनऊ सुपर जायंट से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 5:05 हुए हैं। कार्यक्रम विवरण में आइए सुनते हैं हमारी इस सभा में और कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। श्रोताओ, हमारी इसी सभा में आज रात 9:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम मनी टॉक मंथन। ये कार्यक्रम हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। रात्रि 10 बजे कार्यक्रम खेल दर्पण आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से रिले किया जाएगा। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर सुनेगा पंडित भीमसेन जोशी का ख्याल गायन। कार्यक्रम होगा मेरी माटी मेरा देश संध्या 7:31 पर। अब से थोड़ी देर बाद यानी 5:10 पर आप सुनेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

बाद विषय पर चर्चा होगी। आज का सवाल होगा, अतुलनीय भारत क्रम में मंदिरों का शहर इचक विषय पर जानकारी होगी। खेल की आत्मा होती है खेल भावना, ये वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ताकार होंगी आयुषी वर्मा। हेल्थ प्लस क्रम में शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन विषय पर जानकारी होगी। ग्रामीणों कार्यक्रम में शाम 6 बजे आप सुनेंगे गर्मी में लू से बचाव विषय पर चर्चा, संतुलित उर्वरक उपयोग का टिकाऊ खेती में योगदान, ये भेंट वार्ता होगी। इस विषय पर डॉ जगमोहन सेनी से बातचीत करेंगे अनेन्द्र सिंह। नई खोज, लोकगीत, मंडी भाव और मौसम की जानकारी दी जाएगी। शाम 6:30 पर मजदूर मंडल कार्यक्रम में छोटा परिवार और श्रमिक विषय पर चर्चा के अलावा पेंशन योजनाओं का लाभ विषय पर वार्ता प्रसारित की जाएगी। वार्ता करेंगे मुकेश कुमार गुप्ता। आज का प्रश्न होगा ज्ञान सागर होगा, सेहत टिप्स के अलावा फिल्म संगीत सुनवाया जाएगा। विविधा कार्यक्रम में शाम 7:10 पर आप सुनेंगे दीपांशु शर्मा की वार्ता, ज्ञान संवेदना और संस्कृति के पुरोधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये थे हमारी इस सभा में प्रसारित किए जाने वाले कार्यक्रम और अब एक नजर कल प्रसारित किए जाने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों पर। कल प्रातः 6:05 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। चिंतन में श्रीमती इंदिरा गांधी के विचार होंगे 6:30 पर और 6:35 पर सुनेगा श्री रामचरितमानस गान। इसे फिर से सुन लें, 6:45 पर श्री रामचरितमानस गान होगा। 6:55 पर खेती की बातें कार्यक्रम में कृषि क्षेत्र के लिए वैकल्पिक ऊर्जा का उपयोग विषय पर संजय वर्मा की वार्ता होगी। स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में 7:10 पर आप सुनेंगे गुर्दे की पथरी और उसके उपचार विषय पर डॉक्टर ए के बैजल से जानकारी। दैनिक सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम होगा आसपास 7:31 पर। लोक संगीत के कार्यक्रम में कल प्रातः 9:45 पर आप सुनेंगे गोपीचंद शर्मा के गाये ब्रजलोक गीत। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 10:30 पर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा। कार्यक्रम होगा कुछ बातें कुछ गीत पूर्वाह्न 11:30 पर। इसमें विश्व मधुमक्खी दिवस विषय के उपलक्ष्य में कल का विषय रहेगा खाद्य सुरक्षा एवं परिस्थिति तंत्र के नन्हे श्रमिक। अभी आप कार्यक्रम विवरण सुन रहे थे, आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। अब प्रस्तुत है भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या।

0: ललूराम फिल्म की भक्ति रचना आपने सुनी अनुराधा पोडवाल और शिव कुमार की आवाजों में। गीत और संगीत रविंद्र जैन का था।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत।

0: और पेड़ों की सुरक्षा।
1: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: कार्यक्रम की अगली भक्ति रचना हमने ली है राधा का संगम फिल्म से, आवाज अनुराधा पोडवाल की, गीत के बोल हसरत जयपुरी के और संगीत अनु मलिक का है।

राधा का संगम। इस फिल्म का गीत आपने सुना अनुराधा पोडवाल की आवाज में। कार्यक्रम के अंत में संजोग फिल्म का भक्ति गीत हम आपको सुनवा रहे हैं लता मंगेशकर के स्वर में। गीत रचना अनजान की है और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का है।

संजोग फिल्म का भक्ति गीत आपने सुना लता मंगेशकर के स्वर में। अनजान के गीत रचना को संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। इसके साथ ही भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। शाम के 5:30 हुए हैं। अब युवा श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम युवा वाणी।

हेलो नमस्ते, गुड इवनिंग युवा साथियों। मैं हूँ आपकी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य। स्वागत करती हूँ आपके अपने मनपसंद कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, आज हम आपके लेके आए हैं कुछ इन्फॉर्मेटिव सेगमेंट्स और आपके मनपसंद गीत। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं अपने कार्यक्रम को। अच्छा साथियों, भारत के इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने अपने कार्यों और सादगी से एक अलग पहचान बनाई है। ऐसे ही एक महान नेता थे नीलम संजीव रेड्डी जी, जिन्होंने देश की सेवा में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। तो दोस्तों, अब आप सबसे पूछते हैं एक छोटा सा प्रश्न। प्रश्न है कि आप सब जानते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती किस दिन मनाई जाती है? तो साथियों सोचिए, गेस कीजिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। और इसका उत्तर जानने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम युववाणी में। साथियों, आपको एक और बात बताते चले कि हमारे देश के साहित्यिक जगत में भी कई महान विभूतियों ने एक अपनी अलग पहचान बनाई है। ऐसे ही महान साहित्यकार थे हजारी

प्रसाद द्विवेदी जी, जिनकी आज पुण्यतिथि पर हम उनके साहित्यिक योगदान और हिंदी भाषा के प्रति समर्पण को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। अब साथियों बढ़ते हैं अपनी चर्चा की तरफ। दोस्तों कहते हैं कि समय के साथ दुनिया बदलती है। आज हमारी दुनिया डिजिटल बन चुकी है। अब बाजार जेब में है, बैंक मोबाइल में है और दोस्तियां सोशल मीडिया पर। लेकिन हर सुविधा अपने साथ कुछ चैलेंजेस भी लेकर आती है। एक ऐसी चुनौती जो आज बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी को प्रभावित कर रही है। ये क्या खतरा है, इसके बारे में चर्चा के चलते जानते हैं। उससे पहले आप दोस्तों ये बताइए कि आपके पास कभी ऐसा मैसेज आया है, कंग्रेचुलेशंस, आपने जीते हैं लाखों रुपए, या फिर कोई ऐसा कॉल आया हो जिसमें कहा गया हो कि अपना ओटीपी बताइए नहीं तो अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। दोस्तों हम इसी खतरे की बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं साइबर क्राइम। ये कोई इंसान इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर या डिजिटल टेक्नोलॉजी का गलत यूज करके फ्रॉड, चीटिंग, हैकिंग या किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन चोरी करता है, उसे साइबर क्राइम कहते हैं। साथियों आपको बताते चलते हैं कुछ कॉमन साइबर क्राइम्स, जैसे कि फेक मैसेजेस या लिंक भेजकर बैंक डिटेल्स चोरी करना, इसे फिशिंग स्कैम कहते हैं। फेक पेमेंट स्क्रीनशॉट या रिक्वेस्ट भेजकर पैसे चुराना, ये यूपीआई फ्रॉड में आता है। किसी का अकाउंट या सिस्टम इलीगली एक्सेस करना, इसे हैकिंग कहते हैं। और साथियों इतना ही नहीं, ऑनलाइन अब्यूज, थ्रेटनिंग या ट्रोलिंग, खासकर बच्चों और टीनेजर्स के साथ। इसी क्रम में ऑनलाइन शॉपिंग में भी फ्रॉड हो सकते हैं, जैसे कि पेमेंट कर दी पर प्रोडक्ट नहीं आया। कभी कभी साथियों स्टूडेंट्स के साथ भी फेक जॉब और स्कॉलरशिप स्कैम्स हो सकते हैं। पर दोस्तों घबराएं नहीं, हर समस्या का समाधान होता है। अपने आप को सेफ रखने के लिए ओटीपी, पिन और सीवीवी किसी से शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स रखें जिसमें लेटर्स, नंबर्स और सिंबल्स शामिल हों। सोशल मीडिया पर पर्सनल डिटेल्स ओवर शेयर ना करें। बैंक मैसेजेस और कॉल्स को वेरीफाई करें कि ये ट्रस्टेड सोर्स से आया है या नहीं। फेक जॉब ऑफर्स और लॉटरी मैसेजेस से सावधान रहें। और अगर आपके साथ साइबर फ्रॉड हो भी जाता है तो घबराएं नहीं, तुरंत 1930 साइबर हेल्पलाइन नंबर पर कंप्लेन करें या गवर्नमेंट साइबर क्राइम पोर्टल पर रिपोर्ट करें, क्योंकि जितनी जल्दी कंप्लेन होगी उतनी ही जल्दी रिकवरी पॉसिबल है। दोस्तों एक स्मार्ट स्टेप जो हमें जरूर अपनाना चाहिए वो है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन। इसे हमेशा अपने सिस्टम और मोबाइल में ऑन रखें। इसमें पासवर्ड के साथ ओटीपी की भी जरूरत होती है, जिससे अकाउंट हमारा एक्स्ट्रा सिक्योर हो जाता है। तो दादियों अंत में इतना ही कहना चाहूंगी कि डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही सावधानी भी मांगती है। एक छोटी सी लापरवाही हमारी मेहनत की कमाई, पर्सनल इन्फॉर्मेशन और मानसिक शांति को खतरे में डाल सकती है। इसलिए साथियों जागरूक बने, सतर्क रहें और याद रखें, एक सुरक्षित कदम आज कल के बड़े नुकसान से बचा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल होगी। अब माहौल को थोड़ा लाइट बनाते हैं और आप सभी को ले चलते हैं गीत संगीत की दुनिया में और सुनवाते हैं आपको ये प्यारा सा गीत।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गईं?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाए और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आपका युवावाणी कार्यक्रम में फिर से स्वागत है। आप है अपनी रेडियो साथी स्वस्ति आर्य के साथ। दोस्तों, आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में कुछ लोग तो हमेशा एनर्जेटिक और एक्टिव बनाए रखना चाहते हैं। बढ़ती रिस्पॉन्सिबिलिटीज और स्ट्रेस के बीच कई बार लोग अपनी शारीरिक क्षमता को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग उपाय खोजने लगते हैं। इन्हीं उपायों में एक महत्वपूर्ण विषय है शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन, जो लोग ताकत और ऊर्जा बढ़ाने की उम्मीद में करते हैं। कुछ शक्तिवर्धक दवाएं डॉक्टर की सलाह से दी जाती हैं, जबकि कुछ लोग बिना सलाह के बाजार में मिलने वाले उत्पादों का सेवन करने लगते हैं, जो कई बार साथियों हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। दोस्तों, बात करते हैं शक्तिवर्धक दवाओं के कुछ प्रकार की, जिसमें आती हैं आयुर्वेदिक शक्तिवर्धक दवाएं। इनमें जड़ी बूटियों और प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता है। कुछ होती हैं एलोपैथिक मेडिसिंस, जो डॉक्टर द्वारा विशेष समस्या के अनुसार दी जाती हैं। शरीर में एनर्जी और न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करने के लिए सप्लीमेंट्स और टॉनिक का यूज किया जाता है। और दोस्तों, कुछ हार्मोन आधारित दवाएं विशेष स्थितियों में ही डॉक्टर की निगरानी में दी जाती हैं। साथ ही यदि सही कारण और डॉक्टर की सलाह से सेवन किया जाए तो कुछ स्थितियों में ये दवाएं लाभदायक हो सकती हैं, जैसे कि कुछ रोगों में स्वास्थ्य सुधार में सहायता मिल सकती है और शरीर में एनर्जी और स्ट्रेंथ बढ़ सकती है। पर दोस्तों, बिना डॉक्टर की सलाह के शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन नुकसानदायक हो सकता है, जैसे कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, सर दर्द, चक्कर आना, हाई ब्लड प्रेशर या हृदय संबंधी समस्याएं। कभी कभार दवाओं की लत भी लग सकती है और पेट संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। तो दोस्तों, इन साइड इफेक्ट से बचने के लिए हमें जरूरत है कुछ सावधानियां बरतने की, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट्स या झूठे दावों पर विश्वास ना करें, फिक्स्ड क्वांटिटी से ज्यादा दवा ना लें, संतुलित आहार, व्यायाम।

0: और पर्याप्त नींद को प्राथमिकता दें। और यदि कोई दुष्परिणाम या साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। दोस्तों, वैसे आजकल लोग सोशल मीडिया और एडवर्टाइजमेंट्स के कारण जल्दी रिजल्ट्स के लिए शक्तिवर्धक दवाओं की ओर आकर्षित हो रहे होते हैं। इससे कई बार स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। जागरूकता और सही जानकारी की कमी के कारण लोग गलत दवाओं का सेवन कर बैठते हैं। दोस्तों, शक्तिवर्धक दवाओं का सेवन सोच समझकर और विशेषज्ञ की सलाह से ही करना चाहिए। केवल दवाओं पर निर्भर रहने की बजाय संतुलित भोजन, नियमित व्यायाम और स्वस्थ जीवन शैली अपनाना अत्यंत आवश्यक है। साथियों, याद रखिए, सही जानकारी और सावधानी ही अच्छे स्वास्थ्य की कुंजी है। साथियों, अच्छी जीवन शैली के साथ साथ खेल कूद भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर बनाने में आवश्यक होते हैं, क्योंकि ये शरीर को सक्रिय, मन को प्रसन्न और आत्मविश्वास को मजबूत करते हैं। और जब खेलों की बात होती है तो केवल जीत या हार की बात नहीं होती दोस्तों, बल्कि खेल की भावना का भी महत्व सामने आता है। खेल की भावना हमें अनुशासन, सहयोग और धैर्य सिखाती है। दोस्तों, एक सच्चा प्लेयर वही होता है जो जीत में विनम्र और हार में धैर्यवान बना रहे। इसी महत्व को समझाने के लिए आज 19 मई को वर्ल्ड फेयर प्ले डे मनाया जाता है, जो खेलों में ईमानदारी, सम्मान और निष्पक्षता की भावना को बढ़ावा देती है। अच्छा साथियों, आपने भी ध्यान करा होगा कि टीम फेयर प्ले अवार्ड आईपीएल में दिया जाने वाला एक विशेष सम्मान है, जो उस टीम को मिलता है जो पूरे टूर्नामेंट में अनुशासन, नियमों का पालन और अच्छी खेल भावना का प्रदर्शन करती है। तो साथियों, इसी विषय पर हमें और विस्तार से जानकारी देने जा रही हैं आयुषी वर्मा अपनी वार्ता के माध्यम से, जिसका विषय है खेल की आत्मा होती है खेल भावना। आइए सुनते हैं।
1: जीत को सर पे ना चढ़ने देना, हार को दिल में ना उतरने देना, खेल में जो रखे दिल साफ वही कहलाए असली खिलाड़ी बाप। नमस्कार साथियों, अभी आप आराम से रेडियो पर गाने सुन ही रहे होंगे और मुझे सिर्फ 10 मिनट मिले हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन आज जो बात कहने आई हूँ वो इतनी अपनी है, इतनी सीधी है कि उम्मीद है आप उसे दिल से सुनेंगे। साथियों, आपने देखा ही होगा आज की दुनिया में हर कोई तेज दौड़ रहा है, कोई नौकरी के पीछे, कहीं कोई नंबर के पीछे, कोई लाइक्स के पीछे। और वहीं बात करें आज के दौर की, तो आपने देखा होगा आज की युवा पीढ़ी ने इस दौड़ में खेल को भी शामिल कर लिया है। वहीं इन सब में एक और छोटी सी बात जो हमें इंसान बनाए रखती है, और वो है खेल भावना। अब आप सोच रहे होंगे कि खेल भावना मतलब क्या? तो भाई, खेल भावना का मतलब है वो सोच, वो नजरिया जिससे हम ना सिर्फ खेलते हैं बल्कि हार जीत को जीते हैं। सामने वाले को इज्जत देना, हार मानकर भी मुस्कुराना, जीत कर भी विनम्र रहना, यही तो असली खेल भावना है। साथियों, जानते हैं खेल भावना का असली रंग तो तब नजर आता है जब बच्चा गली में क्रिकेट हार जाए लेकिन बैट लेकर अगले दिन फिर से खेलने आ जाए, जब कोई खिलाड़ी आउट होकर भी एम्पायर से बहस ना करे बल्कि पवेलियन लौट जाए। अब आजकल हम बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा जीतना जरूरी है, जीत कर ही आना, लेकिन कोई कभी ये नहीं बताता हार में भी वो सीख है। यही तो है वो जगह जो खेल भावना की नींव पड़ती है। मैं कई बार सोचती हूँ हमारे स्कूल कॉलेज में खेल का जो मतलब होना चाहिए था वो कहीं गुम सा हो गया है। अब खेल भी नंबर और ट्रॉफी की दौड़ बन गया है। टूर्नामेंट जीतना जरूरी है, नहीं तो बच्चा फेल माना जाता है, जबकि असली जीत तो तब है जब बच्चा सीखे टीम में कैसे खेलते हैं, हार को कैसे झेलते हैं और दूसरे की जीत को कैसे सहराते हैं। यही तो है खेल भावना। अब आप हमारे शहर के ही बच्चों को देख लो, कितने उत्साह से मैदान में उतरते हैं, लेकिन जैसे ही कोई आउट हुआ तो लड़ाई, कोई रन ना दे तो नाराजगी। अरे भाई, खेल का मतलब है खेलना, और जब तक खेल में दिल नहीं होगा तब तक कोई भी जीत अधूरी होगी। एक बात बताऊं आपको, कुछ साल पहले ओलंपिक में एक अफ्रीकी एथलीट दौड़ते दौड़ते गिर गया। पास में एक और खिलाड़ी था जो जीत सकता था, लेकिन उसने पहले गिरे हुए खिलाड़ी को उठाया, फिर दोनों ने साथ दौड़ लगाई। वो शायद गोल्ड मेडल नहीं जीते लेकिन जो दिल जीता वो करोड़ों का था। यही तो होती है असली खेल भावना। और ये सिर्फ स्टेडियम में नहीं होती, बल्कि मैं तो कहती हूँ खेल भावना तो हम सब में होनी चाहिए, हर रोज, हर जगह। जरा सोचिए, अगर ट्रैफिक जाम में कोई आपसे साइड मांगे तो आप छिड़ जाएंगे या हंसकर उसे रास्ता दे दें? अगर कोई सोशल मीडिया पे आपसे अलग राय रखे तो आप गाली दें या सोचें चलो उसका नजरिया ही अलग है, और नजरिया अलग हो भी क्यों ना। इसीलिए खेल

भावना का मतलब है सहनशीलता, विनम्रता और सबसे बड़ी बात दूसरों को इंसान समझना। और हाँ, खेल भावना सिर्फ हार को स्वीकारने में नहीं बल्कि जीत को संभालने और उसकी इज्जत करने में भी होती है। आजकल देखा है, जैसे ही कोई क्रिकेट मैच जीतता है तो लोग बात बात पर ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं, विरोधी टीम की बेइज्जती, खिल्ली उड़ाना। अरे भाई, जीत का भी तो एक

0: गलती को माफ करेंगे और सबसे ज़रूरी इंसानियत को समझेंगे। और जानते हैं, इनमें सबसे बड़ा रोल है माँ बाप का। आजकल माता पिता बच्चों को बताते हैं कि बेटा जीतना ज़रूरी है, लेकिन अगर बच्चा हार जाए तो उसके आंसू पोंछने के बजाय उसे डांट पड़ती है, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है। बच्चों को जीत के साथ साथ हार को अपनाना भी सिखाना होगा। ये बताना होगा कि खेल का असली मतलब सिर्फ मेडल नहीं बल्कि मज़ा है, सीख है और साथ मिलकर आगे बढ़ना है। कभी कभी मैं सोचती हूँ, अगर हमारी राजनीति में खेल भावना होती तो क्या विपक्ष को दुश्मन माना जाता? क्या हर बहस में तू तू मैं होती? अगर हमारे समाज में खेल भावना होती तो क्या किसी की गलती पर उसे जलील किया जाता? नहीं ना, क्योंकि खेल भावना हमें सिखाती है सुनना, समझना, माफ़ करना और आगे बढ़ना। देखिए, जिंदगी भी तो एक खेल ही है ना। कभी हम ऊपर, कभी हम नीचे, कभी दौड़ते हैं, कभी गिरते हैं। लेकिन अगर खेल भावना साथ हो तो हर हार भी एक नई शुरुआत सी लगती है। आजकल हम सक्सेसफुल बनने की इतनी दौड़ में लगे हैं कि स्पोर्ट्समैन बनना ही भूल गए हैं। और यही तो बदलाव लाना है। अगर हम अपने बच्चों को ये सिखा पाएं कि खेल का असली मतलब क्या है, अगर हम खुद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थोड़ा धैर्य, थोड़ी इज्जत, थोड़ा अपनापन लाएं, तो यही होगी असली जीत। एक बात और कहूँ साथियों, हमारे देश में विराट कोहली हो या पीवी सिंधु, धोनी हो या नीरज चोपड़ा, इन सबकी जीत में सिर्फ उनकी ताकत नहीं, उनकी खेल भावना भी चमकती है। जब धोनी फाइनल में रन आउट होकर मुस्कुरा कर चलता है, जब नीरज चोपड़ा पाकिस्तान के खिलाड़ी से हाथ मिलाता है, तब वो सिर्फ खिलाड़ी नहीं रहते, वो मिसाल बन जाते हैं और हम सबके लिए एक संदेश छोड़ जाते हैं कि खेल भावना सिर्फ स्टेडियम की चीज़ नहीं, ये हमारे हर दिन की ज़रूरत है। अब जब अगली बार आपका बच्चा हार कर आए तो उसे जीत की उम्मीद मत दो, उसे समझा दो। जब कोई दोस्त आपसे बहस करे तो तर्क से जवाब दो, ताने से नहीं। क्योंकि खेल भावना जब रिश्तों में उतरती है तो लड़ाइयाँ नहीं होती, समझदारी होती है। चलते चलते एक छोटी सी बात और, जीवन की हर चाल में ना मुंह फुलाओ हार से, खेल भावना रखो सदा, प्यार करो हर यार से। तो साथियों, ये 10 मिनट का ये छोटा सा सफर यहीं ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ अगली बार जब आप क्रिकेट देखें या बच्चों को खेलता देखें या किसी की बात से असहमत हों, तो थोड़ा रुकें, थोड़ा सोचें और खेल भावना से आगे बढ़ें, क्योंकि खेल की आत्मा वही है जो दिलों को जोड़ती है। आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
1: वेलकम बैक साथियों, अभी आप सुन रहे थे वार्ता जिसका विषय था खेल की आत्मा होती है खेल भावना। वार्ताकार थी आयुषी वर्मा। दोस्तों, सुबह की पहली किरण, मंदिरों की घंटियां और एक ऐसा माहौल जहां मन को सुकून मिल जाए, जरा सोचिए कैसी होगी वो जगह। आज हम आपको ऐसी ही एक अनोखी दुनिया की सैर कराने वाले हैं। साथियों, हमारी इस खास यात्रा का पड़ाव है एक ऐसी जगह जो अपनी आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक विरासत और प्राचीन मंदिरों के लिए जानी जाती है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मंदिरों के शहर ईचक की, जहाँ आस्था केवल मंदिरों में नहीं बल्कि लोगों के जीवन और वातावरण में बसती है। झारखंड के हजारीबाग जिले में बसा ईचक अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ कई प्राचीन मंदिर हैं जो लोगों की आस्था का केंद्र है। यही कारण है ईचक को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है। बात करते हैं बुढ़वा महादेव मंदिर की, जो यहाँ का सबसे प्राचीन मंदिर है। कहते हैं पांडवों ने अज्ञातवास में इसी मंदिर में पूजा की थी। इस दिन महाशिवरात्रि पर लाखों श्रद्धालु आते हैं। साथियों, बात करते हैं कपिलेश्वर मंदिर की, जो एक छोटी पहाड़ी पर स्थित है। अच्छा, जानते हैं दोस्तों, इस मंदिर को राजा कपिलनाथ ने 16वीं सदी में बनवाया था, इसलिए इस मंदिर का नाम उन्हीं राजा के नाम से पड़ा। इसी क्रम में आपको बताते हैं राम जानकी मंदिर के बारे में। इस मंदिर की दीवारों पर पूरी रामायण लिखी है, वनवास से लेकर रावण वध तक। रामनवमी पर यहाँ लाखों श्रद्धालु आते हैं और पूजा आराधना करते हैं। साथियों, ईचक सिर्फ हिंदुओं मंदिरों का शहर नहीं है, यहाँ 10वीं सदी का दिगंबर जैन मंदिर भी है। यहाँ मूल नायक 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। मंदिर के खंभों पर जैन मुनियों की छोटी छोटी मूर्तियां बनी है। यहाँ से पालकी यात्रा भी निकलती है। अगर बात करें ईचक की पहचान की, तो यहाँ के मंदिरों की वास्तुकला और धार्मिक महत्व लोगों को बेहद प्रभावित करते हैं। त्योहारों के समय यहाँ का माहौल और भी ज्यादा रंगीन हो जाता है। भजन, पूजा, मेले और भक्तों की भीड़ पूरे वातावरण को भक्ति

में बना देती है। और दोस्तों, किसी भी जगह की पहचान उसके खान पान से भी होती है। ईचक के पारंपरिक झारखंडी व्यंजनों का स्वाद लोगों को खूब पसंद आता है। यहाँ का लिट्टी चोखा, सत्तू का पराठा, पारंपरिक पेय यहाँ की खास झलक दिखाते हैं। दोस्तों, महाशिवरात्रि और नाग पंचमी पर बहुत सारे लोग आते हैं और त्योहार के दिनों में काफी रौनक लगती है। दोस्तों, यहाँ की खास बात जानते हैं? यहाँ महिलाएं हाथ से बनी सुंदर कढ़ाई करती हैं। साड़ियों पर जो काम होता है वो दिल्ली मुंबई तक जाता है। ये यहाँ की संस्कृति को दिखाता है। साथियों, ईचक केवल मंदिरों का शहर नहीं है बल्कि आस्था, शांति और संस्कृति का जीवन संगम है। यहाँ के मंदिरों में गूंजती घंटियां, परंपराओं की मिठास और लोगों की सादगी हर आने जाने वाले के मन को मोह लेती है। साथियों, ईचक की इसी मीठी याद के साथ अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गीत जो इस सफर की खूबसूरती को सुरों में पिरो देगा।

साथियों, अब समय है आप सभी से विदा लेने का, पर विदा लेने से पहले आप सभी को याद होगा कि कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था। प्रश्न था कि नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती कब मनाई जाती है। तो साथियों, आपने सोचा इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? चलिए हम आपको बताते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है 19 मई यानी आज ही के दिन नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती मनाई जाती है। इसी के साथ साथियों, कार्यक्रम युवावाणी समाप्त करने की अपनी रेडियो होस्ट और दोस्त स्वस्ति आर्य को दीजिए आज्ञा। फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी आपसे। नमस्कार।

अभी युवा श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम युववाणी मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 6 बजे हैं, आइए सुनते हैं कार्यक्रम ग्राम्य लोक।

राम राम भाइयों बहनों, मैं लोकेंद्र पाठक कार्यक्रम ग्रामीलोक में आप सभी का स्वागत करता हूं। और कैसे हैं साथियों? भैया गर्मी तो अब बहुत तेज पड़ने लगी है। सुबह होते ही तेज धूप और दोपहर तक खेतों में गर्म हवा चलने लगती है। ऐसी गर्मी में गेहूं कटाई के बाद भूसा भराई जैसे कामों में हम किसानों का तो पूरा दिन कब बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। बस पता चलती है तो गर्मी और लू के थपेड़े। भैया मानते हैं कि हम किसान हैं, लेकिन हाड़ मास के ही तो बने हैं, कोई स्टील या लोहे के तो बने नहीं है। खेत में मेहनत तो तभी कर पाएंगे ना जब गर्मी से बचे रहेंगे, लू से बचे रहेंगे। साथियों, हमारे आगरा और आसपास के क्षेत्रों में जेठ के महीने में गर्मी और लू का असर काफी बढ़ जाता है, इस समय भी बहुत बढ़ा हुआ है। इस मौसम में हम किसान ही नहीं बल्कि हमारे मजदूर साथी और धूप में बाहर काम करने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। लेकिन भैया खेत का काम धूप देखकर तो रोका नहीं जा सकता है, तो उपाय क्या है? उपाय है गर्मी और लू से बचने के तरीके, जिससे हम खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार का भी ध्यान रख सकें। मित्रों, सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि लू आखिर होती क्या है। जब तेज गर्म हवा शरीर को प्रभावित करती है तो उसे लू लगना कहते हैं। लू लगने पे चक्कर आना, सिरदर्द होना,

बहुत ज्यादा प्यास लगना और शरीर में कमजोरी का अनुभव होना जैसी परेशानी हो सकती है। साथियों, ऐसे में हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि दोपहर के समय यदि बहुत आवश्यक काम ना हो तो तेज धूप में बाहर ना निकलें, और खेत में काम करना बहुत जरूरी हो तो सिर पर गमछा, टोपी या सफेद कपड़ा जरूर रखें। सीधी धूप से बचना बहुत जरूरी है भैया, ऐसी गर्मी में हल्के रंग के और सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि इनसे हमारा शरीर ठंडा रहता है। और मित्रों, जितना हो सके पानी पीजिए, भले ही प्यास कम लग रही हो, क्योंकि पानी शरीर में रहेगा तो गर्मी का असर हम बीमार नहीं पड़ेंगे, हम बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे। इसके साथ मित्रों, गर्मी के दिनों में नींबू पानी, छाछ, लस्सी और बेल का शरबत बहुत फायदेमंद माना जाता है। ये शरीर को ठंडक देते हैं और इनसे शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। साथियों, हमें एक बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि खाली पेट तेज धूप में काम करना ठीक नहीं होता है। थोड़ा हल्का नाश्ता या भोजन करके ही बाहर निकलना चाहिए। एक बात का और ध्यान रखना चाहिए हमें कि अपना ही हमें ध्यान नहीं रखना है, हमारे घर में बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, इनका शरीर नाजुक होता है, इन्हें गर्मी या लू जल्दी लग जाती है। और घर के आंगन में जो हमने पशु बांध रखे हैं, वो उनका क्या, वो तो बोल भी नहीं सकते हैं। हमें ही समय समय पर उन्हें पानी देना होगा, उन्हें नहलाना होगा, क्योंकि उनके शरीर में पानी कम हुआ तो उनका दूध भी कम हो जाएगा और हमारी आमदनी भी कम हो जाएगी, और कहीं बीमार पड़ गए तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे। ये तो बात रही गर्मी और लू से बचने की, लेकिन यदि किसी को गर्मी या लू लग जाए तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ध्यान दें कि यदि किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं, शरीर बहुत गर्म हो गया है, तो उसे तुरंत छांव में ले जाना चाहिए। ऐसे में शरीर को ठंडक देने के लिए सिर, हाथ और चेहरे पे ठंडे पानी की पट्टी रखनी चाहिए और धीरे धीरे पानी, नींबू पानी या छाछ पिलानी चाहिए। यदि उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा कमजोरी अनुभव हो रही हो, चक्कर या बेहोशी भी आ रही हो, तो ऐसी स्थिति में बिल्कुल भी देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत डॉक्टर या स्वास्थ्य केंद्र पे संपर्क करें और वहां उसे ले जाएं। और साथियों, एक बात तो हमें ध्यान रखनी ही होगी कि क्या हम तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी और पुदीना पर दूसरों को खिलाने के लिए खेत में उगाते हैं, बस बेचने के लिए उगाते हैं? भाई, हम स्वस्थ रहेंगे तभी तो दूसरों को भी खिला पाएंगे। इसलिए गर्मी के दिनों में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी, पुदीना खुद भी खाएं, तभी तो बेच पाएंगे। और अपने खेत में तो काम दोपहरिया में करें तो वो तड़के कर लें, दोपहरिया से अच्छा ये है कि सुबह सुबह काम कर लें, और गर्मी और लू से आप हमेशा बचे रहेंगे। साथियों, उन उपायों को अपनाने से हम गर्मी से तो बच ही जाएंगे, लेकिन हमारे जीवन में बोरियत ना आए, इससे क्या किया जाए भैया? इससे बचने के लिए आइए सुनते हैं कुलदीप शर्मा के सुरों में मैं तड़के जाऊं खेत। वो भी ये बात जान गए हैं कि हमें भी तड़के खेत जाना चाहिए, तो आइए सुनते हैं ये लोकगीत।

0: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
1: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
0: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
1: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
2: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दे, प्लास्टिक छोड़े, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, आज नीलम संजीव रेड्डी जी की जयंती है, जिन्होंने अपने पूरे जीवन सादगी और ईमानदारी के साथ देश की सेवा की और भारत के राष्ट्रपति पद की गरिमा प्रदान करी। और साथियों, आज हजारी प्रसाद द्विवेदी की पुण्यतिथि भी है, जिन्होंने हिंदी साहित्य, भारतीय संस्कृति और ज्ञान की परंपरा को नई पहचान दी। साथियों, इन महान विभूतियों का जीवन हमें सादगी, ज्ञान और समाज सेवा की प्रेरणा देता है, जिसे हमें अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, लोकगीत से पहले हमने गर्मी और लू से बचने के उपाय जाने थे। गर्मी और लू से बचकर हम तो स्वस्थ और सुरक्षित हो जाते हैं, लेकिन हमारे खेतों का स्वास्थ्य इस बात पर निर्भर करता है कि खेत में किस प्रकार के और कैसे उर्वरक प्रयोग किए जा रहे हैं। संतुलित उर्वरक उपयोग का टिकाऊ खेती में क्या योगदान है, आइए इसे जानने के लिए सुनते हैं डॉक्टर जगमोहन सैनी से अनेंद्र सिंह की बातचीत।
4: साथियों नमस्कार। साथियों, आज हमारा देश आत्मनिर्भर देश बनने की तरफ अग्रसर है। हर क्षेत्र में हम अब आत्मनिर्भर होना चाहते हैं। खेती किसानी एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है आज, जहां खेतों में उत्पादन तो बहुत है, लेकिन हमारी जो थाली है उसका पोषण वो कमज़ोर होता जा रहा है। अनाज है लेकिन इंसान जो है वो स्वस्थ नहीं है। किसान खेतों में कड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसकी मिट्टी थक चुकी है, पानी घट गया है, बीमारियां बढ़ रही हैं। बीते दिनों में हमने जब हरित क्रांति आई तो ये देखा कि ज़्यादा उत्पादन करने के लिए ढेर सारे उर्वरक डाले, दवाएं छिड़कीं, लेकिन कहीं ना कहीं हमने अपनी मिट्टी को ख़राब कर लिया। तो आज इन्हीं सब बातों से कैसे निपटा जाए और कैसे अपनी खेती को सस्टेनेबल बनाया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में जुड़े हैं डॉक्टर जगमोहन सैनी साहब। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
5: धन्यवाद साहब।
4: डॉक्टर साहब, पिछले जो हरित क्रांति की बात हमने की, उसके साइड इफेक्ट अब हम सबको दिख रहे हैं। मिट्टी हमारी किस तरह से बेजान हो गई है।
5: बिल्कुल सही।
4: इवन हमारा पानी तक प्रदूषित है, भूजल भी घटा है। तो ऐसी परिस्थितियों में किस तरह से, जो हमने एक्सेसिव यूज किया फर्टिलाइजर्स का, किस तरह से उसको संतुलित बनाया जाए, और जो इतना ज्यादा खर्चा किसान करता है, अपनी लागत बढ़ा लेता है इन उर्वरकों के चक्कर में, उस पर जो है कैसे कंट्रोल करके, और जो हमारी थाली का पोषण कम हुआ है उसको कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए।
5: बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आज के समय अगर देखा जाए तो हमने हरित क्रांति के बाद में खेती में फसलों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता तो पाई एक तरीके से, लेकिन उसकी कुछ कीमत भी हमें चुकानी पड़ रही है, और वो कीमत ऐसी चुकानी पड़ रही है जिसको शायद उसकी भरपाई करना बड़ा मुश्किल है। शुरुआत में अगर देखा जाए तो 1 किलो अनाज पैदा करने के लिए आपको जो उर्वरक की जरूरत होती थी वो बहुत थोड़ी होती थी, लेकिन आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो आप एक बैग लगा के और कई सारे उर्वरक डालने के बाद भी आप जमीन से उतना उत्पादन नहीं ले पा रहे जितना आप लेना चाहिए।
4: बिल्कुल।
5: खेती में किसान बहुत कड़ी मेहनत कर रहा है अभी, लेकिन जो उसकी मेहनत है उसका फल उसको वो मिल नहीं पा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो जो उत्पादन होना चाहिए उतना वो नहीं हो पा रहा है, उत्पादन तो हो ही नहीं रहा, साथ के साथ उसकी लागत भी बढ़ती जा रही है। और इसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण वो क्या है कि जो पिछले एक सदी से अगर हम देखें तो किसान भाइयों के बीच में

0: यही समझ रहे हैं कि जितना ज्यादा खाद डालेंगे, जितना ज्यादा दवाई डालेंगे,
1: उतना
0: उतना ही
1: ज्यादा
0: ज्यादा उत्पादन
1: उत्पादन
0: होएगा।
1: होगा। ठीक है,
0: लेकिन वो कंसेप्ट जो है, जो वो विचारधारा है, वो अब कामयाब नहीं हो पा रही है। उसका मुख्य कारण क्या है कि जो हमारी जो मिट्टी है या जो हमारी धरती माँ है एक तरीके से, जिस जो हम कहें, उसकी जो सेहत है उस पर बहुत बुरा असर होता जा रहा है। अब
1: और ये
0: वो,
1: शायद किसान ने सपने में भी नहीं सोचा होगा इस स्थिति से दो-चार
0: हाँ
1: होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल सही करें।
1: जी
0: और मैं आपको एक अनुमान दूं कि आपकी जो फर्टाइल सोयल होती है या जो आप 6 इंच जो सोयल बनती है, उस सोयल को बनने में लगभग 2000 साल लग जाते हैं। इतना टाइम लग जाता
1: और
0: है,
1: उसको हमने बीते 20-30 साल में ही
0: खराब कर दिया है
1: पूरी तरह से खराब कर दिया।
0: वो आपकी। जिस तरीके से आज हम खेती कर रहे हैं, जो हमारा खेती करने का तरीका है, ज्यादा डालो, ज्यादा दवाई डालो, ज्यादा उर्वरक डालो, ज्यादा उत्पादन लेंगे, अगर उस तरीके से चलते रहे तो शायद भविष्य में जितनी भी ये जो हमारी खेती योग्य भूमि है, ये बैरन लैंड में कन्वर्ट हो जाएगी।
1: और इसके अलावा एक चीज और है कि हमारी जो खेती योग्य भूमि थी वो भी सिकुड़ रही है।
0: हाँ, क्योंकि आप देखिए जितना शहरीकरण बढ़ता जा रहा है,
1: जी जी
0: आबादी बढ़ती जा रही है, तो उसके कारण जो खेती योग्य जमीन है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो किसानों के पास में लिमिटेड जो जमीन है उस पे भार बढ़ता जा रहा है। उस जो आबादी बढ़ रही है, उस आबादी को उसका जो पेट भरने की जो जिम्मेदारी किसान के ऊपर है, उसका भी कहीं ना कहीं भार आ रहा है। उसकी वजह से वो क्या कर रहे हैं कि निरंतर फसलें ले रहे हैं, लगातार खेती करते हैं, और लगातार खेती में फिर वो ऐसे उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं जिनकी कुछ जो जरूरत है वो थोड़ी है या कुछ की ज्यादा है, तो उनको ये इसका ज्ञान नहीं है बिल्कुल भी। आज के समय देखा जाए तो कितना डालें, कब डालें,
1: और क्यों
0: कैसे
1: डालें,
0: डालें और
1: क्यों डालें।
0: क्यों डालें, तो अगर ये जानकारी किसान भाई को मिल जाए तो शायद मुझे लग रहा है वो खेती में जो अधिक उत्पादन ले सकता है। उसके साथ साथ जो आप कह रहे थे कि अनाज की या जो हमारी भोजन की थाली तो भरी हुई है
1: जी जी
0: लेकिन वो पोषण युक्त नहीं है, उसकी वजह से इंसान का स्वास्थ्य भी कहीं ना कहीं उससे
1: प्रभावित
0: प्रभावित
1: हो
0: हो
1: रहा है।
0: रहा है। आज के टाइम में देखिए बहुत सारी बीमारियां हो रही है, कम उम्र में अटैक आ रहे हैं या बीपी की बीमारी है, बहुत सारी चीजें हो रही है। तो उसका कारण यही है कि जो हमारा भोजन है वो पोषण युक्त नहीं है। अगर न्यूट्रिशन की कमी अगर शरीर के अंदर है तो हमारा जो शरीर है वो बीमारियों से ग्रस्त धीरे धीरे होएगा होएगा।
1: आपने कहा था अभी किसान को अन्नदाता का नाम देते हैं हम सभी लोग। किसान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो जो थाली में पहुंचा रहा है उत्पाद वो पोषण युक्त हो, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहतर हो। लेकिन शायद हमने वो चीज़ जो है अधिक उत्पादन लेने के चक्कर में
0: उस पर
1: भुला दी,
0: ध्यान नहीं दे
1: उस पर
0: रहे,
1: ध्यान नहीं
0: ध्यान
1: दिया।
0: नहीं दे रहे।
1: तो डॉक्टर साहब, जो हमारी सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर की बात हम जो कर रहे हैं, टिकाऊ खेती के क्या वो कंपोनेंट हैं जो किसान को समझने की।
0: जो आपकी टिकाऊ खेती है इसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो संतुलित उर्वरकों का उपयोग सबसे महत्वपूर्ण बात किसानों को यही समझनी पड़ेगी। अब जो वो खेती कर रहे हैं उस खेती के अंदर उनको संतुलित उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए, और संतुलित उर्वरकों का उपयोग करने के लिए अपने खेतों की मिट्टी की जांच करवाएं। उस जांच के आधार पर जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड बनता है, उस मृदा स्वास्थ्य कार्ड में जो उर्वरकों की मात्रा दी गई है उसका खेती के अंदर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, तो उससे क्या होगा कि उसकी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है वो उसमें सुधार होगा और जो उपज है वो उपज भी गुणवत्तापूर्ण होगी। तो इस तरीके से किसान भाइयों को जो संतुलित उर्वरक उपयोग है उस पर ध्यान देना चाहिए। संतुलित उर्वरक उपयोग क्या है, वैज्ञानिक विधि से मिट्टी की जांच होती है, उस जांच के हिसाब से और उस क्षेत्र में जो फसलें लगाई जा रही है उन फसलों की अनुशंसा के अनुसार, और जो मिट्टी की फर्टिलिटी या उर्वरता का जो स्तर है उसके आधार पे, जलवायु की स्थिति के आधार पे मिट्टी के अंदर जो उपलब्ध मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट है, मुख्य और सूक्ष्म पोषक तत्व तो है,
1: जी जी
0: उनकी मात्रा का ज्ञात करके और उसके आधार पे एक जो 4 R न्यूट्रिएंट की जो वो होता है
1: कंसेप्ट है।
0: कंसेप्ट है,
1: जी
0: जिसमें जैसे राइट डोज, राइट टाइम, राइट मेथड, राइट सोर्स, इनका इस्तेमाल, मतलब सही मात्रा, सही जो आपका
1: समय
0: समय,
1: पर
0: सही
1: हो
0: स्रोत और
1: और
0: सही विधि
1: जी
0: देने का तरीका भी सही होना
1: जी
0: चाहिए।
1: जी
0: तो उससे अगर इस कंसेप्ट को अपनाया जाए किसान भाई, तो वो जो संतुलित उर्वरक उपयोग ये चारे के चारे चीजें मिलके बनाती है। उससे क्या होगा कि जो पारंपरिक उर्वरक जो हमारे यूरिया है, DAP है, इनका जो अधिक इस्तेमाल कर रहे हैं खेती में, और उनके अधिक इस्तेमाल से जो उनके नकारात्मक प्रभाव फसल पे और मानव स्वास्थ्य पे आ रहे हैं उसको इनसे दूर किया जा सकता है और खेती की लागत को भी
1: कम
0: कम
1: किया
0: किया
1: जा
0: जा
1: सकता।
0: सकता है।
1: ठीक।
0: ऐसे ही एक कंसेप्ट है आपका इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एकीकृत पादप पोषण। तो उसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो रासायनिक खादें हैं, रासायनिक खादों के साथ साथ आप उसमें जैविक खादों का इस्तेमाल करें। जैविक खादों में जैसे गोबर की खाद है, आपकी
1: हरी
0: हरी
1: खाद
0: खाद
1: है।
0: है,
1: जी जी
0: उसके अलावा वर्मी कंपोस्ट है, या जो बायो फर्टिलाइजर है उनका आप इस्तेमाल करते हुए उसको आपको करना चाहिए। तो इस तरीके से इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करने से क्या होगा कि आपके

0: रासायनिक खादों के ऊपर निर्भरता
1: कम
0: कम
1: होती
0: होगी,
1: जाएगी।
0: क्योंकि आज के समय अगर देखा जाए तो भारत सरकार की सबसे बड़ी समस्या ही यही है,
1: बिल्कुल, आजकल
0: जिस
1: जो
0: तरीके
1: वैश्विक
0: से।
1: परिदृश्य है डॉक्टर साहब,
0: हाँ वही
1: उसमें
0: वही
1: ज्यादातर हमें चीजें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं, और सरकार का भी प्रयास अब यही होगा भी कि कैसे जो है किसान को ये बात समझाई जाए कि उर्वरकों पर निर्भरता कम करनी है और उर्वरकों का संतुलित प्रयोग वो कितना जरूरी है।
0: वो कितना जरूरी है।
1: जी
0: आप ये देखिए कि जो हमारे देश में जितना भी डीएपी खाद का जो कंजप्शन होता है उसका अधिकतर पार्ट हम सारा का सारा इंपोर्ट करते हैं। उस वजह से क्या है कि अब थोड़ा सा सरकार के ऊपर सब्सिडी का भी भार ज़्यादा आ रहा है, और उसकी वजह से कहीं ना कहीं इकोनॉमिक कंडीशन जो होती है उसमें भी कहीं ना कहीं वो
1: बिल्कुल
0: फ्लक्चुएशन आती है।
1: बिल्कुल
0: तो इसके लिए सरकार क्या कर रही है कि जो हमारे ट्रेडिशनल उर्वरक हैं या जो पारंपरिक उर्वरक हैं उनके वैकल्पिक स्रोतों के ऊपर सरकार जोर दे रही है, जैसे नैनो उर्वरक है, उनका खेती में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, ताकि क्या होगा कि जो उनकी न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी है जो हमारे पारंपरिक उर्वरक है उनकी बजाय उनकी ज़्यादा होती है। डीएपी की जो अगर मैं बात करूँ तो इसकी जो न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी होती है वो 15 से 20% होती है। मतलब अगर आपने
1: बस
0: 100 किलो खेत में यूज किया तो वो सिर्फ पौधे को या फसल को 15 किलो ही मिलेगा। अगर मैं यूरिया की बात करूँ तो यूरिया 30 से 40% होती है, जबकि अगर आप नैनो फर्टिलाइजर को अगर आप यूज कर रहे हैं तो इनकी न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी या उपयोग दक्षता इनकी मोर देन 90% होती है, 90% से
1: ज्यादा
0: ज्यादा
1: है।
0: होती है। तो हमें ऐसे उर्वरकों के विकल्प तलाशने होंगे, या ऐसे उर्वरकों के विकल्प जो बाजार में उपलब्ध है, जो भारत सरकार द्वारा उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, उनका हमें खेती में ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि रासायनिक खादों के ऊपर से हमारी निर्भरता कम हो, जो
1: और जो
0: पारंपरिक
1: हमारी
0: है
1: मिट्टी की जरूरत है उसका पोषण है वो भी बरकरार
0: वो भी
1: रहे।
0: बरकरार रहे। और ये जितने भी नैनो फर्टिलाइजर हैं ये हमारे खुद के देश में बन रहे हैं, ये कहीं से बाहर से इंपोर्ट नहीं हो रहे, तो जो हमारी करेंसी जो बाहर जा रही है
1: वो
0: उसको
1: उस
0: भी
1: पे
0: हमें
1: विराम लगेगा।
0: विराम लगेगा। तो
1: जी जी
0: एक तरीके से ये जो तीन
1: और
0: मेन क्या कहते
1: अल्टीमेटली ये सारी
0: हैं।
1: की सारी चीजें हमारी अपनी जेब पर आती हैं,
0: हाँ
1: किसान की लागत है
0: हाँ
1: वो कमी होगी, आपको जो आर्थिक लाभ है वो भी होंगे,
0: वो भी
1: और साथ साथ आपके देश की माली हालत भी सुधरेगी।
0: माली हालत भी सुधरेगी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आज का जिस तरीके से विश्व का परिदृश्य मैं देखता हूँ या जो समझ पा रहे हैं, जो देश खेती के अंदर सबसे आगे रहेगा वो सस्टेन करेगा।
1: और हिंदुस्तान तो कृषि प्रधान
0: आपने
1: देश है
0: कोरोना काल
1: हमारा।
0: में भी देखा होगा
1: जी
0: कि
1: जी
0: सिर्फ
1: बिल्कुल
0: एग्रीकल्चर सेक्टर ही ऐसा था जो चलता रहा और देश को भी चलाता रहा।
1: जी
0: तो कब तक ये चलेगा? जब तक आपकी मिट्टी स्वस्थ रहेगी। और मिट्टी को स्वस्थ कैसे रख पाएंगे? संतुलित उर्वरक का उपयोग करके। तो अब किसान भाइयों को एक जो नया दर्शन जो आज की परिस्थिति में उभर के आ रहा है, जिसमें जैसे आपने बताया कि मिट्टी बीमार हो रही है, जो हमारे जल स्रोत हैं, नदियां हैं, उनमें भी एक तरीके से जो
1: दूषित होते जा रहे
0: प्रदूषित
1: हैं।
0: हो रही है, केमिकल का वेस्टेज सारा उनमें जाके मिल रहा है, और जो भूजल है वो तो आप देख ही रहे हैं कि
1: वो
0: ग्लोबल
1: भी
0: वार्मिंग की
1: बिल्कुल
0: वजह से कभी
1: बिल्कुल
0: असामयिक वर्षा कम होती है, कभी ज्यादा होती है, तो उससे भूजल का वो भी स्तर जो है वो धीरे धीरे गिर रहा है।
1: इवन नदियां भी
0: तो
1: आजकल देखेंगे आप तो उनमें भी जो है आपको बहुत ज्यादा पानी नहीं दिखाई देता।
0: और जो भोजन उगा रहे हैं उसमें भी पोषण नहीं है। तो इन सब चीजों को देखते हुए अब भारत सरकार और जो राज्य सरकार है, कृषि विश्वविद्यालय, कृषि विज्ञान केंद्र है, और जो प्राइवेट कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब मिलके अभी इसी समय इस पे फोकस कर रहे हैं कि पूरे देश में किसानों के बीच में संतुलित उर्वरकों के विषय के बारे में उनको जागरूक किया जाए, इसके क्या फायदे होते हैं वो किसानों को बताया जाए, तो उससे क्या होगा कि वो ज्यादा से ज्यादा इसका अपनी खेती में इस्तेमाल कर सकते हैं।
1: और एक बात डॉक्टर साहब जो मैं और जोड़ना चाहता हूँ कि प्रकृति जो है उसके सानिध्य में रहना, उसके साथ रहना, पर्यावरण को संरक्षित करना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है, और अन्नदाता किसान की तो और बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। तो जो एक पर्यावरण संरक्षण का दायित्व है उसको भी शायद हम, जो ग्लोबल वार्मिंग की बात आपने की और जो ग्रीन हाउस जैसे चीजें हैं उनको हम कम कर सकते हैं, हमारे जो पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है उसको हम कहीं ना कहीं अरेस्ट कर सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर संतुलित उर्वरकों का उपयोग आप करते हैं तो जितने भी ये जो आपका फर्टिलाइजर बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं या जितनी भी और चीजें, कोई भी खाद बन रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उससे जो भी आप मटेरियल बन रहा हो तो वो कहीं ना कहीं वो कोई जो प्लांट है उस प्लांट से कोई ना कोई तो स्मोक निकल ही रहा होगा, तो उससे कहीं ना कहीं ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित तो उसमें CO2 गैस भी जा रही होगी, नाइट्रस भी जा रहा होगा,
1: उसमें भी
0: तो
1: उसको भी
0: उसमें
1: कम करने
0: कम
1: में
0: करने
1: किसान
0: में
1: योगदान दे
0: योगदान
1: सकता
0: है।
1: है। तो
0: तो
1: किसान साथियों, ये जो बातें आज डॉक्टर साहब ने आपके साथ शेयर की, साझा की, आपको ये समझाने के लिए कि आप अन्नदाता हैं, खेती की जो करके आप उत्पाद पैदा करते हैं उसकी गुणवत्ता सुधारना, अपनी लागत कैसे कम की जा सकती है एक टिकाऊ खेती को संरक्षित करने के लिए संतुलित उर्वरकों के प्रबंधन के माध्यम से, ये सब

0: चीजें आज आपने जो डॉक्टर साहब से समझी हैं, मुझे उम्मीद है कि ये जो टिकाऊ खेती और जो पर्यावरण संरक्षण, इन सब में किसान जो है अपना बेहतर तरीके से योगदान दे पाएगा। डॉक्टर साहब, टिकाऊ खेती में जो मेन मतलब अगर कोई किसान समझना चाहे कि टिकाऊ खेती में संतुलित उर्वरक प्रबंधन के मुख्य मुख्य फायदे
1: फायदे
0: अगर
1: क्या
0: वो
1: है
0: समझना चाहे, तो उनको आप कैसे परिभाषित करेंगे?
1: इसमें? देखिए, जैसे जो टिकाऊ खेती में संतुलित उर्वरकों का मुख्य फायदा तो क्या है कि जो आपकी मिट्टी का जो स्वास्थ्य है या उर्वरता है वो आपकी बनी रहती है दीर्घ काल तक। उससे क्या होगा कि जब उर्वरता सही रहेगी तो मिट्टी में सूक्ष्म जीव जो है उनकी वृद्धि होगी, और सूक्ष्म जीव ज्यादा रहेंगे तो जो भी आप खाद वगैरह डाल रहे हैं वो पौधे पूरी तरीके से ले पाएंगे। उसके साथ साथ आपके खेत का जो जीवांश है या जो मिट्टी का जो जीवांश है उसमें जैविक कार्बन की बढ़ोतरी होगी, तो आपको कम रसायनों का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि वो न्यूट्रिएंट का पावर हाउस होता है एक तरीके
0: ठीक
1: से।
0: बात,
1: आपकी जो सूक्ष्म जीव है वो आपकी जो सोइल की फिजिकल स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करेंगे, तो आपकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो सोइल की
0: बढ़ेगी।
1: वो बढ़ेगी, तो आपको फिर सिंचाई वगैरह की कम आवश्यकता पड़ेगी, ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी। पोषक तत्वों का संतुलित अगर आप प्रयोग करेंगे तो आपके जो पोषक तत्वों की जो डेफिशिएंसी है उसकी समस्या से भी आप मुक्ति पा सकते हैं। इसके साथ साथ जो आपकी फसल की उपज और गुणवत्ता दोनों में वृद्धि होगी, और जब उपज और गुणवत्ता में वृद्धि होगी तो फिर किसान का आर्थिक लाभ भी अधिक
0: जरूर
1: होगा,
0: सुनिश्चित होगा।
1: और साथ में कम खाद डालने से पर्यावरण का संरक्षण भी होगा। तो ये चार मुख्य मुख्य फायदे हैं किसान भाइयों को, इनको संतुलित उर्वरक उपयोग अपनाने से ये चार मुख्य फायदे किसान भाइयों को मिलते हैं। तो किसान भाइयों को मेरा एक ही आग्रह रहेगा कि अपनी खेती में, चाहे वो रबी की सीजन की खेती हो, चाहे आपके खरीफ के सीजन की खेती हो, जो भी आप खेती करें मिट्टी की जांच के हिसाब से संतुलित उर्वरकों का उपयोग करें, क्योंकि जितना ज्यादा संतुलन मिट्टी के अंदर पोषक तत्वों का होगा उतना ही ज्यादा संतुलन आपके भोजन की थाली के अंदर भी रहेगा, तो आपका स्वास्थ्य भी ठीक
0: बेहतर
1: रहेगा।
0: हो, किसान को अपनी मिट्टी की सेहत को पहचानना वो ज़्यादा महत्वपूर्ण
1: जी
0: है। तो किसान साथियों, डॉक्टर सैनी साहब, आप हमारे किसान साथियों के साथ आकर हमारे स्टूडियो में जुड़े, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
1: धन्यवाद सर।
2: साथियों, अभी हम सुन रहे थे डॉक्टर जगमोहन सैनी से अनेंद्र सिंह की बातचीत, जिसमें हमने जाना कि संतुलित उर्वरक उपयोग का टिकाऊ खेती में क्या योगदान है। आइए जानते हैं कि हम किसान इस पखवाड़े क्या कर रहे हैं। साथियों, इस पखवाड़े आगरा और आसपास के क्षेत्रों में गेहूं की कटाई और मड़ाई के काम के बाद हम किसान भूसा भराई और अनाज भंडारण में व्यस्त दिख रहे हैं। वहीं कुछ किसान आलू की खेती कर रहे थे, जो वो खुदाई के बाद खेतों की सफाई और अगली फसल लेने की तैयारी में जुट गए हैं। कुछ किसान मूंग बाजरा और हरे चारे की बुआई की तैयारी भी शुरू कर रहे हैं। वैसे साथियों, तेज गर्मी को देखते हुए हम किसान भी सुबह और शाम के समय ही सिंचाई करना अब उचित मान रहे हैं। अब जब हम चौपाल में बैठे ही हैं, तो आइए हम भी जान लेते हैं आगरा व आसपास के क्षेत्रों के मौसम की जानकारी, क्योंकि इस समय मौसम में बहुत ज्यादा गर्मी बढ़ी हुई है। विगत 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। आगामी 24 घंटों में आगरा व आसपास के क्षेत्रों का अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दिन में लू चलने की संभावना है। आइए इसी के साथ जान लेते हैं आगरा मंडी भाव, जिसमें टमाटर 600 से लेकर 1000 रुपए प्रति क्विंटल, प्याज का भाव है 800 से लेकर 1600 रुपए प्रति क्विंटल। तो साथियों, मंडी भाव और मौसम की जानकारी के बाद अब समय हो चला है आपके मनोरंजन का। तो चलते चलते आइए सुनते हैं राकेश कुमार शर्मा के सुरों में ये लोकगीत।

तो साथियों, अभी आप अपने रेडियो साथी लोकेंद्र पाठक के साथ सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक। कल फिर मिलते हैं इसी समय इसी कार्यक्रम में, तब तक के लिए राम राम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्राम्य लोक, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 6:30 हुए हैं। अब श्रमिक श्रोता सुनेंगे कार्यक्रम मजदूर मंडल।

श्रमिक दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम मजदूर मंडल में। आज आपके साथ कार्यक्रम में मैं हूं संतोष वर्मा। नमस्कार। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि बीमार बना देने वाली इस तेज गर्मी में आप अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य का ध्यान रख रहे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अगर कोई शारीरिक मानसिक समस्या है तो जल्दी से दूर हो जाए, ऐसी कामना भी करते हैं हम। और आप सभी चाहते भी यही हैं दोस्तों कि सेहतमंद रहें, समृद्ध रहें, खुशहाल रहें, और इसके लिए मेहनत भी करते हैं। पर कभी कभी सुबह से शाम तक रोज पसीना बहाने के बावजूद भी परिवार की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते। और ऐसा होता है हमारे उन भाई बहनों के साथ जिन पर बड़े परिवार की जिम्मेदारी है। बढ़ती महंगाई के बीच अपनी जरूरतों को पूरा करना हम श्रमिकों के लिए एक चुनौती की तरह है। यदि परिवार बड़ा हो तो सीमित आमदनी में सबकी जरूरतें पूरी करना और भी मुश्किल है। इसी मुश्किल को आसान बनाने के लिए परिवार को छोटा रखना जरूरी है। छोटा परिवार यानी बेहतर जीवन की सोच, क्योंकि परिवार में बच्चों की पढ़ाई, स्वास्थ्य और भविष्य पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। अब ऐसी सोच का जमाना नहीं रहा दोस्तों कि घर में 6-7 बच्चे हों जो थोड़े बड़े होकर कमा कर लाएंगे और परिवार को समृद्ध बनाएंगे। आज महंगाई का दौर है, इस दौर में यदि खाने वाले 10 और कमाने वाले 2 ही होंगे तो कैसे गुजारा होगा। मान लीजिए 2 भाई हैं, एक हैं हमारे रमेश भाई और दूसरे सुरेश भाई। दोनों एक ही कारखाने में बराबर मजदूरी का काम करते हैं। रमेश जी के 2 बच्चे हैं तो वो अपनी सीमित कमाई में ही बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं, टाइम पर किताब कापियां, कपड़े और दूसरे सामान लाकर

0: देते हैं। घर में अच्छा खाना बनता है, दूध भी आता है और उनकी पत्नी भी सेहतमंद हैं। दूसरी तरफ हैं हमारे सुरेश भाई, जिनके 6 बच्चे हैं, पर वो परेशान ही रहते हैं। सभी बच्चों की पढ़ाई का खर्चा नहीं उठा पा रहे तो सबको पढ़ा भी नहीं पा रहे। घर में भी अभाव रहता है, किसी की फीस जमा करनी है, किसी की चप्पल टूट गई है, कोई बीमार पड़ा है तो कोई बाहर फालतू घूम रहा है। ज्यादा बच्चे होने से उनकी पत्नी भी थकी थकी सी रहती हैं और बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती। हमारे सुरेश भाई कितनी भी मेहनत कर लें, रमेश भाई की तरह परिवार खुशहाल नहीं बना सकते। चाहकर भी हम बड़े परिवार में सभी की जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा नहीं कर सकते। ऐसे में बच्चे पढ़ने के बजाय मजदूरी में लग जाते हैं और उनका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। हम में से ऐसा कोई नहीं चाहता कि जिस तरह से हमने मजदूरी में अपनी जिंदगी काट दी, उसी तरह हमारे बच्चे भी रह जाएं। सभी यही चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे चलकर समृद्ध और खुशहाली का जीवन जिएं, और ऐसा तभी मुमकिन है दोस्तों जब परिवार छोटा हो। आज जमाना हुनर और शिक्षा का है। 5-6 बच्चों को बिना पढ़ाए मजदूर बनाने से बेहतर है कि 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा देकर काबिल इंसान बनाया जाए, जिससे आगे चलकर वे परिवार का नाम रोशन कर सकें और गरीबी के चक्र को तोड़ सकें। तो अपने सभी श्रमिक भाई बहनों से हमारा निवेदन है कि परिवार नियोजन के प्रति जागरूक रहें, छोटा परिवार रखें। सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर परिवार नियोजन से जुड़ी सलाह और सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्वास्थ्य विभाग और आशा बहन जी भी समय समय पर लोगों तक जानकारी पहुंचाते हैं ताकि परिवार स्वस्थ और खुशहाल रहें। इन जानकारियों पर ध्यान दें, जागरूक रहें। आशा दीदी से मिलें, स्वास्थ्य केंद्र जाएं, परिवार नियोजन के साधन अपनाएं, झिझक छोड़ें और जिम्मेदारी उठाएं। हमेशा याद रखिए दोस्तों कि अगर हमारा परिवार छोटा रहेगा तो अपने साथ साथ देश के भविष्य को संवारने में भी हमारा योगदान होगा। हमारे बच्चे अगर पूरा ध्यान देने पर तरक्की कर पाएंगे, कुछ बन जाएंगे, तो हम अपने आराम के दिन भी अच्छे से बिता पाएंगे, यानी वृद्धावस्था में सुकून से रह पाएंगे। और बात ये भी है दोस्तों कि हम अपनी जवानी में कामकाजी दिनों में तो मेहनत कर रहे हैं, पर अगर बुढ़ापे में बच्चों का साथ ना मिले तो हो सकता है कि जीवन कठिन लगे। लेकिन अगर हम जागरूक हैं तो सरकार की पेंशन योजनाओं से जुड़कर इस कठिनाई से बच सकते हैं। कौन कौन सी हैं ये योजनाएं और कैसे इनका लाभ उठाएं, आइए इसी के बारे में पूरी जानकारी लेते हैं। सुनते हैं मुकेश कुमार गुप्ता की ये वार्ता पेंशन योजनाओं के लाभ।
1: श्रमिक समाज की वो महत्वपूर्ण इकाई है जिसके बिना निर्माण कार्य संभव नहीं है। संगठित एवं असंगठित क्षेत्रों में लाखों करोड़ों श्रमिक कार्य करते हैं। संगठित क्षेत्र के उद्योगों में जो श्रमिक काम करते हैं उनके लिए सरकारी स्तर पर बहुत सी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र में जो श्रमिक काम करते हैं उन्हें काफी कठिनाइयों से जूझना पड़ता है, क्योंकि उनके लिए जो भी योजनाएं हैं जानकारी के अभाव में उनका लाभ नहीं मिल पाता है। विभिन्न क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों, निर्धन, बेसहारा, विकलांगजन और निराश्रित विधवाओं के भविष्य के लिए पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं। इनमें मुख्य है अटल पेंशन योजना। यह योजना भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों व कामगारों को सरकारी कर्मचारियों की तरह पेंशन की सुविधा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत हर महीने अंशदान करना होता है। अंशदान की रकम के अनुसार ही 60 साल की उम्र पूरी करने के बाद 1,000 से 5,000 रुपए तक की पेंशन मिलेगी। कामगार के जीवित रहने तक पेंशन जारी रहेगी। उसके बाद नामित पत्नी को पेंशन मिलेगी। नामित की मृत्यु हो जाने के बाद बच्चों को एकमुश्त 8,05,000 रुपए मिलेंगे। 18 से 40 साल तक उम्र वाले कामगार इस योजना का हिस्सा बन सकते हैं। कामगार जितनी कम उम्र में इससे जुड़ेंगे किस्त उसी अनुपात में कम होगी। यह योजना बचत खाता धारकों के लिए शुरू की गई है। वर्ष 2015 से 2019 तक कर्मचारी के अंशदान पर केंद्र सरकार 50% तक सह अंशदान देगी। अगर आप 18 साल की उम्र

0: इस योजना का हिस्सा बनते हैं तो 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन पाने के लिए 60 साल की उम्र तक 210 रुपये प्रतिमाह जमा कराने होंगे। 40 साल की उम्र में योजना से जुड़ने पर किस्त 1,954 रुपये प्रतिमाह हो जाएगी। तब 20 साल में 3,48,908 रुपये जमा हो पाएंगे। 60 साल पूरे होते ही 5,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन शुरू हो जाएगी। जब तक कामगार या उनके नामित जीवित रहेंगे पेंशन जारी रहेगी। उनकी मृत्यु के बाद बच्चों को 8,05,000 रुपये मिल जाएंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के विकलांगजन कल्याण विभाग द्वारा संचालित विकलांग पेंशन योजना भी चलाई जा रही है। सभी पात्र व्यक्ति निराश्रित हैं जिनकी विकलांगता कम से कम 40% है तथा मासिक आय 1,000 से अधिक नहीं है को 300 रुपये प्रतिमाह की दर से भरण पोषण अनुदान दिया जाता है। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न श्रेणी के विकलांगों को उनकी आवश्यकता अनुसार 6,000 की सीमा तक के कृत्रिम अंग और सहायता उपकरण निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं। विकलांग से शादी करने पर पुरस्कार, दुकान निर्माण और संचालन योजना विकलांगता निवारण के लिए शल्य चिकित्सा हेतु अनुदान, राज्य परिवहन निगम की बसों में विकलांगजन को निःशुल्क यात्रा सुविधा, शासकीय सेवा में विकलांगजन को आरक्षण की व्यवस्था, विशिष्ट विकलांगों को राज्य स्तरीय पुरस्कार आदि पेंशन योजना लाभ दिए जाते हैं। समाज कल्याण विभाग द्वारा शहरी वृद्धावस्था और ग्रामीण किसान पेंशन योजना भी चलाई जा रही है, जिसमें 18 साल से 80 साल तक की महिला को 300 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है और 80 साल से ऊपर की महिला को 500 रुपये प्रतिमाह तक पेंशन दी जाती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में गरीब परिवारों को लाभ पहुंचाने के लिए समाजवादी पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना में लगभग 40 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना में 500 रुपये प्रतिमाह की मासिक पेंशन मिलेगी। पेंशन ई पेमेंट के माध्यम से सीधे खाते में अंतरित की जाएगी। परिवार में महिला मुखिया को लाभार्थी बनाया जाएगा। महिला मुखिया न होने पर परिवार के पुरुष मुखिया को लाभार्थी बनाया जाएगा। शिक्षा एवं स्वास्थ्य के उन्नयन से जुड़ी हुई देश की पहली पेंशन योजना है। शिक्षा साक्षरता एवं स्वास्थ्य से संबंधित मानकों की पूर्ति होने पर प्रत्येक वर्ष मासिक पेंशन की धनराशि में 50 रुपये की वार्षिक वृद्धि होगी। इस योजना में 6 साल तक के बच्चे को आंगनवाड़ी केंद्र की सुविधाएं, 6 साल से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चों को विद्यालय में नामांकन की सुविधा, 8 साल तक के बच्चों को नियमित टीकाकरण की सुविधा, 15 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक निरक्षर सदस्य को साक्षर करने की व्यवस्था, 6 से 14 साल के प्रत्येक बच्चे का वर्ष में कम एक बार स्कूल में स्वास्थ्य परीक्षण, गर्भवती महिला को संस्थागत प्रसव की सुविधा, 14 से 35 वर्ष की आयु के सदस्य के इच्छुक होने पर निःशुल्क कौशल संवर्धन प्रशिक्षण, स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत प्राथमिकता पर स्वास्थ्य बीमा कार्ड, सभी सुविधाओं को अपनाने पर मासिक पेंशन की धनराशि 50 रुपये प्रतिवर्ष बढ़ोतरी करते हुए पेंशन सीमा 750 रुपया प्रतिमाह तक हो सकेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से गरीबी रेखा से नीचे निराश्रित विधवाओं के भरण पोषण हेतु विधवा पेंशन योजना भी संचालित की जा रही है। इस पेंशन योजना में 18 से 60 साल तक की उम्र वाली महिलाएं ही हकदार हैं। इसके तहत 300 रुपये प्रतिमाह विधवा पेंशन दी जा रही है। प्रदेश सरकार अब श्रमिकों के लिए नई पेंशन योजना शुरू करने जा रही है। जिस श्रमिक ने लगातार 3 साल तक पंजीकरण कराया होगा उसे 60 साल बाद 1,000 रुपये पेंशन मिलेगी। यही नहीं, श्रमिकों की पुत्रियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता 40,000 रुपये से बढ़ाकर 51,000 रुपये कर दी गई है, जबकि मृतक की अंत्येष्टि के लिए 15 के बजाय 25,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकार की इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए श्रमिकों को अपने नजदीकी समाज कल्याण विभाग अथवा जिलाधिकारी कार्यालय से संपर्क करना चाहिए, जिससे कि उनका भविष्य सुरक्षित और सुखी बन सके।
1: श्रमिक दोस्तों, अभी हम सुन रहे थे मुकेश कुमार गुप्ता की वार्ता पेंशन योजनाओं का लाभ। उम्मीद है कि आप इन योजनाओं से जरूर जुड़ेंगे। और कार्यक्रम में अब बात करते हैं अच्छे स्वास्थ्य की।

0: सेहत टिप्स की। अच्छे स्वास्थ्य में दोस्तों, नींद ना आना और सिर दर्द होना भी बाधा बन जाता है। दिन भर की मेहनत के बाद जब शरीर थक जाए तो हम सोचते हैं कि अब बस चैन की नींद आ जाए, जिससे अगले दिन के लिए नई ऊर्जा मिल सके। मगर कई बार नींद आती ही नहीं। बिस्तर पर लेटने के बाद भी मन में तरह तरह के विचार चलते रहते हैं। कल के काम की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की पढ़ाई, खर्चों का हिसाब या आने वाले समय की फिक्र। जब नींद पूरी ना हो तो सुबह शरीर भारी भारी सा लगता है, अच्छा महसूस नहीं होता और हो सकता है कि सिर दर्द भी होने लगे। अच्छी नींद शरीर के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, तो कोशिश कीजिए कि रोज एक तय समय पर सोने और जागने की आदत बना ली जाए। सोने से पहले चाय ना पिए, मोबाइल फोन देर रात तक ना चलाएं और तेज आवाज वाले माहौल से दूर रहें। सोने से पहले हाथ मुंह धो लेना, हल्का गुनगुना दूध पीना या कुछ देर शांत मन से बैठना भी अच्छी नींद लाने में मदद करते हैं। और नींद आएगी तो सिर में दर्द भी नहीं होगा, लेकिन बहुत ज्यादा थकान से, बिना कुछ खाए पिए काम करने से या बहुत ज्यादा चिंता करने से भी सिर दर्द हो सकता है। यदि हल्का सिर दर्द है तो थोड़ी देर आराम करना, शांत जगह पर बैठना या खुद को खुशी देने वाला काम करना सिर दर्द दूर कर सकता है। पर यदि सिर दर्द बहुत तेज हो, लंबे समय तक बना रहे या बार बार हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलिए, हो सकता है कोई गंभीर बात हो। दोस्तों, दिन भर हम काम और जिम्मेदारियों में लगे रहते हैं, पर अपने शरीर की आवाज सुनना भी जरूरी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर और शांत मन ही मेहनत करने की असली ताकत देते हैं। रोज थोड़ी देर के लिए योग या ध्यान कर लेना तन और मन दोनों के लिए फायदेमंद है, इसीलिए थोड़ा सा समय इनके लिए भी निकालें। इसके अलावा साफ सफाई का, खाने पीने का भी ध्यान रखिए, तेज गर्मी से बचाव के उपाय कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। तन मन से स्वस्थ होंगे तो हर बात अच्छी लगेगी, कोई कुछ पूछेगा तो उसको जवाब भी सही तरह से दे पाएंगे। और अब हम भी कार्यक्रम में आपसे प्रश्न पूछने वाले हैं। आज की तारीख यानी 19 मई को एक महान नाटककार और सशक्त अभिनेता, पटकथा लेखक और निर्देशक का जन्मदिन है। इनके बारे में एक रोचक बात यह है कि इनकी मातृभाषा कोंकणी थी, अपनी पढ़ाई अंग्रेजी में की, अंग्रेजी के ही लेखक बनना चाहते थे, लेकिन जब नाटक और कहानियां लिखना शुरू किया तो कोंकणी या अंग्रेजी को नहीं बल्कि कन्नड़ को चुना। और कन्नड़ में भी उन्होंने ऐसी रचनाएं लिखी कि उन्हें भारत का सबसे बड़ा साहित्य सम्मान ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। फिल्मों में भी आपने इन्हें खूब देखा है, जैसे एक था टाइगर फिल्म में रॉ के चीफ शिनॉय। आपको बताना है कि कोंकणी मातृभाषा वाले अंग्रेजी में पढ़ाई करने वाले कन्नड़ के इस महान नाटककार और अभिनेता का नाम क्या है। जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए कार्यक्रम मजदूर मंडल। मिलते हैं इस अंतराल के बाद।
1: अरे राहुल, ये जूट का बैग और हाथ में मोबाइल, तुम्हारी पुरानी आदतें कहाँ गई?
2: अमित भाई, मैंने पर्यावरण को बचाने का रेलवे के साथ संकल्प लिया है, नो सिंगल यूज प्लास्टिक।
1: और ये टिकट का कागज कहाँ है?
2: कागज का जमाना गया, अब मैं अपनाता हूँ डिजिटल टिकटिंग। रेल वन ऐप से पेपरलेस यात्रा, समय की बचत और पेड़ों की सुरक्षा।
3: इस पर्यावरण दिवस उत्तर मध्य रेलवे का साथ दें, प्लास्टिक छोड़ें, जूट के बैग अपनाएं और डिजिटल टिकटिंग के लिए रेल वन ऐप का उपयोग करें। उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: श्रमिक दोस्तों, अंतराल के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। और कार्यक्रम में अब आज के प्रश्न का उत्तर। प्रश्न हमने पूछा था दोस्तों, उस नाटककार और अभिनेता का नाम जिनकी मातृभाषा कोंकणी थी, अंग्रेजी में शिक्षा प्राप्त की और कन्नड़ में नाटक लिखे। ये थे दोस्तों गिरीश कर्नाड। गिरीश कर्नाड का जन्म 19 मई 1938 को महाराष्ट्र में हुआ। उन्होंने स्कूल के दिनों में ही थिएटर से जुड़कर काम करना शुरू कर दिया था। उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए, फिर भारत लौटकर पढ़ाने लगे। इसके बाद शिकागो में प्रोफेसर के तौर पर भी नियुक्त रहे, पर फिर भारत आ गए और साहित्य और सिनेमा में अपना

कौशल दिखाया। पहले उनका विचार कविताएं लिखने का था, पर उनका रुझान नाटकों की तरफ हो गया। उन्होंने कई लोकप्रिय नाटक लिखे जो कन्नड़ भाषा में हैं। इन नाटकों में ययाति, तुगलक, है वदन, नागमंडल, अग्नि और बरखा बहुत प्रसिद्ध हैं। कर्नाड जी ने ऐतिहासिक तथा पौराणिक पात्रों से तत्कालीन व्यवस्था को दर्शाने का तरीका अपनाया। इनकी कई कृतियों में पुरातनता है तो आधुनिकता भी। गिरीश कर्नाड केवल नाटककार ही नहीं बल्कि अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और आधुनिक समस्याओं को उजागर करने वाले साहित्यकार हैं। उन्होंने साल 1970 में कन्नड़ फिल्म संस्कार से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जिसकी पटकथा उन्होंने खुद लिखी।

व्यवस्था को दर्शाने का तरीका अपनाया। इनकी कई कृतियों में पुरातनता है तो आधुनिकता भी। गिरीश कर्नाड केवल नाटककार ही नहीं बल्कि अभिनेता, फिल्म निर्माता, पटकथा लेखक और आधुनिक समस्याओं को उजागर करने वाले साहित्यकार हैं। उन्होंने साल 1970 में कन्नड़ फिल्म संस्कार से अपने फिल्मी कैरियर की शुरुआत की, जिसकी पटकथा उन्होंने खुद लिखी। इस पहली फिल्म को ही कई पुरस्कार मिले। इसके बाद कन्नड़ में कई फिल्में बनाई और उनमें अभिनय भी किया। उन्होंने अनेक हिंदी फिल्मों में भी काम किया। अपने गहरे और दमदार अभिनय से उन्होंने हिंदी दर्शकों के दिल में भी जगह बना ली। छोटे पर्दे पर भी कई कार्यक्रम पेश किए। उनकी मुख्य फिल्मों के नाम हैं निशांत, मंथन और पुकार। 1977 में आई हिंदी फिल्म स्वामी भी उनकी एक बहुचर्चित फिल्म है। इसमें उनके साथ शबाना आजमी हैं। शबाना जी के साथ ही उनकी निशांत फिल्म भी काफी चर्चा में रही। श्याम बेनेगल की फिल्म मंथन में उन्होंने मुख्य भूमिका निभाई। इस फिल्म को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसके अलावा उनकी और हिंदी फिल्में हैं आशा, उत्सव, पुकार, इकबाल, डोर, मेरी जंग, एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है। गिरीश जी को 4 फिल्मफेयर अवार्ड भी मिले हैं। उनकी आखिरी फिल्म कन्नड़ भाषा की अपना देश है। इस बेहतरीन अभिनेता और महान साहित्यकार का निधन 81 साल की उम्र में 10 जून 2019 को हुआ। दोस्तों, गिरीश जी की पहचान नाटककार, लेखक, अभिनेता और निर्देशक के रूप में तो है ही, साथ ही उन्हें उनकी बेबाकी के लिए भी जाना जाता है। वे अपने विचार व्यक्त करने में कभी नहीं हिचकिचाए, भले ही सरकार का विरोध करना पड़ा हो। आपातकाल का विरोध करते हुए उन्होंने भारतीय फिल्म टेलीविजन संस्थान के निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया था। गिरीश कर्नाड जी को उनकी प्रतिभा के लिए कई बड़े सम्मान मिले। संगीत नाटक अकादमी, साहित्य अकादमी, कालिदास सम्मान जैसे पुरस्कारों के साथ साथ उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। साथ ही भारत सरकार ने भी उन्हें पद्म भूषण और पद्म विभूषण से नवाजा। आइए दोस्तों, कार्यक्रम में सुनते हैं इन्हीं की फिल्म का ये गीत।

श्रमिक दोस्तों, अब बारी है कार्यक्रम में ज्ञान सागर की। आज ज्ञान सागर में बात करेंगे दोस्तों महान उद्योगपति जमशेद जी टाटा की, जिन्हें भारतीय उद्योग जगत का जनक कहा जाता है और जिन्होंने गुलामी के दौर में अंग्रेजों को चुनौती दी, देश का पहला स्वदेशी सूती कारखाना खोला, स्टील कंपनी बनाई, ताजमहल होटल बनाया। जमशेद जी टाटा भारत के विश्व प्रसिद्ध औद्योगिक घराने टाटा समूह के संस्थापक थे। भारतीय औद्योगिक क्षेत्र में इनका असाधारण और महत्वपूर्ण योगदान है। जमशेद जी ने भारतीय औद्योगिक विकास का रास्ता उस समय खोला था जब इसमें केवल यूरोपियन और अंग्रेज लोगों को ही कुशल समझा जाता था। अपनी पहली इंग्लैंड यात्रा से लौटकर उन्होंने एक तेल मिल को कताई बुनाई की मिल में बदलकर अपने औद्योगिक जीवन की शुरुआत की थी। उनके अनेक कार्य आज भी लोगों को प्रेरित करते हैं। भविष्य को भांपने की अपनी अद्भुत क्षमता के बल पर उन्होंने एक स्वनिर्भर भारत का सपना देखा था। देश में वैज्ञानिक एवं तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाई और देश को महाशक्ति बनने की राह पर आगे बढ़ाया। जमशेद जी का जन्म 3 मार्च 1839 में गुजरात के नवसेरी कस्बे में हुआ। मात्र 14 साल की उम्र में वे पिता के साथ मुंबई आकर उनके व्यवसाय में हाथ बटाने लगे। यहीं ग्रेजुएशन तक अपनी पढ़ाई भी पूरी की। वर्ष 1868 में 29 साल की उम्र में उन्होंने 21,000 रुपए की पूंजी के साथ अपनी पहली फर्म शुरू की। अपनी इस पहली कपड़ा मिल को उन्होंने अच्छे मुनाफे पर बेचा। इसके बाद उन्होंने नागपुर में कपड़ा मिल चलाई। 1874 में उन्होंने ऐसी ही एक और मिल शुरू की, बाद में इसी को इम्प्रेस मिल का नाम दिया। जमशेद जी के पास नई कल्पनाएं और विचार थे जिन्हें वे वास्तविकता में बदल सकते थे। अपने साथियों का पूरा सहयोग लेने का उनमें असाधारण गुण था। उनका बनाया गया होटल ताजमहल देश के साथ साथ विदेशों में भी मशहूर है। इस होटल के बनने के पीछे बड़ी रोचक कहानी है। सिनेमा के जनक कहे जाने वाले लुमायर भाइयों ने साल 1896 में मुंबई के आलीशान होटल वाटसन में अपनी 6 अलग अलग फिल्मों के शो आयोजित किए। जमशेद जी ये फिल्में देखना चाहते थे लेकिन उन्हें अंदर नहीं जाने दिया गया। उस समय ज्यादातर बड़े होटलों की तरह वाटसन होटल के बाहर भी तख्ती लगी थी, भारतीय और कुत्ते होटल में नहीं आ सकते। जमशेद जी ने रंग भेद की इस घृणित नीति के खिलाफ आवाज उठाई और कुछ समय बाद ही ऐसे भव्य होटल का निर्माण शुरू कर दिया जिसके आगे वाटसन जैसे होटलों की चमक फीकी पड़ गई। 1903 में ये आलीशान शानदार ताजमहल होटल बनकर तैयार हो गया। कुछ समय तक इसके बाहर एक तख्ती भी लगाई गई जिस पर लिखा था, ब्रिटिश और बिल्लियां अंदर नहीं आ सकते। इस होटल की चकाचौंध हर किसी को आकर्षित करती थी। जमशेद जी का यह उद्यम उनके दूसरे उद्यमों से बिल्कुल अलग था। इसे वे उद्योग की तरह चलाना भी नहीं चाहते थे। उनके व्यक्तित्व का एक और बड़ा गुण था परोपकार की भावना। जिन दिनों मुंबई में प्लेग महामारी फैली, उन्होंने अपने सारे काम एक ओर रख दिए और प्लेग के इलाज की दिशा में काम करने लगे। मानवीय प्रयत्नों के हर क्षेत्र पर उन्होंने सोचा और काम किया। वर्ष 1886 में जमशेद जी ने पेंशन फंड शुरू कर दिया और दुर्घटनाग्रस्त कामगारों को मुआवजा देने लगे। इसी साल उन्होंने एक बेकार मिल को चलाने की चुनौती भी उठाई जिसका नाम रखा स्वदेशी मिल्स।

उद्योगपति के रूप में उनका कद जितना बड़ा होता जा रहा था, लोगों के प्रति, अपने श्रमिकों के प्रति उनका लगाव भी बहुत था। उन्होंने मिलों में और बस्तियों में वाटर प्लांट लगवाए, अनाज की दुकानें खुलवाईं, अस्पताल भी बनवाए। वस्त्र उद्योग में वो कामयाब हो रहे थे, लेकिन मुनाफे के लिए और ज्यादा कपड़ा मिलें खोलने के बजाय उन्होंने एक अलग रास्ता चुना। वे देश को बड़े पैमाने पर इस्पात और जल विद्युत देना चाहते थे, जबकि इन उद्योगों में अच्छा खासा जोखिम था, ऊंचे दर्जे की प्रबंधन कुशलताओं की जरूरत थी और मुनाफे की गति भी बहुत कम थी। लेकिन उनका सपना था कि भारत का अपना स्टील प्लांट हो, अपनी बिजली कंपनी हो और भारतीयों के लिए विश्वस्तरीय विद्यालय हो। उनके जीते जी ये सपने पूरे नहीं हो पाए, पर उन्होंने जो नींव रखी उसी पर आगे चलकर टाटा स्टील और टाटा पावर जैसी विशाल कंपनियां खड़ी हुईं और आज जो टाटा ग्रुप देश के सबसे बड़े औद्योगिक समूहों में से एक है। तो दोस्तों, ये थी बात जमशेद जी टाटा के बारे में आज उनकी पुण्यतिथि पर। और अब आज का कार्यक्रम मजदूर मंडल यहीं संपन्न करते हैं। मैं संतोष वर्मा फिर मिलूंगा आपसे अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

0: अभी श्रमिक श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। संध्या के 7 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत नॉर्डिक साझेदारी का मजबूत स्तंभ है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन के बाद नॉर्डिक प्रधानमंत्रियों के साथ संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में श्री मोदी ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में भारत नॉर्डिक संबंधों में मजबूती आई है।
2: पिछले एक दशक में नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद से कोई समझौता नहीं होगा।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इससे पहले श्री मोदी भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ शामिल हुए। सम्मेलन का उद्देश्य भारत और नॉर्डिक देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना था। सम्मेलन में ऊर्जा, समुद्री अर्थव्यवस्था, प्रौद्योगिकी और नवाचार, स्थिरता, नवीकरणीय ऊर्जा और डिजिटलीकरण पर चर्चा हुई। सम्मेलन से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आइसलैंड की प्रधानमंत्री सुश्री क्रिस्तरून फ्रॉस्टोदॉटर, फिनलैंड के प्रधानमंत्री श्री पेतरी ऑर्पो और डेनमार्क की प्रधानमंत्री सुश्री मेता फ्रेडरिक्सन के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण में आज इटली के रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीक नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और रणनीतिक भागीदारी को और सुदृढ़ करना है। इस यात्रा से द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने तथा परस्पर हित के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने का अवसर मिलेगा। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष

0: 2031 तक बस्तर के लोगों की औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें आगामी नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों का जायजा लिया गया। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए और उन्हें खत्म किया जाए। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने कहा है कि वो पश्चिम बंगाल में आरजी कर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर इस क्रूर घटना में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एक दिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एक दिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। अंक तालिका में 5वें स्थान पर मौजूद राजस्थान रॉयल्स ये मैच जीतकर प्लेऑफ की अपनी दावेदारी मजबूत करना चाहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। Prime Minister Narendra Modi said India and Nordic countries have decided to give their relations the form of Green Technology and Innovation Strategic Partnership. Mr. Modi made the remarks while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark also took part in the media briefing. Prime Minister Modi said, with this green technology partnership, they will connect Iceland's expertise in geothermal and fisheries, Norway's expertise in blue economy and Arctic, and all Nordic countries' expertise in maritime and sustainability to India's skills to ensure a better future for the entire world.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Modi said to provide energy and speed to India's relations with Nordic countries, they formed this format 8 years ago.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: From Oslo, Prime Minister Modi will travel to Italy today on the fifth and final leg of his five-nation tour. More from our correspondent covering the Prime Minister's visit.
3: Prime Minister Narendra Modi is all set to arrive today in Italy for the final stop of his five-nation tour, and the visit is expected to give a fresh push to India-Italy strategic ties across several important sectors. Collaborations related to trade, investment and industrial partnerships are likely to be announced as both countries are looking to strengthen their economic engagement and exploring new areas of cooperation. Trade ties that are already on strong footing are expected to grow even further after the high-level talks during the visit.
4: Suparna Bhatia for Akashvani from Rome.
1: Union Home and Cooperation Minister Amit Shah today said Bastar Division of Chhattisgarh

0: will emerge as the country's most developed tribal region within the next 5 years. Addressing the media in Jagdalpur, Mr. Shah said that after making Bastar free from Naxalism, the centre and the Chhattisgarh government have jointly prepared a scientific roadmap for the region's development. In West Bengal, Trinamool Congress candidate Jahangir Khan today announced the withdrawal of his nomination for the by-election to the Falta Assembly constituency to be held on Thursday. Mr. Khan, in a statement, said his decision was aimed at ensuring peace and development in the region and welcomed the special package announced for Falta by the new BJP-led government. In a statement, the Trinamool Congress said Jahangir Khan's withdrawal was his personal decision and not that of the party. With Khan out of the fray, the contest will now be among BJP candidate Devangshu Panda, Congress nominee Abdul Razak Moilla, and CPIM candidate Shambhunath Kurmi. In cricket, the Indian squads for the Test and ODI series against Afghanistan were announced today with several notable changes across both formats. Wicketkeeper batter Rishabh Pant has been removed as vice-captain of the Test side and also dropped from the ODI squad. Wicketkeeper batter KL Rahul has been named the new vice-captain of the Test team to be led by Shubman Gill. In IPL cricket, Rajasthan Royals won the toss and opted to bowl against Lucknow Super Giants in Jaipur. The match will begin at 7:30 p.m. The Kremlin today confirmed that Russian President Vladimir Putin will attend the BRICS summit, scheduled to be held in September this year in New Delhi under India's chairmanship. And that is the end of this news bulletin.
1: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संध्या के 7:10 हुए हैं। विविधा कार्यक्रम में आइए सुनते हैं दीपांशु शर्मा की वार्ता, ज्ञान संवेदना और संस्कृति के पुरोधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी।
2: आज हम ऐसे महान साहित्यकार, चिंतक और संस्कृति पुरुष के बारे में विचार करने के लिए एकत्रित हुए हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य जगत को केवल शब्दों का संसार ही नहीं अपितु जीवन दर्शन का आयाम दिया। वे आधुनिक हिंदी साहित्य के ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र हैं जिन्हें सही अर्थों में ज्ञान संवेदना और संस्कृति का पुरोधा कहा जा सकता है। वे केवल एक साहित्यकार ही नहीं बल्कि एक युग प्रवर्तक, निबंधकार, आलोचक, उपन्यासकार और प्रखर सांस्कृतिक चिंतक थे, जिन्होंने भारतीय परंपरा को आधुनिक दृष्टिकोण से परखकर एक नवीन दिशा प्रदान की। ऐसे हिंदी साहित्य क्षितिज के नक्षत्र थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। वे एक साधारण परिवार में जन्मे, लेकिन अपनी असाधारण प्रतिभा, गहन अध्ययन और व्यापक दृष्टि के कारण वे हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष बन गए। उन्होंने संस्कृत, हिंदी, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, भारतीय संस्कृति और आधुनिक भारतीय भाषाओं का गहन अध्ययन किया और इन सबके प्रकांड ज्ञान के बल पर अतीत की रूढ़ियों को तोड़कर प्रासंगिक परंपराओं को आधुनिक संदर्भ में स्थापित किया। इस प्रकार आचार्य द्विवेदी जी अतीत और वर्तमान के सेतु के रूप में हिंदू साहित्य की सेवा करते रहे, जिसका प्रभाव उनकी रचनाओं में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। आचार्य द्विवेदी को ज्ञान संवेदना और संस्कृति का परोधा कहना निःसंदेह उचित है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी सांस्कृतिक समन्वय के पैरोकार थे। आपका हिंदी साहित्य सांस्कृतिक विराटता, सहिष्णुता और समन्वयवादी दृष्टि का अद्भुत मिश्रण है। आपने भारतीय संस्कृति को आंतरिक विकास और आनंद, जो सभ्यता के बाह्य आवरण से अलग आत्मा को परिष्कृत करती है। आपका ज्ञान केवल पुस्तकीय नहीं था बल्कि जीवन के विविध आयामों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने भारतीय परंपरा, इतिहास, दर्शन और साहित्य को गहराई से समझा और उसे सरल भाषा में प्रस्तुत किया। आपके निबंध जैसे अशोक के फूल, कुटुज, नाखून क्यों बढ़ते हैं, केवल ललित निबंध ही नहीं बल्कि उनमें गहरी दार्शनिक और सांस्कृतिक संवेदना है जो पाठक को सोचने पर मजबूर करती है। आपकी

प्रसिद्ध कृतियां वाणभट्ट की आत्मकथा, अशोक के फूल और कबीर ज्ञान और विवेक का अद्भुत संगम है। विशेष रूप से कबीर में उन्होंने संत कबीर के जीवन और विचारों का गहन विश्लेषण किया, जो आज भी प्रासंगिक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को हिंदी साहित्य के मंच पर पुनर्स्थापित किया और हिंदी साहित्य के इतिहास को अविच्छिन्न परंपरा के रूप में देखा। वाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा जैसे उपन्यासों के माध्यम से आचार्य द्विवेदी जी ने सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक चेतना को कथा साहित्य में पिरोया है। आचार्य द्विवेदी केवल विद्वान ही नहीं बल्कि अत्यंत संवेदनशील हृदय के व्यक्ति थे। आप मानवतावादी दृष्टिकोण से आपूरित थे। आपकी दृष्टि में संस्कृति और साहित्य का केंद्र मनुष्य है। आपने बार बार यह रेखांकित किया कि संस्कृति का उद्देश्य मानव मात्र का कल्याण अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिना है। आपकी रचनाओं में मानवीय भावनाओं की गहरी समझ दिखाई देती है। आप मनुष्य की पीड़ा, प्रेम, संघर्ष और आशाओं को बहुत ही सरल और मार्मिक ढंग से प्रस्तुत करते हैं। आपका लेखन हमें यह सिखाता है कि ज्ञान के साथ संवेदना का होना कितना आवश्यक है। बिना संवेदना के ज्ञान अधूरा है। उनकी भाषा में एक सहजता और आत्मीयता है जो पाठक के हृदय को छू जाती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भारतीय संस्कृति के प्रति दृष्टिकोण अत्यंत व्यापक और उदार था। आपने परंपरा को अंधविश्वास के रूप में नहीं बल्कि एक जीवंत धरोहर के रूप में देखा। आपकी मान्यता थी कि संस्कृति का अर्थ केवल अतीत में जाना नहीं बल्कि वर्तमान को समृद्ध करना है। आपने भारतीय संस्कृति को जड़ों को समझते हुए उसे आधुनिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया। विश्व भारती विश्वविद्यालय में अपने कार्यकाल के दौरान आपने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के विचारों से भी वे गहराई से प्रभावित थे। आचार्य द्विवेदी की लेखनी शैली अत्यंत विशिष्ट थी, सहज, सरल और प्रभावशाली। वे जटिल विषयों को भी इतनी सरलता से प्रस्तुत करते थे कि सामान्य पाठक भी उसे आसानी से समझ सके। उनके उपन्यास वाणभट्ट की आत्मकथा में इतिहास और कल्पना का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। वहीं उनके निबंधों में चिंतन, तर्क और संवेदना का अद्भुत संतुलन है। आपको 1957 में पद्म विभूषण एवं 1973 में आलोक पर्व के लिए साहित्य अकादमी द्वारा सम्मानित किया गया है। आपने मानवता, उदारता और ज्ञान के जिस समन्वय को अपने साहित्य में उकेरा है, वह आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस प्रकार आज के संदर्भ में आचार्य द्विवेदी की प्रासंगिकता शाश्वत है। आज के समय में जब समाज तेजी से बदल रहा है, आचार्य द्विवेदी के विचार और भी अधिक प्रासंगिक हो जाते हैं। आप हमें सिखाते हैं कि हमें अपने ज्ञान को संवेदना और संस्कृति से जोड़कर देखना चाहिए। आपका जीवन हमें यह प्रेरणा देता है कि हम केवल जानकारी के पीछे न भागें बल्कि उसे समझें, महसूस करें और समाज के कल्याण में उपयोग करें। निष्कर्ष रूप में यही कहा जा सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी केवल एक साहित्यकार नहीं थे बल्कि एक युग निर्माता थे। आपने ज्ञान, संवेदना और संस्कृति तीनों को एक सूत्र में प्रयोग कर हमें एक नवीन जीवन दृष्टि दी। आपका जीवन और कृतित्व हमें यह सिखाता है कि सच्चा ज्ञान वही है जो मनुष्य को बेहतर बनाए, समाज को समृद्ध करे और संस्कृति को जीवंत रखे। हिंदी साहित्य के प्रचार और प्रसार में आपने जो योगदान किया है, आपके उस योगदान के प्रति आज का हिंदी साहित्य ऋण नहीं हो सकता। आपके योगदान से हिंदी समाज सदा उपकृत रहेगा। आपके योगदान

0: संदिग्ध रूप से प्रशंसनीय है।
1: ज्ञान संवेदना और संस्कृति के पुरोधा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये वार्ता अभी आपने सुनी दीपांशु शर्मा से। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 7:18 हुए हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: स्वामी विवेकानंद के अनुसार संसार एक बड़ी व्यायामशाला है जहां हम स्वयं को मजबूत बनाकर निखारते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। प्लेटो का कथन है, बुद्धिमान लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ होता है और मूर्ख व्यक्ति इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन्हें कुछ भी बोलना होता है।
1: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन, सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के अधिकांश जिले भीषण गर्मी और लू की चपेट में हैं। बीते 24 घंटों में 47.6 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ बांदा देश भर में सबसे गर्म जनपद के रूप में दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने 21 मई तक प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इस दौरान कई जिलों में पारा 47 डिग्री के पार जाने का अनुमान है। मौसम के प्रकोप को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जिला मजिस्ट्रेटों, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया है। एक रिपोर्ट।
2: आज भी राज्य भर में भीषण गर्मी और लू की स्थिति बनी हुई है। बुंदेलखंड और अन्य इलाके तेज धूप और झुलसा देने वाली हवाओं की चपेट में हैं। धीमी हवा के कारण उमस और बढ़ गई है, जिससे राज्य के कई हिस्सों में सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित है। बांदा में लगातार दूसरे दिन कल भी तापमान देश में सबसे ज्यादा 47.6 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं राज्य के कई जिलों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास या उससे भी ऊपर बना हुआ है। सड़कों पर लोगों की आवाजाही कम हो गई है और हीट स्ट्रोक की घटनाएं बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने 33 जिलों के लिए लू की चेतावनी जारी की है और लोगों को विशेष रूप से दोपहर के समय सतर्क रहने की सलाह दी है। राज्य के दक्षिणी और मध्य भागों में अगले सप्ताह तक लू के हालात बने रहेंगे, जबकि पूरे राज्य में अगले दो दिनों तक रात का तापमान भी सामान्य से ज्यादा रहेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पेट्रोल और डीजल के कीमतों में आज लगभग 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। प्रदेश के विभिन्न शहरों में पेट्रोल की कीमत 98.40 रुपये प्रति लीटर से लेकर 98.91 रुपये प्रति लीटर हो गई है। वहीं डीजल 91.73 रुपये से लेकर 92.21 रुपये प्रति लीटर की दर से बिक रहा है। ये बढ़ोतरी ईरान संघर्ष और होर्मुज जल डमरू मध्य में रुकावटों के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में आई भारी तेजी के बाद हुई है। इस बीच प्रदेश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है। तेल विपणन कंपनियों ने स्पष्ट किया है कि राज्य में ईंधन की उपलब्धता पर्याप्त है और किसी प्रकार के घबराहट

0: घबराहट या अतिरिक्त खरीदारी की जरूरत नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जन सुरक्षा को देखते हुए रेबीज से संक्रमित, लाइलाज बीमारी से ग्रस्त या अत्यधिक खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिए जाने की अनुमति दी है। एक रिपोर्ट।
1: न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने कहा कि उन क्षेत्रों में कुत्तों को मौत का इंजेक्शन दिया जा सकता है जहां कुत्तों की आबादी खतरनाक स्तर तक पहुंच गई है और जहां कुत्तों के लगातार काटने और आक्रामक हमलों की घटनाओं से जन सुरक्षा खतरे में पड़ रही हो। न्यायालय द्वारा ये आदेश लावारिस कुत्तों के काटने और रेबीज के मामले से जुड़ी मीडिया की खबरों के बाद पिछले वर्ष 28 जुलाई को स्वतः संज्ञान के मामले में जारी किया गया है। इस बीच शीर्ष न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थल भेजने और नसबंदी करने के अपने पहले के आदेश को वापस लेने की मांग से जुड़ी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा।
0: नई दिल्ली में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ने आज सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के अल्पसंख्यक आयोगों के कामकाज का आकलन करने के लिए एक दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सम्मेलन में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं, विकास पहलों और अन्य कार्यक्रमों की समीक्षा की गई।
2: राज्यों के जो अल्पसंख्यक आयोग होते हैं उनका कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। इसमें मुख्य रूप से हर एक स्टेट और यूनियन टेरिटरीज में स्टेट माइनॉरिटी कमीशन का फंक्शनिंग को लेकर के और जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज का वेलफेयर स्कीम्स डेवलपमेंट और बाकी जो कार्यक्रम है उसका आकलन करने के लिए बुलाया गया है और मैं खुश हूँ कि इतने अच्छे से लोगों ने पार्टिसिपेट किए हैं।
0: प्रदेश सरकार ने कहा है कि किसानों के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। वर्तमान में प्रदेश में 13.28 लाख मीट्रिक टन यूरिया, 5.23 लाख मीट्रिक टन डीएपी समेत कुल 27.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक की उपलब्धता है। पेश एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश में उर्वरक की उपलब्धता पिछले वर्ष की तुलना में 3.13 लाख मीट्रिक टन अधिक है। कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के किसानों के लिए अनुदान पर सभी प्रकार के उर्वरकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। अनुदानित उर्वरक का दुरुपयोग रोकने के लिए शासन ने किसान पहचान पत्र उपलब्ध कराने वाले किसानों को उनके अभिलेखों के आधार पर ही उर्वरक देने के निर्देश दिए हैं। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि उर्वरकों की अत्यधिक खरीद और अनावश्यक प्रयोग से बचें। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे YouTube चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ समेत आसपास के विभिन्न जनपदों में हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। मंदिरों में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ का आयोजन किया जा रहा है। लखनऊ में भंडारों के साथ ही भक्तों की ओर से पूरे शहर में भंडारों का आयोजन किया जा रहा है। पेश एक रिपोर्ट।
4: ज्येष्ठ मास के तीसरे बड़े मंगल पर राजधानी लखनऊ पूरी तरह हनुमान भक्ति में रंगी नजर आ रही है। सुबह होते ही शहर के प्रमुख हनुमान मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। अलीगंज स्थित नए और पुराने हनुमान मंदिरों में तड़के 4 बजे ही मंदिर के कपाट खोल दिए गए, जिसके बाद दर्शन पूजन का सिलसिला देर रात तक जारी रहेगा। हनुमान सेतु मंदिर, हनुमत धाम, मौनी बाबा मंदिर, त्रिमूर्ति हनुमान मंदिर, बालाजी मंदिर समेत शहर के सभी प्रमुख मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। प्रचंड गर्मी के बावजूद लोगों की आस्था पर कोई असर नहीं पड़ रहा है। शहर की प्रमुख सड़कों, चौराहों और मंदिरों के आसपास श्रद्धालुओं ने शरबत, पानी, पूरी, सब्जी, हलवा और प्रसाद वितरण के भंडारे लगाए। मुमताज अली, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
0: उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि गांवों के विकास से ही प्रदेश और राष्ट्र का विकास होगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 ग्रामीण भारत के समग्र उत्थान और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। श्री मौर्य ने कहा कि ये अधिनियम केवल एक कानून नहीं बल्कि गांवों के कायाकल्प का महासंकल्प है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करना, रोजगार के नए अवसर सृजित करना तथा हर ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। उन्होंने प्रदेशवासियों से आह्वान किया कि वे विकास की इस मुख्य धारा से जुड़कर गांवों को समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में सहभागी बने। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने आज लखनऊ में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों को सही समय पर और उचित मात्रा में बीज उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने निर्देशित किया कि हर हाल में 31 मई तक सभी विक्रय केंद्रों तक बीज पहुंच जाने चाहिए। सभी प्रमाणित बीज किसानों को 50% अनुदान पर उपलब्ध कराए जाएंगे। कृषि मंत्री ने किसानों से अपील की है कि वे अनुदान पर बीज प्राप्त करने के लिए कृषि

0: विभाग के पोर्टल पर आवेदन करें, जिससे बुवाई का कार्य सुगमता और समयबद्धता के साथ संपन्न हो सके। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज 2 दिवसीय दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं। उन्होंने बछरावा में सांसद निधि से बने बारात घर का उद्घाटन किया। 2 दिवसीय दौरे में राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और महिलाओं के साथ संवाद किया। इसके बाद रायबरेली में पीएसी 25वीं बटालियन के सामने 66 फीट रोड का उद्घाटन किया। कांग्रेस सांसद कल भी अपने संसदीय क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। लखनऊ में विधि के छात्र छात्राओं के लिए 10 दिवसीय ग्रीष्मकालीन इंटर्नशिप प्रोग्राम और 11 दिवसीय प्रोजेक्ट वर्क का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ ने इच्छुक विधि छात्र छात्राओं को सूचित किया है कि वे निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले सकते हैं। आवेदन पत्र लखनऊ के पुराने उच्च न्यायालय परिसर स्थित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी जनपद न्यायालय लखनऊ की आधिकारिक वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन पत्र 29 मई 2026 तक कार्यालय में जमा किया जा सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में भीषण गर्मी से जनजीवन प्रभावित, 21 मई तक पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों में लू का रेड अलर्ट। पेट्रोल डीजल फिर हुआ महंगा, कीमतों में 90 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी। खतरनाक और लाइलाज बीमारी वाले कुत्तों को लगेगा मौत का इंजेक्शन। सर्वोच्च न्यायालय ने लावारिस कुत्तों को आश्रय स्थलों में रखने के आदेश को वापस लेने से किया इनकार। और ज्येष्ठ माह के तीसरे बड़े मंगल पर प्रदेश भर के हनुमान मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु। हनुमान चालीसा और सुंदरकांड के पाठ के साथ हो रहा है भंडारों का आयोजन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: पंडित जवाहरलाल नेहरू का कथन है, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं इससे ज्यादा ये महत्वपूर्ण है कि हम क्या हैं। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते। APJ अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। संध्या के 7:31 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। कार्यक्रम के साथ मैं हूं आपकी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा। स्वीकार कीजिए प्यार भरा नमस्कार। कहिए श्रोताओं, कैसे हैं आप भाई? इस समय गर्मी बहुत तेजी से पड़ रही है, लू का प्रकोप है, हर जगह त्राही त्राही है गर्मी की वजह से। तो ऐसे में सबसे पहले हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि जब तक बहुत जरूरी ना हो अपने घर से बाहर मत निकलिए। बहुत जरूरी काम होने पर जब आप घर से जा रहे हैं तो अपना सर बांध कर निकलिए सूती कपड़े से, चाहे वो गमछा हो या फिर कोई कॉटन का दुपट्टा आप ले सकते हैं, उससे सर को बांध लीजिए। हेलमेट लगाइए अगर 2-व्हीलर पे हैं तो, और जो भी आपका जरूरी काम है उसको करके सीधे आप घर आइए। इस समय गर्मी बहुत तेजी पर है, प्रचंड गर्मी पड़ रही है, हीट स्ट्रोक्स की अलर्ट्स हम सभी को मिल रहे हैं। ऐसे में जहां इंसान के लिए गर्मी पड़ रही है, वहीं जो हमारी मिट्टी है वो भी बहुत गर्म है। खैर, जो भी है सबको सहन भी करना पड़ेगा और उसके लिए कदम भी उठाने होंगे। लेकिन हमारे सामने बात देश की करोड़ों जनता की है जो अपनी इस मिट्टी से जुड़ी हुई है। विकसित भारत का नया अभियान, ये एक अभियान है जो कोई साधारण अभियान नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का

शरबत है। दोस्तों, हमने बात की मिट्टी की कि मिट्टी समय गर्मी से बहुत गर्म है, तो मिट्टी क्या है? क्या ये केवल वो वैज्ञानिक संरचना है? नहीं, मिट्टी वो आदि तत्व है जिसने मनुष्य को आकार दिया है। कहते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच तत्व से बना शरीरा, और यही तत्व मिट्टी है। ये वो उर्वरा है जिसने सभ्यताओं के आदि और अंत को अपने भीतर समेटा है। सिंधु घाटी से लेकर गंगा के मैदानों तक हमारी पहचान इसी मिट्टी के रंग से रंगी है। लेकिन मिट्टी की ये आन अधूरी है यदि उसके शीश पर हिमालय का मुकुट न हो। वृक्ष, पौधे और वनस्पतियां इस मिट्टी की अभिव्यक्ति हैं। आज जब भी हम अब भारत अपनी स्वाधीनता के शताब्दी वर्ष की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो हमें ये समझना होगा कि एक विकसित राष्ट्र केवल लोहे और कंक्रीट से नहीं बनता है, बल्कि वो बनता है अपनी मिट्टी की उर्वरता और अपने वनों की सघनता से।

जी हाँ दोस्तों, ऐसी है हमारे देश की धरती जो सोना और हीरे सब कुछ उगलती है। और मिट्टी की आन का अर्थ हमारे लिए आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों है। हमारी संस्कृति में मिट्टी शब्द स्वाभिमान का पर्याय है। हम कहते हैं मिट्टी में मिल जाना या फिर मिट्टी का मोल समझना। ये मिट्टी हमारे पूर्वजों का तप है और हमारे शहीदों का तर्पण है। जब मेरी माटी मेरा देश अभियान के अंतर्गत देश के लाखों गांवों से कलशों से मिट्टी एकत्रित की गई थी, तब ये केवल धूल का संग्रह नहीं था, ये भारत की सामूहिक आत्मा का एकीकरण था। वो इस बात का भी प्रतीक था कि कश्मीर की बर्फीली मिट्टी और कन्याकुमारी की तटीय रेत दोनों का गौरव एक समान है। परंतु आज इस आन पर संकट के बादल हैं। रासायनिक खादों के अनियंत्रित उपयोग ने धरती माता की कोख को बीमार कर दिया है। मिट्टी का कार्बन स्तर गिर रहा है, सूक्ष्म जीव नष्ट हो रहे हैं और मरुस्थलीकरण का खतरा बढ़ रहा है। यदि मिट्टी अपनी आन खोदेगी तो हम अपनी खाद्य सुरक्षा और अपनी सेहत दोनों कैसे बचा पाएंगे? विकसित भारत का पहला चरण है स्वस्थ मृदा। मृदा यानी मिट्टी। हमें प्राकृतिक खेती की ओर लौटना होगा, मिट्टी को फिर से जैविक तत्वों से समृद्ध करना होगा ताकि वो आने वाली पीढ़ियों के लिए विष मुक्त अन्न उपजा सके। याद रखिए दोस्तों, मिट्टी सुरक्षित रहेगी तभी हमारा इतिहास और हमारा भविष्य दोनों सुरक्षित।

0: जरा।
1: कार्यक्रम हेलो मेरी पसंद अब आकाशवाणी आगरा से भी शुरू हो चुका है। हेलो मेरी पसंद कार्यक्रम में अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए रिकॉर्डिंग प्रत्येक शुक्रवार को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक दोपहर में की जाती है। आप भी अपने पसंद के गीतों को सुनने के लिए हमारे कार्यक्रम में फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0562-350-1852 और दूसरा नंबर है 0562-297-0337 और कार्यक्रम को सुन सकते हैं प्रत्येक सोमवार रात 10 बजे। श्रोताओं, आपको बता दूं कि इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण अगले दिन यानी मंगलवार को दोपहर 3 बजे से किया जाता है। श्रोताओं, हमारी आवाज आप तक पहुंचती है मीडियम वेव के 1530 किलोहर्ट्ज़ और 196.1 मीटर पर। आप हमारे कार्यक्रम मोबाइल के माध्यम से भी न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर सुन सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम अब सिर्फ रेडियो सेट पर ही नहीं आपके मोबाइल पर भी उपलब्ध है।
2: आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। दोस्तों, एक बीज का अंकुरित होना प्रकृति का सबसे बड़ा चमत्कार है। पौधे इस तरह के फेफड़े हैं जो हमारे द्वारा त्यागी गई विषैली हवा को अमृत रूपी ऑक्सीजन में बदलते हैं। भारत की शान हमेशा से उसके वनों में रही है। हमारे ऋषि मुनियों के आश्रम इन्हीं उपवनों में थे, जहां वे प्रकृति के साथ एकात्म होकर ज्ञान की खोज किया करते थे। हमारे यहाँ वृक्षायुर्वेद जैसा शास्त्र लिखा गया जो पौधों के रोगों और उनके उपचार की बात बताता है। आज हमें वैश्विक स्तर पर पौधों की रक्षा करना केवल पर्यावरण प्रेम नहीं बल्कि मानव जाति की आत्मरक्षा तंत्र है, ये बात समझनी होगी। पौधों की शान तब बढ़ती है जब हम जैव विविधता का सम्मान करते हैं। केवल सजावटी पौधे लगाना पर्याप्त नहीं है दोस्तों, हमें अपने स्थानीय वृक्षों को हर जगह सहेजना होगा। स्थानीय वृक्ष जैसे बरगद, पीपल, नीम और महुआ, ये वृक्ष मिट्टी को जकड़ कर रखते हैं, भूजल स्तर को बढ़ाकर रखते हैं और स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र को आश्रय देते हैं। आज जलवायु परिवर्तन के इस दौर में पौधे ही हमारे सबसे बड़े योद्धा हैं। यदि हम पौधों की शान बढ़ाएंगे तो मॉनसून समय पर आएगा, सूखा और बाढ़ जैसी आपदाएं कम होंगी और हमारा देश प्राकृतिक रूप से आत्मनिर्भर बनेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने जब विकसित भारत 2047 का आह्वान किया तो उन्होंने इसे एक जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। इस अभियान का मूल मंत्र ही यही था कि विरासत का सम्मान और विकास का संकल्प। और हमारी सबसे बड़ी विरासत हमारी ये माटी और वनस्पति ही है। नया अभियान हमें सिखाता है कि आर्थिक प्रगति का अर्थ पर्यावरण का विनाश नहीं होना चाहिए। हम सौर ऊर्जा में विश्व गुरु बन रहे हैं, हम इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन इन सब के बावजूद केंद्र में ग्रीन ग्रोथ होनी चाहिए। मेरी माटी मेरा देश के तहत निर्मित अमृत वाटिका हमें याद दिलाती है कि जब हम मिलकर एक पौधा लगाते हैं तो हम भारत की एकता को सींचते हैं। विकसित भारत का अर्थ है एक ऐसा राष्ट्र जहां हर नागरिक को शुद्ध हवा, स्वच्छ जल और पौष्टिक भोजन मिल सके, और ये तभी संभव है जब हर शहर और हर गांव अपनी ग्रीन बेल्ट विकसित करे। हमारे युवाओं को जो तकनीक के उस्ताद हैं, उन्हें एग्रीटेक और बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके पौधों की नई प्रजातियों और मिट्टी के संरक्षण के तरीकों पर काम करना चाहिए।

ये अभियान केवल सरकारी फाइलों का हिस्सा नहीं है दोस्तों, ये हमारी और आपकी जीवन शैली का हिस्सा बनना चाहिए। हालांकि चुनौतियां कठिन हैं, बढ़ता तापमान, कीटों के नए प्रकार के हमले और घटती कृषि भूमि हमारे लिए किसी खतरे की घंटी से कम नहीं है। पादप स्वास्थ्य पर पड़ने वाला बुरा असर सीधे तौर पर हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है। यदि फसलें बीमार होंगी तो किसान कर्ज के बोझ तले दबेगा और राष्ट्र का विकास थमेगा। लेकिन समाधान हमारी इच्छा शक्ति में है। हमें एकीकृत कीट प्रबंधन को अपनाना होगा। हमें मिट्टी के परीक्षण को एक आदत बनानी होगी। इसके अलावा सामाजिक स्तर पर हमें वृक्षारोपण को वृक्ष पालन में बदलना होगा। केवल फोटो खिंचवाने के लिए पौधा लगाना काफी नहीं है। उस पौधे के वट वृक्ष बनने तक की यात्रा में हमें सहभागी बनना होगा। जल संचयन और मिट्टी की नमी को बचाए रखने के लिए पर ड्रॉप मोर क्रॉप जैसे सिद्धांतों को जीवन में उतारना होगा।

और इसके साथ ही कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश संपन्न करने की अपनी रेडियो सखी पुष्पा शर्मा को अनुमति दीजिए। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब प्रस्तुत है देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती।

फना फिल्म का गीत आपने सुना महालक्ष्मी अय्यर के स्वर में ही। प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को संगीत दिया था जतिन ललित ने। 23 मार्च 1931 शहीद। आइए सुनते हैं इस फिल्म का गीत। देव कोहली के गीत को संगीत दिया है आनंद राज आनंद ने। आवाजें हैं उदित नारायण, अलका याग्निक, हंस राज हंस और भूपेंद्र की।

आकाशवाणी के आगरा केंद्र से इस समय आप सुन रहे हैं देशभक्ति पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भारत भारती। कार्यक्रम का अगला गीत मृत्युदाता फिल्म से है। आवाजें सुदेश भोसले और साथियों की। समीर की गीत रचना को संगीत दिया है आनंद मिलिंद ने।

प्यारे दोस्त, फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। आनंद बख्शी की गीत रचना को संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

हर मजहब के लोग हैं मिलते इस बगिया में इस महफिल में हो हे हम सारे हैं भारतवासी।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं रोजा फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है पीके मिश्रा ने, आवाज हरिहरन की, संगीत ए आर रहमान का।

रोजा फिल्म का देशभक्ति पर गीत आपने सुना हरिहरन के स्वर में। पीके मिश्रा की रचना को संगीत दिया था एआर रहमान ने। इसके साथ ही देशभक्ति पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम भारत भारती अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। आइए सुनते हैं चित्रपट संगीत।

रॉकी फिल्म का गीत आपने सुना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में। आनंद बख्शी के गीत को संगीत दिया था आर डी बर्मन ने। रेडियो फिल्म का गीत अब हम आपको सुनवा रहे हैं हिमेश रेशमिया और रेखा भारद्वाज की आवाजों में। सुब्रत सिन्हा के लिखे इस गीत को संगीत दिया है हिमेश रेशमिया ने।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं राज फिल्म का गीत अलका याग्निक की आवाज में। नदीम शर्मा के संगीत निर्देशन में गीत रचना समीर की है।

0: राज फिल्म का गीत आपने सुना अलका याग्निक की आवाज में, समीर की गीत रचना को संगीत दिया था नदीम श्रवण ने। इसके साथ ही चित्रपट संगीत का कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। 8:45 हुए हैं, हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबीज से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी, दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: श्री मोदी ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उन्नत भागीदारी के जरिए प्रत्येक नॉर्डिक देश की विशेषज्ञताओं का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं, स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं।
2: वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों

0: का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा व्यापार, निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत के राजदूत वाणी सरराजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सुश्री राव ने बताया कि यह यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला

0: यात्रा समुद्री सुरक्षा, मजबूत आपूर्ति श्रृंखलाओं, व्यापार साझेदारियों और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ठोस परिणाम देने का लक्ष्य रखती है और इस दौरान कुछ महत्वपूर्ण समझौतों की घोषणा होने की उम्मीद है। इटली में भारतीय समुदाय के बारे में बात करते हुए भारत की राजदूत वाणी सराजू राव ने कहा कि भारतीय प्रवासी समुदाय ने डेयरी और कृषि सहित कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की गतिशीलता और कल्याण से जुड़े मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान चर्चा हो सकती है। सुपर्णा भाटिया, रोम से।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आंग्यो बेक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों की तलाश करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। श्री प्रधान ने कहा कि दोबारा परीक्षा सख्त सुरक्षा नियमों के अंतर्गत सुरक्षित, बिना किसी रुकावट के और पूरी तरह से पुख्ता तरीके से आयोजित की जानी चाहिए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाश अभियान चलाकर कथित नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने कक्षा 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 की मूल्यांकित उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन की गई प्रतियों के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ा दी है। उम्मीदवार अब 23 मई तक आवेदन जमा करा सकते हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगले 5 वर्षों में छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग देश का सबसे विकसित जनजातीय संभाग बन जाएगा। बस्तर में श्री शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2031 तक बस्तर के लोगों के औसत आमदनी में 6 गुना वृद्धि करना है। उन्होंने कहा कि बस्तर को नक्सल मुक्त बनाने के बाद केंद्र और राज्य सरकार ने मिलकर अगले 5 सालों के लिए इसके विकास से संबंधित एक वैज्ञानिक प्रारूप तैयार किया है।
2: 19 मई 2026 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया जा रहा है। बस्तर के 7 जिले को नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के द्वारा यहां पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने व्यापार सुगमता को बढ़ावा देने, भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने और विकसित भारत की दिशा में देश की प्रगति के लिए उद्योग और सरकार के बीच सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में एक सम्मेलन में श्री गोयल ने ये बात कही।
3: हम दुनिया की भू राजनीतिक परिस्थितियों और उनसे जुड़े जोखिमों को तेज सुधारों के अवसर में बदलेंगे। खुद को अधिक मजबूत और लचीला बनाने की तैयारी करेंगे, अपनी सप्लाई चेन को और सशक्त करेंगे और दुनिया जो भी अवसर दे रही है तथा भारत जो अवसर दुनिया को प्रदान कर रहा है उसके पूरे लाभ उठाएंगे। उदाहरण के तौर पर वे 38 देश जो एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौते के ढांचे में शामिल हो रहे हैं।
1: वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि भारत का लक्ष्य 2030-31 तक 350 अरब डॉलर का कपड़ा बाजार बनाना है। इसमें 100 अरब डॉलर का निर्यात शामिल होगा। नई दिल्ली में श्री सिंह ने

कहा कि टिकाऊ और प्राकृतिक फाइबर ही कपड़ा क्षेत्र के भविष्य को आगे बढ़ाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उर्वरक प्राप्त करना दिन प्रतिदिन कठिन होता जा रहा है। ओडिशा के भुवनेश्वर में श्री चौहान ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद केंद्र सरकार किसानों के लिए पर्याप्त उर्वरक आपूर्ति सुनिश्चित करने के हर संभव प्रयास कर रही है। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को देखते हुए रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दे दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजी का दुष्कर्म मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। पीड़िता के अभिभावकों ने अपराध की आगे की जांच के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर मामले में एक से अधिक व्यक्तियों के शामिल होने का दावा किया है। इससे पहले इस मामले में सियालदह सत्र अदालत ने संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान ने आज फालता विधानसभा क्षेत्र में होने वाले आगामी पुनर्मतदान से अपना नाम वापस लेने की घोषणा की है। भाजपा के नेतृत्व वाली नई सरकार के विशेष पैकेज की उन्होंने सराहना की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष नई दिल्ली में भारत की अध्यक्षता में आयोजित होने वाले ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस ने बताया है कि श्री पुतिन 12 और 13 सितंबर को सम्मेलन में शामिल होंगे। एक साल के अंदर श्री पुतिन की ये दूसरी भारत यात्रा होगी। इससे पहले वो दिसंबर 2025 में भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए नई दिल्ली आए थे। देश के पूर्वोत्तर राज्यों में कारीगरों और बुनकरों के एक समूह ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से आज राष्ट्रपति भवन में मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रतिभा दर्शाने के लिए मंच प्रदान करने पर राष्ट्रपति का आभार व्यक्त किया। राष्ट्रपति ने कारीगरों और बुनकरों को सहायता देने की जरूरत पर बल दिया ताकि उनका हुनर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वे आत्मनिर्भर बन सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
2: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 114 अंक गिरकर 75,201 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 32 अंक लुढ़ककर 23,618 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज एक डॉलर की तुलना में 18 पैसे कमजोर होकर 96.53 के रिकॉर्ड निचले स्तर पर बंद हुआ।
1: मौसम विभाग ने गुरुवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भीषण लू की आशंका है। अगले 2 से 3 दिन के लिए हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश या मराठवाड़ा और ओडिशा में लू चलने की संभावना है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि 21 मई तक अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में तेज बारिश हो सकती है। आंध्र प्रदेश, बिहार, गंगा के मैदानी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और ओडिशा में गरज के साथ तेज हवाओं का अनुमान है। भारत और अफगानिस्तान के बीच एकमात्र क्रिकेट टेस्ट मैच और 3 एकदिवसीय मैच की श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी गई है। शुभमन गिल टेस्ट टीम के कप्तान और केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है। शुभमन गिल एकदिवसीय टीम की कप्तानी करेंगे और श्रेयस अय्यर उपकप्तान होंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच मैच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक लखनऊ सुपर जायंट्स ने 16 ओवर में 2 विकेट पर 182 रन बना लिए हैं। राजस्थान ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और नॉर्डिक देशों ने आपसी संबंधों को हरित प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के प्रधानमंत्रियों के साथ नॉर्वे के ओस्लो में 3रे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अगले महीने होने

0: वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। सर्वोच्च न्यायालय ने रेबी से संक्रमित और खतरनाक कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वर्ष सितंबर में नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। मौसम विभाग ने उत्तर भारत में भीषण गर्मी की चेतावनी दी। दक्षिण क्षेत्र में तेज वर्षा की आशंका। और शुभमन गिल अफगानिस्तान के साथ टेस्ट और एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला में भारतीय टीम की कप्तानी करेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी एंड आई एम सुभद्रा रामचंद्रन विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Prime Minister Narendra Modi says investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade, attends third India-Nordic summit in Oslo with counterparts from Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecast heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. India and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today.
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: Prime Minister Narendra Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in the past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements, including trade and economic partnership and India-EU free trade deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards.
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: Speaking on the occasion, the prime ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries.

0: Sweden, Iceland, Finland and Denmark. Education Minister Dharmendra Pradhan reviews preparation for NEET UG re-examination to be held next month. Supreme Court allows euthanasia for rabid and dangerous stray dogs to protect human life. Russian President Vladimir Putin to attend New Delhi BRICS Summit in September this year. IMD warns of severe heatwave conditions in northern India, forecasts heavy rainfall in southern region. In cricket, Shubman Gill to lead Indian squads in Test and ODI series against Afghanistan. That's all in the news at 9. Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शगुफ्ता यास्मीन। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ओस्लो में नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड, फिनलैंड और डेनमार्क के अपने हम मनसबों के साथ तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में हिस्सा लिया। वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने नीट यूजी के अगले माह दोबारा होने वाले इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानी जानों के तहफ्फुज के लिए खतरनाक आवारा कुत्तों को जान से मारने की इजाजत दी है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन इस बरस सितंबर में नई दिल्ली ब्रिक्स समिट में शिरकत करेंगे। महकमे मौसमियात ने शुमाली हिंद में गर्मी की इंतहाई शदीद लहर से खबरदार किया है। उसने जुनूबी खित्ते में बहुत तेज बारिश की पेशगोई की है। और क्रिकेट में अफगानिस्तान के साथ भारत की टेस्ट और एक रोजा मैचों की सीरीज में शुभमन गिल टीम की सरबराही करेंगे। अब खबरें तफसील से। भारत और यूरोप के नॉर्डिक ममालिक ने, जिनमें नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड और आइसलैंड शामिल हैं, अपने बाहमी ताल्लुकात को मजीद बढ़ाकर ग्रीन टेक्नोलॉजी और इख्तराती कलीदी शराकतदारी की सतह तक पहुंचा दिया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आज तीसरे भारत नॉर्डिक समिट में शिरकत के बाद नॉर्डिक मुल्कों के लीडरों के साथ एक मुश्तरका प्रेस मीटिंग से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने यह ऐलान किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में नॉर्डिक ममालिक की सरमायाकारी पिछली एक दहाई में 200% बढ़ गई है।
2: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियोथर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सेंसिटिविटी में एक्सपर्टीज को, सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज को भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
1: जनाब मोदी ने कहा कि पिछले 10 बरस में भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान बाहमी तिजारत बढ़कर 4 गुना हो गई है।
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
1: जनाब मोदी ने इस बात का यकीन दिलाया कि भारत और नॉर्डिक मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात एक नए सुनहरे अहद की सूरत में इंतहाई समरावर साबित होंगे। हाल ही में तय पाए तिजारती मुआहदे इसी जानिब इशारा करते हैं। इन मुआहदों में तिजारत और इक्तिसादी शराकतदारी और भारत यूरोपीय यूनियन आजाद तिजारती मुआहदा शामिल है। दहशतगर्दी के बारे में जनाब मोदी ने कहा कि तरफेन का एक वाज़ह और मुत्तहदा मौकिफ है, जिसमें कोई समझौता नहीं है और कोई दोहरा मयार नहीं है।
2: आज हम सब ने मिलकर ग्लोबल इश्यूज पर भी विचार साझा किए। वैश्विक तनाव और संघर्ष के इस दौर में भारत और नॉर्डिक देश साथ मिलकर एक रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को बल देते रहेंगे और यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर सहमत है कि मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस का रिफॉर्म आवश्यक भी है और अर्जेंट भी है, और टेररिज्म पर भी हमारा क्लियर और यूनाइटेड स्टैंड है, नो कॉम्प्रोमाइज, नो डबल स्टैंडर्ड।
1: इस मौके पर खिताब करते हुए नॉर्वे, स्वीडन, आइसलैंड

0: Mann kann.
1: नमस्कार, मंथन कार्यक्रम के आज के अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिल कुमार और आज हम भारत के वैश्विक निर्यात विस्तार में एमएसएमई की अहम भूमिका पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं आर्थिक विशेषज्ञ शिशिर सिन्हा। शिशिर जी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: निखिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: शिशिर जी, सबसे पहले एमएसएमई की हम बात करें तो भारत की आर्थिक वृद्धि को ये लगातार गति दे रहे हैं और उनका योगदान अगर हम जीडीपी में देखें तो ये 31% से ज्यादा और निर्यात में लगभग 48% से कहीं अधिक है। देश भर में 32,80,00,000 लोगों से ज्यादा की आबादी की आजीविका उन पर निर्भर है। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाकर के देखें तो कोविड काल में शुरू हुई ECLGS योजना को एमएसएमई के लिए जीवन रेखा माना गया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि इस योजना ने भारत में बड़े पैमाने पर एनपीए संकट को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और कई सारी प्रबंधन नीतियों को बेहतर किया या फिर हमारी आर्थिक जो स्थिति है उसे बेहतर करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
2: देखिए, कोविड काल में जब इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम लाई गई थी तो उसके पीछे मकसद ये था कि ये जो अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण हिस्सेदारी निभाते हैं 30% से ऊपर निर्यात में 48% से ज्यादा, उनके लिए जो स्थिति जो है वो बुरी ना हो। और अभी सरकार ने जब फैसला लिया कि पश्चिम एशिया संकट के बाद जिस तरह से उद्योगों की और खासतौर पर निर्यातकों की बुरी हालत हुई है उसमें उनको मदद देने के लिए ECLGS का 5वां संस्करण आ गया। ये 2,50,000 करोड़ रुपए का जो ECLGS है इसका सबसे ज्यादा फायदा माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को मिलेगा। तो अभी के समय में जब हमें निर्यात को रफ्तार देना है, जब हम नए बाजार में जा रहे हैं, जब हमें अपने उद्योगों की प्रतिस्पर्धी क्षमता को बढ़ाना है, तो आधे के करीब में जिनकी हिस्सेदारी है उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए ऐसे प्रोत्साहनों की बहुत ज्यादा जरूरत है और उनका महत्व भी बढ़ जाता है। और ये एक महत्वपूर्ण पहल सरकार ने समय लिया है और हमें उम्मीद है कि इसका फायदा जो है आपको 2026-27 जो कि बहुत ही चुनौतीपूर्ण वर्ष है उसमें हमें देखने को मिले।
1: अभी अगर हम बात करें तो MSMED अधिनियम के तहत 45 दिन में भुगतान अनिवार्य करने और समाधान पोर्टल शुरू करने के बावजूद कुछ भुगतान की समस्याओं की बात उठती रही है, तो इस तरह की जो चुनौतियां हैं उनसे प्रभावी तरीके से निपटने में किस तरह की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जाना चाहिए?
2: देखिए, कोई भी व्यापारी अगर किसी के साथ व्यापार करता है, सामान बेचता है, तो उसको समय पर भुगतान मिलना अनिवार्य होता है। अब इसके लिए अगर 45 दिन की समय सीमा तय की गई है, इसके बावजूद भी एमएसएमई का बकाया जो है वो हमने देखा है वो बढ़ता रहा है। सरकार ने भी काफी चिंता जताई और समय समय पर कदम भी उठाए हैं। अब देखिए, ऐसी सूरत में आपके पास विकल्प क्या होता है कि आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लीजिए। जब आप बैंक से जाकर के वर्किंग कैपिटल लोन लेते हैं तो उसकी लागत बढ़ जाती है, उससे आपकी प्रतिस्पर्धी क्षमता पर असर पड़ता है। तो अब के समय में जेम के जरिए जो कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है या फिर हम कहें कि जो सरकारी विभाग है वो कम से कम समय में भुगतान कर देते हैं। देखिए, रियल टाइम भी कई जगहों पर होने लगा है लेकिन अभी उसे व्यापक स्तर पर लाने में थोड़ा समय लगेगा। लेकिन अगर वो समय सीमा कम हो तो इन एमएसएमई के लिए जो कार्यशील पूंजी की लागत है उसको कम करने में मदद मिलेगी और वो अगर कम होगा तो उससे उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता बेहतर होगी, अपने जो कुछ भी उनके उत्पादन की प्रक्रिया है या जो व्यापार है उसको आगे चलाने में मदद मिलेगी। तो ऐसे में सरकार ने अब तक जो कदम उठाए हैं उसके अलावा हमें लगता है कि सरकार को और इस मामले में एक निर्देश जो है उस पर सख्ती से अमल होना चाहिए कि आपको कम से कम समय में भुगतान करना है।
1: शिशिर जी, भी आपने जेम की बात की तो इसके साथ में TREDS की बात हम कर ले, एमएसएमई संबंध हो या फिर चैंपियंस पोर्टल जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, और ये जो पहल की जाती है सरकार को एक तरह से एमएसएमई इकोसिस्टम बनाने में काफी मददगार साबित हो रही है, इनसे आपको क्या लगता है कि और कितना ये बढ़ावा देंगे या किसी तरह की प्रतिस्पर्धा भी हमें देखने को मिल सकती है छोटे उद्यमों में?
2: आपने जो 3 खास प्लेटफॉर्म का जिक्र किया, चाहे वो TREDS की बात हम लोग करें या चैंपियन प्लेटफॉर्म की बात करें, इन सब के जरिए कोशिश क्या है कि एमएसएमई जो एक लंबे

0: समय तक अनौपचारिक क्षेत्र में रहे हैं,
1: जी
0: उनको औपचारिक क्षेत्र में लाने की कोशिश की जाए, और औपचारिक क्षेत्र में लाने के बाद उनको हैंड होल्डिंग किया जाए, यानी कि उनको अपने कारोबार को बढ़ाने में मदद मिले। देखिए, जब एक ही तरह का सामान 10 लोग बनाते हैं तो ऐसे में जरूरत यह बन जाती है कि उसमें से हम किस तरीके से उन 10ों की मदद करते हैं जिससे कि वो थोड़ी अपने उत्पाद में विविधता लाएं और
1: जी
0: ताकि वो बाजार में बने रहें। अचानक आप नहीं कह सकते कि नहीं, आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी।
1: जी
0: इसका फायदा क्या है, और ये जो आपने 3 खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर एमएसएमई

0: कह सकते कि नहीं आप यही उत्पाद बनाएंगे और आप यही उत्पाद बनाएंगे या आप यही उत्पाद बनाएंगे, तो उनकी प्रतिस्पर्धी क्षमता कैसे विकसित करनी है। दूसरी बात यह है कि अगर आप बीते वर्ष का बजट देखेंगे तो उसमें एमएसएमई की परिभाषा में भी बदलाव किया गया, यानी कि उनके लिए जो टर्नओवर और निवेश की सीमा है वो बढ़ा दी गई थी।
1: जी
0: इसका फायदा क्या है, और ये जो आपने तीन खास पहल का जिक्र किया, अगर आप चारों को मिला दें तो वैश्विक स्तर पर जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों में हमने देखा है कि वहां पर एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, भारत भी उन देशों में शामिल हो गया है और इन एमएसएमई को वैश्विक मंच पे अपने कारोबार व्यापार को बढ़ाने में इस तरह के प्रयासों से, इन तरह के पहलों से जो है वो काफी मदद मिलेगी।
1: शिशिर जी, वैश्विक स्तर पर हम देखें तो सरकार काफी हद तक प्रयास कर रही है कि हमारा जो निर्यात है वो बढ़े और एमएसएमई को बढ़ावा भी मिले, साथ में कई ऐसी चीजें हैं जिससे हमारी आर्थिक स्थिति को और भी बेहतर किया जा सके। नई दिल्ली में भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट लॉन्च समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने इस वर्ष $1 ट्रिलियन और अगले 5 वर्षों में $2 ट्रिलियन के निर्यात का लक्ष्य रखा है।
2: विश्व की चुनौतियों के बावजूद भारत एक प्रकार से लाइक एन ओएसिस इन द डेजर्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ रही है, हमारा निर्यात भी आगे बढ़ रहा है। इस वर्ष का भी निर्यात $863 बिलियन यानी पिछले वर्ष से लगभग 5% ज्यादा। गुड्स में भी बढ़त है, सर्विसेज में भी बढ़त, और आने वाले वर्ष का टारगेट यानी अभी जो वर्ष चल रहा है उसका टारगेट हमने और बढ़ा रखा है कि इस वर्ष हम सब मिलकर $1 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करें। आने वाले दिनों में, अगले 5 साल में भारत ने प्रण लिया है कि हम $2 ट्रिलियन का निर्यात एक्सपोर्ट भारत से करें।
1: तो शिशिर जी, अभी केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने जिस तरह से बात कही, एक उत्साहजनक प्रतिक्रिया हमें देखने को मिली है। हम वापस थोड़ा सा अगर आकर के देखें तो खुदरा और थोक व्यापारियों को वर्ष 2021 से एमएसएमई दायरे में शामिल किया गया है और इसमें लगातार इन बातों को बढ़ावा दिया जाए कि इनको ज्यादा से ज्यादा मौका दिया जाए कि वो देश की जो आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने की गतिविधि है उसमें ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेशन कर सकें। तो इसमें कितनी आपको बढ़त देखने को मिल रही है?
0: देखिए, आज के दिन में महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सारे प्रयासों का असर यह हुआ है कि ज्यादा से ज्यादा उद्योग औपचारिक व्यवस्था में आ रहे हैं। आपको एक छोटा सा उदाहरण देते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन को लेकर के। जीएसटी में लगभग 1,60,00,000 जो है वो रजिस्टर्ड असेसी हैं। अब अगर आप प्री जीएसटी रिजीम को देखें, 30 जून 2017 की स्थिति देखें, तो लगभग ये संख्या 66,00,000 थी। अब 1,60,00,000 है और इस 1,60,00,000 में एक बड़ी संख्या वो है जिनका सालाना कारोबार 40,00,000 रुपए या 20,00,000 रुपए से कम है। जीएसटी की अनिवार्यता ये कहती है कि आपको 40,00,000 का कारोबार होना चाहिए और अगर आप पूर्वोत्तर के राज्य में हैं या ऐसे विशेष क्षेत्र में हैं वहां पर आपका 20,00,000 होना चाहिए गुड्स के मामले में, और सेवा के मामले में 20,00,000 और 10,00,000 रुपए होना चाहिए। लेकिन अगर ज्यादा से ज्यादा छोटे कारोबारी जीएसटी के दायरे में आते हैं, क्यों आते हैं, उसका कारण हमें समझना होगा। कारण यह है कि जब आप व्यापार करने जाते हैं तो अगर आपके पास जीएसटी का पंजीकरण होता है तो आपके लिए व्यापार करना आसान हो जाता है। सामने वाला व्यापारी आपसे कहता है, सामने वाला बड़ा उद्योग आपसे कहता है कि आपका जीएसटीएन है कि नहीं है, आप कहते हैं हमारा जीएसटीएन है, तो एक पूरा का पूरा प्रोसेस जो है वो सीमलेस हो जाता है, यानी कि कहीं कोई व्यवधान नहीं आता,
1: आसानी होती है।
0: बिल्कुल, जिसको हम लोग कहते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब सिर्फ हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हमने बड़े उद्योगों के लिए क्या किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब ये भी होता है कि जो बिल्कुल निचले स्तर पे जो हमारे कारोबारी व्यापारी हैं, जो हमारे अर्थतंत्र का एक अहम हिस्सा है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं। तो मैंने आपको जीएसटी का एक छोटा सा उदाहरण दिया। इसी तरीके से आप अगर आपने शुरू में जिक्र किया था कि लगभग 32 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई पर जुड़े हुए हैं, ये तो वो संख्या है जो कि प्रत्यक्ष है। अगर आप अप्रत्यक्ष देखें तो करीबन 50-60 करोड़ लोग जो हैं वो एमएसएमई से जुड़े हुए हैं। इन संख्या के आधार पर अगर हम इन कारोबारी व्यापारियों को बढ़ावा नहीं देंगे तो आपका अर्थतंत्र आगे नहीं चलने वाला है। अर्थतंत्र में जब 7%, 7.5% की विकास दर की जरूरत होती है तो केवल बड़े उद्योग हिस्सेदारी नहीं करते हैं बल्कि छोटे और स्थानीय स्तर के उद्योग की जो भूमिका होती है वो काफी अहम हो जाती है।
1: तो ये मतलब कह सकते हैं कि ग्रामीण और अर्ध शहरी जो अर्थव्यवस्था है वो हमारी जीडीपी में अपना एक महत्वपूर्ण योगदान दे रही है, और साथ में क्या ये भी कहा जा सकता है कि हमारी जो आर्थिक रणनीति है वो छोटे उद्योगों पर काफी हद तक केंद्रित की जा रही है ताकि ज्यादा से ज्यादा उत्पादों को बढ़ावा मिले।
0: अगर आप पिछले 12 साल में योजनाएं देखें, खासतौर पर छोटे उद्योगों के लिए योजनाओं की बात अगर मैं करूं, तो उसमें उद्यमिता से लेकर के कारोबार व्यापार चलाने तक की व्यवस्था की गई है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि आप एक व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आपके पास स्टार्टअप की स्कीम है,
1: जी।
0: अगर आप एक महिला उद्यमी हैं तो स्टैंडअप की स्कीम है, जहां पर महिला और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति

0: जाति के लोगों को बढ़ावा दिया जाता है। फिर अगर आप कारोबार शुरू कर देते हैं तो आपके पास मुद्रा के तहत आपको व्यवस्था मिल जाती है। तो अगर आप इन योजनाओं को, हर योजना को एक दूसरे से जोड़ करके देखें, तो व्यापार शुरू करने से लेकर के व्यापार चलाने और व्यापार बढ़ाने का रास्ता आपके लिए बनाया जाता है। तो आज के समय में जब हमारा 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य है, जब हमें 30 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था को हासिल करना है, तो ऐसे में जरूरत इस बात की हो जाती है कि वो क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था में निर्यात में 30%, 40-45%, 48% योगदान करता है, उसके लिए हम और नीतियां कितना सरल और सहज बना सकते हैं। 12 सालों का सफर में हमने ये देखा है कि ऐसा हुआ है, और हमें उम्मीद है कि आगे भी जो है वो प्रक्रिया जो है वो जारी रहेगी।
1: शिशिर जी, आपने तमाम योजनाओं के बारे में बताया है। डिजिटलीकरण जो एक बड़ा पथ रहा है जिस पर आगे बढ़ करके हमने काफी चीजें हासिल की हैं, उद्यम की हम बात करते हैं, उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म की बात करते हैं, लगभग 8 करोड़ से ज्यादा उद्यमों को औपचारिक अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ा गया है। तो इस तरह का जो डिजिटलीकरण किया जा रहा है, ये कितना ज्यादा लाभदायक हुआ है अब तक छोटे उद्यमों को आगे बढ़ाने और बड़े उद्योगों को और भी ज्यादा उन्हें विस्तार देने के लिए?
0: देखिए, डिजिटल व्यवस्था का दो बड़ा फायदा होता है। एक बड़ा फायदा यह है कि आपका सब कुछ जो है वो एक पारदर्शी तरीके से है। आपने सरकार को क्या टैक्स दिया, आपने सरकार के पास कौन सा फॉर्म जमा किया, वो सारा का सारा सिस्टम में उपलब्ध हो जाता है। उसमें रियल टाइम ट्रांजेक्शन पॉसिबल होता है, और कोई आपके यहाँ आकर के ये नहीं कह सकता है कि आप ये रजिस्टर दिखाओ, आप वो रजिस्टर दिखाओ, कच्चा दिखाओ, पक्का दिखाओ, ये सबकी गुंजाइश नहीं बनती। आप सब कुछ जो है एक पारदर्शी तरीके से एक प्लेटफॉर्म पे वो आंकड़े उपलब्ध करा देते हैं, तो आपके बारे में सरकार को एक स्पष्ट जानकारी मिल जाती है। आपके जैसे व्यापारियों की जानकारी जब सरकार के पास आती है, तो सरकार के लिए योजनाएं बनाने में आसानी होती है। हमें डिजिटल व्यवस्था से ये पता चल जाता है कि कौन सा क्षेत्र ऐसा है जिसके लिए हमें विशेष प्रोत्साहन देने की जरूरत है। हमने जिक्र किया ECLGS 5 का
1: जी।
0: अब ये ECLGS 5 की बात क्यों आई, अचानक ऐसा क्यों लगा सरकार को कि नहीं, हमें कुछ नए सिरे से जो है इनको हमें मदद करनी चाहिए? क्योंकि देखा गया कि जो उद्योग थे वो ऋण अदायगी में उनको दिक्कतें आ रही थी, क्योंकि आपका भुगतान बाहर से नहीं मिल पा रहा है, तो अब हम उनको किस तरीके से मदद करते हैं। अब यदि वहां पर अगर डिजिटल व्यवस्था नहीं हो, वहां पर इस तरह की व्यवस्था नहीं हो जिसमें जानकारी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं है, तो आप योजनाएं कैसे बनाएंगे? तो डिजिटल व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा है कि रियल टाइम पॉलिसी मेकिंग संभव हो पाता है।
1: जब व्यापार करते हैं, कारोबार करते हैं, तो कुछ ना कुछ कभी कोई खामी रह जाती है या कोई समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इन चीजों के लिए समाधान और नए ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पोर्टल जैसे डिजिटल तंत्र भी हमारे पास हैं, जो भारत की न्यायिक प्रशासनिक प्रक्रियाओं को तेज करने से छोटे उद्यमों और बड़े उद्यमों को एक ऐसा रास्ता दिखा रहे हैं कि आप सीमलेस होकर के अपना काम कर सकें।
0: बिल्कुल, आपको शिकायत है, सरकार ने कहा कि आपने ये नियम का पालन नहीं किया, आपको डिजिटली उन्होंने इन्फॉर्म किया, उसके बाद आपसे ये उम्मीद करते हैं कि आप डिजिटली ही उसका जवाब आप दे दें। अब जैसे एक उदाहरण आपको दूं फेसलेस असेसमेंट का। अब इनकम टैक्स की व्यवस्था ये कहती है कि आपको आयकर विभाग के दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। आयकर विभाग को लगता है कि आपने जो रिटर्न दाखिल किया उसमें कुछ कमी है, तो वो आपको एक नोटिस ईमेल के जरिए भेजता है, उसी के आधार पर आप जो कंप्यूटर व्यवस्था है उससे आप जुड़ते हैं। सामने वाले अधिकारी को ये नहीं पता होता है कि आप कौन है, और आपको ये नहीं पता होता सामने वाला अधिकारी कौन है, दोनों के बीच में एक जो डिजिटल सिस्टम है वो हमारा काम करता है। तो ये जब इस तरीके का रिजोल्यूशन मैकेनिज्म या इस तरीके की फेसलेस व्यवस्था शुरू होती है, तो एक विश्वास बनता है कि हम खुल करके अपनी बात कह सकते हैं, और उसमें समाधान में समय कम लगता है।
1: शिशिर जी, ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में जो पहले छोटे उद्यम हुआ करते थे, वो पहले एक तरह से अनौपचारिक होते थे, हमें जानकारी नहीं होती थी कि कहां पर क्या बन रहा है, लेकिन अब जो व्यवस्थाएं शुरू की गई हैं उनसे उन्हें कितना लाभ हुआ है और जो उपभोक्ता है उसे कितना लाभ हुआ है?
0: ग्रामीण क्षेत्र की जो उद्योग है, जिनको हम लोग कुटीर उद्योग कहते रहे हैं, उनके लिए एक बड़ी दिक्कत होती थी बाजार तक पहुंचने में। आपने सामान बहुत अच्छा बनाया लेकिन बाजार में पहुंच नहीं पाया। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स हैं, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, आपके लिए वो एक माध्यम तैयार कर दिए हैं, माध्यम आपको मुहैया करा रहे कि आप बाजार तक पहुंच सके। और दूसरा फायदा ये होता है कि जब आप बाजार में पहुंचते तो आपके अपने उत्पादों की अच्छी कीमत मिलती है। ये कुटीर उद्योगों के लिए, ग्रामीण उद्योगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है।
1: यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई है, जो इस तरह के प्रावधान किए गए, वो छोटे उद्योगों के साथ साथ बड़े उद्योगों के लिए भी लाभदायक हैं।
0: बिल्कुल, बड़े उद्योगों के लिए कई योजनाएं हैं। अब जरूरत यह है कि उसी तरीके की योजनाएं छोटे उद्योगों के लिए, मझोले उद्योगों के लिए भी लागू किए जाएं, और लागू कई किए गए हैं, उनका फायदा भी मिला। वही नतीजा है कि 50% निर्यात में हिस्सेदारी जो है करीब करीब 50% MSME का हो चुका है।
1: जी शिशिर जी, इस चर्चा में भाग लेने के लिए, तमाम मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी धन्यवाद।
1: श्रोताओं, ये कार्यक्रम आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार। कार्यक्रम खेल दर्पण के एक और अंक के साथ मैं चंदन सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे भेंट वार्ता, जिसका विषय होगा ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से बातचीत करेंगे अशोक पांडे। साथ ही हम आपको सुनवाएंगे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। सबसे पहले लीजिए सुनिए भेंट वार्ता, जिसका विषय है ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। इस विषय पर नन्हे सिंह से भेंट वार्ता कर रहे हैं अशोक पांडे।
1: श्रोताओं नमस्कार। आज के कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे खेलों में ग्रामीण क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनके बारे में, कि किस तरह से ग्रामीण पृष्ठभूमि के युवा आगे बढ़कर के खेलों में अपना दमखम दिखा रहे हैं, उसका परिचय दे रहे हैं और तमाम सारे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर अपना और अपने देश का नाम रोशन कर रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है एथलेटिक्स प्रशिक्षक नन्हे सिंह जी को। नन्हे सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आकाशवाणी के स्टूडियो और इस कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद सर।
1: नन्हे सिंह जी, जैसे कि बातचीत का जो विषय है वो ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं के ऊपर है
2: जी,
1: तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जो भी खेल के बड़े आयोजन हैं या छोटे आयोजन हैं, उनमें ग्रामीण क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, जो लड़के आ रहे हैं,
2: जी,
1: जो लड़कियां आ रही हैं, उनका प्रतिनिधित्व करने का जो प्रतिशत है वो क्या है, उनके प्रतिनिधित्व का दर क्या है, किस अनुपात में वो आ रहे हैं
2: प्रतियोगिताओं में? ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे खिलाड़ी विभिन्न खेलों में आते हैं वो ट्रेंड तो नहीं रहते हैं, रॉ मटेरियल रहते हैं, लेकिन उनके अंदर जो प्रतिभाएं रहती हैं वो अपने जौहर का जहूर आकर के दिखाते हैं। बिना किसी टेक्निक के वो इतने बढ़िया प्रदर्शन करते हैं अपने दमखम से, जो देख करके लोगों को ये लगता है कि ये लड़का या खिलाड़ी किसी कोच द्वारा, प्रशिक्षक द्वारा, किसी गुरु द्वारा ट्रेंड नहीं है, इसके अंदर ईश्वरीय देन है, ईश्वरीय शक्ति ऐसी है, इसके अंदर ऐसी प्रतिभा छिपी हुई है जिस प्रतिभा के बल पर खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, ग्रामीण अंचल का खिलाड़ी अपने प्रदर्शन को, जैसे हम लोग गांव में ग्रामीण अंचल की प्रतियोगिताएं कराते हैं, जैसे ब्लॉक लेवल पर DUPRD इस तरह की प्रतियोगिताएं गांव में जब होती हैं, जैसे सुदूर अंचलों में नवगढ़ प्रांतर की तरफ से अगर उधर जाते हैं उस एरिए में, जैसे मूसाखाण बंदा है, वहां भी लड़के अपना जो है ट्रैक नहीं है लेकिन उस ट्रैक में देखते हैं हम बाल्टी का पानी फेंक करके दौड़ते रहते हैं, कूदते रहते हैं, अखाड़ा खोद कर उसमें कूदते हैं, जैसे पोल वाल्ट है, बड़ा ही यह रिस्की गेम है, लेकिन पोल वाल्ट को क्या करते हैं, अखाड़ा खोद के एक बांस का पोल लेकर उसी पर गड्ढा बना के कूद के चढ़ते हैं। और इस प्रकार के लड़के जो ग्रामीण अंचलों से आते हैं, उनकी प्रतिभा में निखार लाने के लिए जब वो शहर में आते हैं किसी गुणी के पास, किसी प्रशिक्षक के पास, तो उनकी प्रतिभाओं में निखार आता है। जैसे आप देख सकते हैं लकड़ाकड़ा, ये आदिवासी लड़का था, मैराथन में कुछ इस प्रकार के खिलाड़ी रहे हैं, जैसे हमारे पास ही हीरालाल लड़का था भदोही का, बिल्कुल रॉ मटेरियल था। इससे पहले जगदीश विश्नोई जेवलिन थ्रो का लड़का था, मेरी पोस्टिंग उस समय राजस्थान में थी, गाँव का रहने वाला था, गंगानगर का रहने वाला था, और बोला कि गुरु जी किसी को सिलेक्ट कर लेंगे फर्स्ट तो हम ही आई, तो ये बड़ा ही हमको अच्छा लगा। और उस बच्चे को हमने बुलाया कि नहीं बेटा तुम आओ, आकर के उसको मैंने ट्रेनिंग देना शुरू किया, और वही लड़का सिडनी ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में भारतवर्ष की तरफ से प्रतिभाग किया और अपना प्रदर्शन वहां पर अच्छा किया।
1: कहने का मतलब यह है कि ऐसे क्षेत्र से जो युवा आ रहे हैं, कहीं ना कहीं इसके पीछे एक सोच और काम करती है कि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि उनके पास ऐसा कुछ नहीं होता है जिसे वो खोएंगे। अगर वो एक कदम भी आगे बढ़े तो उन्हें कुछ न कुछ हासिल ही होगा, तो ऐसे में उनका जो जोश होता है काफी मजबूती से निखर करके आगे आता है कि हाँ, मैं इस प्रतियोगिता में अपना पूरा दमखम का परिचय दूंगा और मैं ही जीतूंगा। जैसे आपने उदाहरण दिया उस जेवलिन थ्रोअर का, कि उसने कहा कि प्रैक्टिस तो कितनी भी कर ले लेकिन जीतूंगा मैं ही। तो जो ऐसे क्षेत्र हैं, खास करके जहां पर इससे संबंधित जानकारी भी नहीं लोगों तक पहुंच पाती है कि नए नए कौन से ऐसे खेल आयोजन हैं या खेल की ऐसी कौन सी विधाएं हैं जिनमें हमें हाथ आजमाना चाहिए, जिसके लिए हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, उन्हें तो कायदे से इसका भी

0: नहीं होता है कि अगर हम दौड़ रहे हैं तो दौड़ भी कितने तरह की होती है। एथलेटिक्स में तमाम सारी विधाएं हैं, ट्रैक कितना होना चाहिए,
1: जी
0: कितनी चौड़ाई होनी चाहिए, कितनी देर में हमको पहुंचना है,
1: जी जी
0: नेशनल रिकॉर्ड क्या है, ऐसी तमाम सारी चीजें हैं जिसकी जानकारी उन्हें नहीं होती है।
1: जी
0: उसके बावजूद वो अपना पूरा दमखम लगा करके पूरी मेहनत करते हैं। तो ऐसे में आप लोग तो जाते हैं उन क्षेत्रों में, वो ग्रामीण क्षेत्र खास करके जो सुदूर इलाके हैं जहां बहुत सारी सुविधाएं नहीं है, खास करके खेलों को लेकर के जागरूकता नहीं है,
1: जी
0: तो कितनी मशक्कत करनी पड़ती है ऐसे क्षेत्र से जो खिलाड़ी हैं उनको लाने में और वापस उनको ट्रेन करने में।
1: हम लोग सुदूर ग्रामीण अंचलों में जब जाते हैं तो वहां पर सबसे पहले उनके गार्जियन से मिलते हैं, बुजुर्गों से मिलते हैं। यहां तक कि एक बुजुर्ग ने कहा था कि उठा लो लंगोटा और दिखाने चलो कुछ मनुज हो तो पौरुष अखाड़े की हो। ये बड़ी हमको अच्छी बात लगी। और सुदूर जंगलों में, नौगढ़ के जंगलों में भेड़ा फार्म के पास में, वहां पर एक स्पोर्ट्स हो रहा था, पुलिस खेल करा रहे थे लोग, पुलिस वाले वहां हमको बुलाए थे लोग, और उस नेक्सलाइट बेल्ट से छोटी छोटी बच्ची आके एक दिन की इस माहौल को देख के दौड़ रहे हैं। कोई धोती पहने दौड़ रहा है, कोई नंगे पैर दौड़ रहा है, बिना किसी इक्विपमेंट्स के, बिना किसी साधन के, और इस प्रकार की दौड़ लड़के दौड़ रहे थे। हमें इतना अच्छा लगा, जैसे परंपरागत खेल ग्रामीण अंचलों में वॉलीबॉल है, कबड्डी है, दौड़ है, एथलेटिक्स में से दौड़। आपने कहा कि उनको मालूम नहीं है, रेस है, जंप है, थ्रोज है, इन तमाम प्रकार की विधाएं हैं जिसमें वो ग्रामीण बच्चे जो जागरूक हैं, उनमें से जो कुछ पढ़ लिख के ऊपर आ गए हैं, वो हमसे, हम लोगों से संपर्क करके उन बच्चों को जानकारी देते हैं। डायरेक्ट जो लड़का हम लोगों के टच में है, उन बच्चों को हम लोग डायरेक्ट बताते हैं, और यह भी प्रयास करते हैं कि अगर इस बच्चे को कितना हम मदद कर सकते हैं, शहर में रख करके किसी से स्पॉन्सर भी कराते हैं, एक दो साल ट्रेनिंग के बाद यह प्रयास करते हैं कि यह लड़का खेल छात्रावास में आ जाए। यहाँ पर खेल छात्रावास जैसे भारतीय खेल प्राधिकरण का है और उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय का है। इन हॉस्टलों में हम लोग दाखिला दिलाते हैं उन गरीब बच्चों को, उन प्रतिभावान बच्चों को, कि आकर के अपने दमखम का, अपने प्रतिभा का प्रदर्शन वो बच्चे दिखा सके, जो भविष्य के आने वाले दिनों में दूरगामी परिणाम अच्छा दें और अपने जिला ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भारत के झंडे को फहराएं। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं, जैसे हमारा लड़का एक यहां पर खिलाड़ी था, राम सिंह, ये चोलापुर में बभियाओं गांव का रहने वाला था, और लंदन ओलंपिक में 42 किलोमीटर 195 मीटर की दौड़ होती है, उस रेस में भारतीय चुनौती को उसने पेश किया और बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया। इसी तरह से गुलाबचंद चिरेगांव का रहने वाला लड़का है, संतोष कुमार भी चिरेगांव का ही है, ये सब बच्चे अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर भी अपने प्रतिभा का प्रदर्शन दिखाए हैं। जैसे गुलाब हमारे यहाँ यूपी कॉलेज में रह करके वो ट्रेनिंग करते थे, और वही खिलाड़ी हमारा गांव का रहने वाला, यहाँ रहते हुए उन्होंने नेशनल में फर्स्ट किया, और अर्जुन पुरस्कार, जो खेल का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, वह अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित हुआ। बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं गांव के जो अर्जुन पुरस्कार, बहुत से ऐसे खिलाड़ी खेलने के बाद कोच बने हैं और कोच में भी इतना अच्छा प्रदर्शन किए हैं कि द्रोणाचार्य पुरस्कार से भी सम्मानित हुए हैं। जैसे हम लोग गांव के हैं रहने वाले, बेसिकली मैं गांव का निवासी हूँ, चंदौली जिले में धानापुर एक जगह है, धानापुर में एक गांव है डबरिया, उस गांव का मैं मूल रूप से निवासी हूँ। और हम लोग भी जब गांव में स्पोर्ट्स करते थे तो ग्राउंड नहीं था, सड़क पर, पगडंडी पर ऐसे छर्री हुआ करती थी, स्पाइक भी नहीं थी, नंगे पैर दौड़ते थे, पैर छिल जाते थे, लेकिन मन में एक प्रबल इच्छा शक्ति थी कि नहीं, हमें खेल करना है, हमें जीतना है, हम खेल के माध्यम से अपने करियर को बनाना है और अपने साथ साथ और लोगों को जोड़ना है कि भविष्य के आने वाले दिनों में हम भी एक दिन भारत के तिरंगे को फहराएंगे और भारतीय धुन को बजाएंगे, भारत के गौरव को बढ़ाएंगे। ये ऐसी अंदर से एक भावना थी कि नहीं, मैं करूं। और मैं खिलाड़ियों को, बच्चों को गाँव में जा करके यह बताता रहता हूँ कि नहीं, ये करो। जैसे एक लड़की आरती है, ये बगल पचराव गांव की रहने वाली है, और वर्ल्ड स्कूल गेम में उसने भारत के लिए रजत पदक जीता। बहुत लंबी चौड़ी टीम गई थी, लेकिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्कूली गेम में मेडल जीतने वाली मात्र यही एक लड़की हुई। एक दूसरी लड़की गांव की ही सुमन यादव, हरहुआ ब्लॉक की है, और इसने जो है विश्व रैंकिंग में ये छठवां स्थान प्राप्त किया, जो गांव की रहने वाली थी, जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में उसके गार्जियन जब लेकर के आए तो उस समय कभी लॉन्ग जंप करती थी, कभी वॉलीबॉल खेलती थी, कभी कुछ करती थी। बाद में वॉलीबॉल एक दिन खेला रहे तो देखे वॉलीबॉल में सर्विस कर रही थी, तो सर्विस में देखी इसका पावर बड़ा अच्छा लगा, हमने कहा तो जेवलिन बढ़िया फेंक सकती है, इसको मैंने जेवलिन में डाला, और वही लड़की जेवलिन में आज एशिया में मेडल, सारे जगह मेडल, और वर्ल्ड की 6 रैंकिंग प्राप्त करना बहुत बड़ी बात।
0: कहने का मतलब ये है कि सरकारें जो प्रयास कर रही हैं अपने स्तर से ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का, लाने का, उसमें खेल निदेशालय और भारतीय खेल प्राधिकरण का एक बड़ा योगदान है।
1: जी जी
0: खास करके महिलाओं की जो प्रतिशत

0: लगता है।
1: जी
0: लड़कियां भी ग्रामीण क्षेत्रों से निकल करके आगे आए, दो चार पांच उदाहरण आपने दिए,
1: जी
0: इसको और बढ़ाए जाने की आवश्यकता है आज के
1: बिल्कुल
0: समय में।
1: जी बिल्कुल, बढ़ाने की
0: तो
1: आवश्यकता है।
0: वो जो बढ़ाने की आवश्यकता है उसे कैसे पूरा किया जा सकता है ताकि जो आने वाला भविष्य है हमारे देश का,
1: जी
0: खास करके खेलों में, वो उज्ज्वल हो।
1: इसको बढ़ाने के लिए पहले तो बच्चे का ब्रेन वॉशिंग करना है कि बच्चा उसके अंदर ये हो जाए कि हम खेल के बल से अपने करियर को बना सकते हैं।
0: जी
1: जैसे लोग पहले कहते थे, जब भी हम ही लोग छोटे थे गांव जाते थे, दौड़ने बलेरिया आवारा हो जाएगा, तो गार्जियन को यह बताना है। पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, आप पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, यह कहावत चलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब तो खेलों के माध्यम से, जैसे कहते हैं कि जिस प्रकार गाड़ी की पहिया तेज चलती है तेल से, उसी प्रकार बच्चों का दिमाग तेज होता है खेल से। तो इस खेलों को हमें गांव में ले जा करके सुदूर अंचलों में, ग्राम, भारत की 80% जनता गांव में रहती। अब तो लोग शहर में आना शुरू कर दिए, लेकिन जो गांव में रहता है उसको गांव ही अच्छा लगता है, और गांव में जो चीजें मिलती हैं, शुद्ध हवा, शुद्ध ऑक्सीजन, शुद्ध दूध, तो शहर की अपेक्षा कि गांव में ये सब चीजें तो अच्छी हैं, लेकिन ऑपरेटर्स उपकरण नहीं है। जैसे इसको लीजिए, पोल वॉल्ट है, इतना महंगा है, खरीद नहीं पाएगा खिलाड़ी। जेवलिन है, 75-80 हजार की जेवलिन एक आती है, कहां से खिलाड़ी कितना गेहूं चावल बेचेगा तो एक तो सामान खरीदेगा। तो इन सब चीजों के लिए सरकार ध्यान दे रही है, प्रशिक्षक गांव में जाकर के बच्चों को मोटिवेट करे। मोटिवेशन बहुत बड़ी चीज होती है।
0: निश्चित तौर पर, और ये मोटिवेशन सरकार तो अपनी तरफ से दे ही रही है, अभिभावकों के अंदर भी होना चाहिए ताकि वो अपने बच्चों को जागरूक करें, और खास करके जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ के युवा खिलाड़ी, चाहे वो लड़के हों चाहे वो लड़कियां हों, निकल करके आए और उनका भविष्य बहुत उज्ज्वल है, ऐसा सरकार के संस्थान का जो प्रयास है इसको देख करके लगता है। निश्चित तौर पर वो जब इस तरह की प्रतियोगिताएं धीरे धीरे करके जीतेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो अपने राज्य का, अपने देश का नाम तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय फलकों पर निश्चित तौर पर वो मशहूर करेंगे। नरेश सिंह जी, आज आप हमारे स्टूडियो में आए, हमारे श्रोताओं को इतनी आवश्यक और महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे नन्हे सिंह से अशोक पांडे की भेंटवार्ता, विषय था ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाएं। अब सुनिए एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, खेल और खिलाड़ियों की बात करते करते हम आ पहुंचे हैं भारतीय खेल प्राधिकरण के BHU कैंपस में, और आज हमारे साथ हैं भारतीय खेल प्राधिकरण में एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी, और साथ में हैं एथलेटिक्स में पार्टिसिपेट करने वाली ढेरों बालिकाएं। सर, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। चूंकि खिलाड़ी को बनाने में सबसे अहम भूमिका एक कोच की होती है, संजीव जी आप इन बच्चों के कोच हैं और स्पेशली आप एथलेटिक्स देख रहे हैं, तो सबसे पहला प्रश्न आपसे ही पूछा जाएगा, आपने एथलेटिक्स कोच बनने की प्रेरणा कहाँ से ली?
4: सबसे पहले मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हम खिलाड़ियों के लिए और हमारे भारतीय खेल प्राधिकरण के कैंपस में आई हैं, आपका स्वागत है, और आप हमारे बारे में जानना चाहती हैं, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। कोच बनने की प्रेरणा मैंने अपने फादर से ली, वो खिलाड़ी रहे हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी रहे, यूनिवर्सिटी मेडलिस्ट रहे, जेनेटिक था, खेले पढ़ते रहे, वो जानते थे कि इसका खेल, वो सारे स्कोप, चूंकि मेरे फादर थे तो उनको मेरे स्कोप के बारे में पता था, तो उन्होंने मुझको BPA MPED डिप्लोमा कराया। छोटी उम्र में ही मैंने कंटिन्यू कर लिया। उन्होंने कहा कि कोच बनने के लिए पटियाला जाना पड़ता है, डिप्लोमा लेना पड़ता है एथलेटिक्स में, तो मैंने कहा पापा अभी कोच तो नहीं बनना है, अभी तो मैं खिलाड़ी बन रहा हूँ। बोले वहाँ जाओ, वहाँ सारे कैंपर रहते हैं, उनको देखना और करना, वो तो मक्का मदीना है खेल का। मैंने गया वहाँ खेला, क्योंकि वैसे पढ़ने में ठीक ठाक, अच्छे विद्यालय से एजुकेशन रहा हमारा, खेल खेलते खेलते हम कोच बन गए, और जो हमारा पैशन है वही हमारा प्रोफेशन हो गया।
3: खेलते खेलते आप कोच बन गए और आपको लगा कि दूसरों को भी मुझे ट्रेनिंग देनी चाहिए। अच्छा संजीव जी, ये जो बच्चे सीख रहे हैं अभी तो इनकी शुरुआत है, आपको क्या लगता है कि एक अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए व्यक्ति में क्या गुण होने चाहिए?
4: अच्छा खिलाड़ी बनने के लिए एक व्यक्ति में ना ईमानदार हो, अनुशासन हो, और उसका आत्मबल बहुत मजबूत हो, उसमें विश्वास हो। जिस प्रकार एक बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी, ये जरूरी नहीं कि वो खिलाड़ी बन सकता है, लेकिन एक सामान्य सा बालक अगर वो मेहनत करेगा तो कंटिन्यू अनुशासन से, ईमानदारी से, तो एक ना एक दिन वो अच्छा खिलाड़ी बनेगा।
3: तो आपको लगता है कि एथलेटिक्स में, हम यहाँ पे विशेष तौर पे एथलेटिक्स खेलों की बात करेंगे, इसमें अनुशासन और मेहनत की विशेष भूमिका है?
4: हाँ मैम, बहुत ज्यादा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे ना, एथलेटिक्स ऐसा गेम है ना, टीम गेम में क्या होता है कि अगर एक खिलाड़ी ने खराब खेला तो 9 खिलाड़ी अच्छा कर जाते हैं, या 10 खिलाड़ी अच्छा करते हैं, तो उसकी जो कमियां होती छिप जाती हैं। लेकिन एथलेटिक्स ये है ना, आप जितना करेंगे उतना पाएंगे, हार्ड वर्क करेंगे तो अच्छा रिजल्ट पाएंगे, जितनी

0: जरा मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा आपकी उपलब्धियां रहेंगी। ये आप पे ही निर्भर है और आपके कोच पे, आपको खुद करना है और खुद ही पाना है।
1: बिल्कुल, कोच के साथ साथ खिलाड़ी की स्वयं की मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। तो संजीव जी, खिलाड़ियों की मानसिक तैयारी यानी मेंटल प्रिपरेशन जो है वो भी बेहद जरूरी होती है, आप उनको मानसिक रूप से तैयार करने में किस तरह मदद करते हैं?
0: एक दूसरे खिलाड़ी को दिखाकर, जो आपस में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो इनसे बाद में शुरू करते हैं और इनसे आगे चले जाते हैं, या जो इनसे आगे रहते हैं और उनसे कहते हैं देखो उसने प्रैक्टिस नहीं की तो देखो ये पीछे होगी, आपने प्रैक्टिस की आप आगे गई। मोटिवेशन से वो दो प्रकार के होते हैं, सेल्फ और एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल। और आजकल तो आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर ढेर सारे स्पीच देने वाले हैं, इनकी बीच बीच में भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा साइकोलॉजी क्लासेस भी चलती रहती है, वो प्रोफेसर लेक्चर इनको साइकोलॉजी रूप से ट्रीट करते रहते हैं, उनको मोटिवेट करते रहते हैं। कोच का काम तो है ही करना मोटिवेट कि बेटा ये ऐसे करोगे तो ये होगा, वैसे करोगे तो ये होगा। तो साइकोलॉजी का बहुत बड़ा रोल है स्पोर्ट्स के लिए और इनके परफॉर्मेंस के लिए।
1: जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। संजीव जी, आपको क्या लगता है कि सिर्फ बताना और उनको तैयार करना, इसके अलावा एक कोच और खिलाड़ी के बीच में कितने एक विश्वास का बंधन होना भी उतना ही जरूरी है?
0: बहुत जरूरी होता है। एक कोच होता है जो ना, वो एक प्रकार से पिता होता है, और एक पिता सोचता है समझता है कि बच्चे को कब क्या किस चीज की जरूरत है। एक और एग्जांपल मैं दे सकता हूँ, जैसे हम घोड़ सवारी में या घुड़दौड़ में ना, राइडर और घोड़े के बीच का संबंध जो होता है ना, वो उसकी हार्ट बीट से जो थपकी देता है तो घोड़ा बहुत तेज भागता है। उसी प्रकार बच्चे की फीलिंग्स और कोच की फीलिंग्स, उसकी आई टू आई कॉन्टैक्ट, इमोशन टू इमोशन जुड़ाव बच्चे को बहुत आगे ले जाता है। कोच कुछ कहना चाहे बच्चा उसे पहले समझ जाए, ऐसी बाउंड्री होनी चाहिए कोचेज और ट्रेनेज में।
1: कुछ इवेंट्स की बात करेंगे, एथलेटिक्स में अलग अलग तरह के खेल होते हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं।
0: बोलता है एथलेटिक्स तीन चीज पे आधारित होता है, रनिंग, थ्रोइंग और जंपिंग। रनिंग में ढेर सारे इवेंट्स होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 800 मीटर, 1500 मीटर, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, लड़कियों की 100 मीटर रेस, 3000 मीटर रेस, 5000 मीटर रेस, मैराथन, इससे ऊपर वॉक रेस होती है ढेर सारी, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, ये हमारे रनिंग इवेंट्स हैं। इसी प्रकार हम जंप इवेंट्स की बात करते हैं तो उसमें चार जंप्स होते हैं, लॉन्ग जंप होता है, ट्रिपल जंप होता है, हाई जंप होता है, पोल वॉट होता है। फिर हम थ्रो में आते हैं तो चार प्रकार के थ्रो होते हैं, शॉर्ट पुट, डिस्कस, हैमर, जेवलिन थ्रो। समानता 26 होते हैं, ये हर बार बढ़ते घटते रहते हैं ओलंपिक के अनुसार। अब चूंकि देश विकसित कर रहा है, समाज विकसित कर रहा है, तो आवश्यकता के अनुसार से इवेंट्स बढ़ाए जाते हैं या कम किए जाते हैं।
1: कोच सर, हम आपके पास प्रश्नों की बौछार लेके फिर आएंगे, लेकिन जो बच्चे हैं हमारे साथ, थोड़ी उनसे भी बात कर ली जाए, चूंकि इवेंट्स की बात हो ही रही है। तो बच्चों, जय हिंद।
2: जय मैम।
1: सबसे पहले तो जल्दी जल्दी आप लोगों का नाम जान लेते हैं, है ना? तो अपना नाम बताइए और कहाँ से हैं वो बताइए।
3: मैं अंकिता देवरिया।
4: मैं अदिति राय गाजीपुर से।
5: मैं आरती सोनमठ से।
6: मैं सेजल शिवापुरी से।
7: मैं मीनाक्षी टिकरी से।
8: मैं शिवानी यादव जो की जौनपुर की रहने वाली।
9: मैं आर्य सिंह बाबतपुर से।
10: मैं रिचा यादव बाबतपुर की।
11: मैं खुशी पटेल आयर से।
12: प्रशिष्टि मैं उन्नाव से।
13: गुंजन यादव जौनपुर से।
14: पलक यादव चंदौली।
15: अपूर्वा गुजर फिरोज आवाज।
1: तो बच्चों, जब आप लोग ट्रेनिंग करती हैं, थोड़ा सा आप लोगों के रूटीन के बारे में जानना चाहेंगे, सवेरे से शुरुआत करें।
16: सुबह 5 बजे उठते हैं, तैयार होते हैं, ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, फिर आते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके बाद थोड़ा नहाते हैं, रेस्ट करते हैं, उसके बाद खाना खाने के लिए आएंगे दोपहर का।
10: लंच के बाद फिर थोड़ा पढ़ना रहते तो पढ़ लेते, फिर उसके बाद 4 बजे फिर ग्राउंड जाते, फिर वर्कआउट करते, फिर 6 बजे आते हैं वर्कआउट के बाद, 8 बजे फिर नाश्ता करते,
8: 6 बजे के बाद आते हैं, फिर उसके बाद जो भी वहाँ पे नींबू पानी वगैरह पीना होता है वो पीते हैं, फिर सर के साथ असेंबली होती है, फिर रात का खाना होता है, उसके बाद फिर मैम असेंबली कराती हैं, फिर हम लोग ऊपर जाते हैं, जो भी पढ़ना होता है वो पढ़ते लिखते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: तो जनरली आपका दिन कितने बजे तक खत्म होता है? लास्ट कॉल
16: 10 बजे तक।
1: तो बच्चों, मतलब क्या सोचा आपने कि हमें स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना है, ऐसा क्यों?
16: मेरा नाम खुशी पटेल है। मैं गेम खेलना मुझे बहुत पसंद है, मेरे घर वालों ने भी बहुत फोर्स किया है मुझे गेम खेलने के लिए। फिर स्कूल में ऐसा गेम होता था तो मैं गेम खेलती थी, तो मेरे सर भी बोलते थे कि तुम प्रैक्टिस किया करो, गेम खेला करो हमेशा। हमने बोला ठीक है सर, हम करेंगे। फिर मेरे घर वाले सबसे ज्यादा मुझे सपोर्ट किए गेम के लिए, फिर मैं धीरे धीरे करती गई, 1-2 साल घर पे प्रैक्टिस किए, गेम खेले, स्टेट तक घर पे मेडल दिया है, फिर उसके बाद साई हॉस्टल का ट्रायल दिए बीएचयू का, फिर यहाँ पे आ गए हैं, हॉस्टल में हो गया, 2 साल से हॉस्टल में रहते हैं।
1: तो खुशी, आप क्या खेलती हैं?
16: मैं 100 मीटर हर्डल करती हूँ और लॉन्ग जंप करती हूँ।
1: अच्छा। प्रशिष्टि, आप क्या खेलती हैं?
17: मैं ट्रायथलॉन और हर्डल करती हूँ।
1: आप कब से खेल रही हैं?
17: मैं अभी यहाँ पे 5-6 महीने से आई हूँ, और सर के अंडर में बहुत ज्यादा हमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, और सर हमारे लिए एज अ पेरेंट्स होते हैं, उसी हिसाब से हमारी वैसे ही केयर

0: हैं और हमें वैसे ही समझाते हैं। हम इसके लिए सर के बहुत ज्यादा थैंकफुल हैं।
1: तो सर के पास वापस चलते हैं। कोच सर, ये अगला प्रश्न आपके लिए। इतने बच्चों को संभालना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है, कैसे मैनेज करते हैं?
2: मुश्किल से नहीं होता है, ये हमको समझते हैं, हम इनको समझते हैं, और भी कोचेज रहते हैं जो ट्रेनिंग कराते हैं। हमने पहले ही बता दिया था कि ये मेरा पैशन है जो प्रोफेशन बदल गया है, तो जितनी ज्यादा ट्रेनिंग कराने का मौका मिलता है और ये करते हैं बहुत हार्ड वर्क, जब ये हार्ड वर्क करते हैं तो हमको कराने भी मजा आता है।
1: संजय जी, जब हम खेलों की बात करते हैं तो खेल, खिलाड़ी और चोट बहुत आम बात है, तो जब बच्चों को किसी चोट का सामना करना पड़ता है तो उनको किस तरह मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से आप किस तरह सपोर्ट करते हैं?
2: बिना सपोर्ट कुछ हो नहीं सकता मैम। अगर खिलाड़ी बनना है तो बहुत ढेर सारी चोटों का सामना करना पड़ता है, रोज चोट लगनी ही है, क्योंकि हम ऐसे मूवमेंट्स करते हैं जो सामान्य से बहुत ऊपर रहते हैं, जिसमें ढेर सारी इंजरी, एंकल ट्विस्ट, नी इंजरी, स्टमक पेन, कुछ भी मतलब बाहरी और आंतरिक ढेर सारी चोटें लगती हैं। इनके लिए बीएचयू में अगर ज्यादा चोट लगती है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वार्डन मैम होती हैं, इनको डॉक्टर के पास ले जाती हैं, या फिर उनसे नहीं ठीक होता है तो बड़े बड़े डॉक्टरों को कंसल्ट करते हैं। इनके लिए साई ने व्यवस्था की है इनकी चोटे के लिए और उनका उपचार होता है।
1: कुछ सावधानियां भी बरतनी होती हैं?
2: बिल्कुल, सावधानियां तो बरतनी
1: खेल के दौरान।
2: हाँ, खेल के दौरान सावधानियां, ट्रेनिंग ऐसी होनी चाहिए जिसमें चोट कम हो। अब ट्रेनिंग बहुत साइंटिफिक हो गई है तो हम कुछ भी कभी भी नहीं कर सकते, कब क्या करना ये एक सुनिश्चित होता है, सुनिश्चित होता है। अब ऐसे इक्विपमेंट्स भी आ गए हैं जिससे आपको चोटें कम लगती हैं, और कोच को ये सारी बातें बताई जाती हैं कि कैसे ट्रेनिंग करानी है कि चोट कम से कम लगे, और चोट लगे तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले क्या उपचार देना है। जैसे अगर चोट लग गई है, थोड़ी सूजन है, तो सबसे पहले आइस देना है, थोड़ा सा उसको 10-12 घंटे देखना, अगर सामान्य चोट है तो। उसके बाद अगर वो आप नहीं तो फिर अच्छे डॉक्टर के पास लेके जाना उसको।
1: अच्छा, श्रद्धा, बातचीत के सिलसिले में अब हमसे जुड़ गए हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया बीएचयू कैंपस के वरिष्ठ कोच श्री जगदीश द्विवेदी जी।
3: थैंक यू मैडम।
1: सर, साई की जो बच्चों के लिए जो सुविधाएं हैं और आगे जो उज्जवल भविष्य है बच्चों का, उसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे कि किस तरह की सुविधाएं साई इन बच्चों को उपलब्ध करा रहा है ट्रेनिंग से जुड़ी।
3: मैडम, ये बता दें कि एक जो बीएचयू सेंटर है वो गर्ल्स हॉस्टल छात्रावास जो है वो पूर्वांचल का पहला साई छात्रावास है, और ये इसलिए यहाँ ओपन किया गया था कि हमारे जो पूर्वांचल के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, उनको इस सुविधा मिल सके। तो हमारे कुछ नॉर्म्स हैं जो हम सिलेक्शन जब करते हैं ऑल इंडिया लेवल पे, और ये ऑल इंडिया लेवल पे ही है, लेकिन हम प्रेफर करते हैं कि हमारे पूर्वांचल के बच्चियां ज्यादातर इसमें आए। तो कुछ हमारे मोटर एबिलिटी टेस्ट है
1: जी,
3: जो हम टेस्ट लेते हैं और उसके बाद मूल्यांकन करते हैं, फिर मेरिट के आधार पे उनको एडमिशन मिलता है।
1: सर, सुविधाओं की थोड़ी सी जानकारी दे दीजिए।
3: सुविधाएं की देखिए, आपको एक नेशनल आपके इंटरनेशनल कोच, टेक्निकल कोच मिलते हैं जो साइंटिफिक तरह से कोचिंग देते हैं, जिसका कि कोई एक तो बहुत बड़ी सुविधाएं आपको ये मिलती हैं, और इक्विपमेंट वगैरह हमारे सब नेशनल ओलंपिक लेवल के यहाँ पे रहते हैं, जो भी सुविधाएं हैं, जिम इक्विपमेंट वगैरह है, जिम्स है, जो भी सुविधाएं हैं वो काफी काफी अच्छा तरह से यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बाकी हॉस्टल की, हाँ, हॉस्टल की जो सुविधाएं हैं यहाँ पे वो काफी अच्छी हैं, इस पे जो भी बैलेंस डाइट वगैरह काफी अच्छी मिलती है यहाँ पे, और जो बैलेंस डाइट जो बनाया गया है एक नेशनल लेवल चार्ट पे बनाया गया है, ताकि बच्चों को भरपूर जो पोषक तत्व मिल सके।
1: हमारे इस बीएचयू कैंपस से क्या बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक गए हैं खेलने?
3: जी हाँ, बच्चे, मैडम यह कि यहाँ से बच्चे इंटरनेशनल लेवल पे गए हैं और नेशनल मेडल भी इन्होंने लिया है। नॉर्थ जोन चैंपियनशिप हुआ था जिसमें हमारे करीब 10 मेडल आसपास, 10 गोल्ड मिले हुए हैं, कुछ ब्राउन्स हैं, कुछ सिल्वर्स हैं, तो ये काफी अच्छा अचीवमेंट है, और आगे आने वाले जो भी हमारे टूर्नामेंट है नेशनल में श्योर मेडल मिलेंगे।
1: बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच।
1: कोच सर के लिए खास प्रश्न है कि खिलाड़ियों का पोषण बेहद जरूरी होता है फिटनेस के साथ साथ, तो पोषण और फिटनेस पर खिलाड़ियों को आप क्या विशेष तौर पर सलाह देंगे?
2: मैम, पोषण बहुत जरूरी है, और हमारे ये भारतीय खेल प्राधिकरण संस्था है, तो जैसे हम कोचेज नियुक्त हैं वैसे हमारे न्यूट्रिशियन भी नियुक्त हैं, साइकोलॉजिस्ट भी नियुक्त हैं, तो बड़े बड़े न्यूट्रिशियन से मिलकर इनके लिए एक चाइल्ड डाइट बनाई जाती है, क्या खाना है, कब खाना है, ब्रेकफास्ट में क्या होगा, लंच में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, इनका एक मीनू तैयार वही इनको दिया जाता है, उस हिसाब से सोमवार को क्या खाना है, मंगलवार को क्या खाना है, क्या मीनू है, वो उसको दिया जाता है। फिटनेस की बात पे अगर खिलाड़ी फिट नहीं रहेगा तो वो इंजर्ड ज्यादा होगा और उसकी परफॉर्मेंस नहीं आएगी, और परफॉर्मेंस नहीं आएगी तो आजकल सब लोग परफॉर्मेंस को ही मानते हैं, खिलाड़ी नहीं रहेगा वो बाहर हो जाएगा, इसलिए फिटनेस बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा फिट इंसान रहेगा उतनी कम इंजरी और उतनी ज्यादा परफॉर्मेंस आएगी, तो फिटनेस कराने के लिए तो हम कोचेज इसलिए नियुक्त हैं ताकि फिट रहें और इनकी परफॉर्मेंस

0: पहुंचा सके और ये आगे देश का नाम रोशन कर सके।
1: जी बिल्कुल सही बात है। तो इवेंट के हिसाब से सबके हर खिलाड़ी की न्यूट्रिशनल वैल्यू अलग रहती है, तो सबका डाइट चार्ट अलग रहता है।
0: जी मैम, जैसे जो थ्रोअर हैं उनको प्रोटीन की ज्यादा आवश्यकता है, जो हाई जंपर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रनर हैं उनको कार्बोहाइड्रेट की थोड़ी कम आवश्यकता होती है, लेकिन जो थ्रोअर होते हैं उनको, हर खिलाड़ी का अपना अलग अलग होता है, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे होता है तो यहाँ पे उस हिसाब से इंडिया कैंप के हिसाब से थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जब इससे बड़े हॉस्टल में जाते हैं तो इससे ज्यादा इनका वो होता है। हर एक खिलाड़ी के लिए अलग कोच, इवेंट वाइज अलग न्यूट्रिशियन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, मसाजर, सब कुछ रहता है।
1: संजीव जी, भारत में एथलेटिक्स के भविष्य को आप कहाँ देख रहे हैं?
0: अब तो मैम भविष्य फ्यूचर ही दिख रहा है। लोग अपने बच्चों को डॉक्टर, आईएएस, पीसीएस कम बनाना चाह रहे हैं, खिलाड़ी ज्यादा बनाना चाह रहे हैं।
1: मैंने ये प्रश्न विशेष तौर पे इसलिए पूछा क्योंकि जब भारत में विशेष तौर पे जब खेलों की बात होती है तो सबसे ऊपर क्रिकेट रहता है, उसके बाद फिर हम हॉकी देख लेते हैं। एथलेटिक्स इस मामले में अभी बहुत नीचे है, चाहे वो हमारे रनर्स हों चाहे हाई जंपर्स हों, लेकिन अब धीरे धीरे धीरे इन इवेंट्स में भी बच्चे आगे आ रहे हैं। ये प्रश्न मैंने इसीलिए पूछा कि आगे एथलेटिक्स का भविष्य भारत में कहाँ है।
0: मैम बहुत अच्छा है आगे। क्रिकेट खेलने के लिए 11 खिलाड़ी चाहिए, लेकिन रनिंग के लिए ना
1: एक अकेला ही काफी
0: है, और शुरुआत हो गई है। अभी नीरज चोपड़ा जी ने हमारे मेडल लेके आए हैं ढेर सारे। अभी क्रिकेट हॉकी तो हमको लग रहा है थोड़े कम हो गए हैं, अब बॉक्सिंग, आर्चरी, रेसलिंग, एथलेटिक्स तो बहुत तेज विकास हो रहा है, और हर एक गांव में अब साई की ढेर सारी स्कीम है, तो ग्रास रूट पे काम हो रहा है। कोचेज अगर जो बच्चे हॉस्टल में नहीं है वहीं पे कोच की नियुक्ति कर दे रहे हैं हर एक जिले में, जो वहाँ का इंटरनेशनल खिलाड़ी है या नेशनल मेडलिस्ट है उसको भी व्यवसाय मिल जा रहा है, रोजगार मिल जा रहा है, और आधारभूत सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध करा दे रहे हैं ताकि खिलाड़ी ग्राउंड पे जाए और प्रैक्टिस करके वहाँ से अगली नेक्स्ट स्कीम में ऊपर जाए साई में। तो बहुत तेज से काम हो रहा है, बहुत अच्छा फ्यूचर है। मैम मैंने बोला ना कि अब पहले लोग कहते थे कि खेलोगे कूदोगे होगे खराब, अब लोग कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे होगे तो लाजवाब, तो खेल का फ्यूचर अच्छा है। मैम अब ये बनारस है, छोटा सेंटर है, लेकिन अभी बच्चों ने इसमें बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। प्रदेश में साई हॉस्टल की बालिकाओं ने 19 मेडल लेके आई।
1: श्रोताओं, भारतीय खेल प्राधिकरण यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीएचयू कैंपस में आज हम थे और हमने बात की एथलेटिक्स के कोच संजीव श्रीवास्तव जी से। साथ में जो बच्चे थे वो एथलेटिक्स के अलग अलग क्षेत्रों में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सीख रहे हैं, वो बच्चियां थी हमारे साथ। सर, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा और स्पेशली इन बच्चियों से बात करके बहुत अच्छा लगा। जब हम स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो खिलाड़ी के नाम पर हमारे सामने सिर्फ मेल खिलाड़ी आते हैं, लेकिन अब आज हम देख रहे हैं कि स्पेशली एथलेटिक्स में भारत का भविष्य बहुत उज्ज्वल है।
0: हाँ मैम बिल्कुल, महिलाएं पुरुषों से कहीं कमजोर नहीं है और अब तो ये आद सकती है तो महिलाएं अब आगे हो गई है पुरुषों से, इसमें कोई शक नहीं है। और यह हम कहते थे कि महिलाएं कुछ नहीं कर सकती, ये वो महिलाएं तो प्लेन उड़ा रही हैं, सीमा पे जा रही हैं, वो कुछ भी कर सकती हैं, परिवार देख सकती हैं, पढ़ सकती हैं, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती हैं, खिलाड़ी बन सकती हैं, और देश का प्रतिनिधित्व भी हमारी महिला राष्ट्रपति जी कर रही हैं। तो महिलाओं के बारे में अब जिनको कोई संशय हुआ वो अपने दिमाग से निकाल दें।
1: धन्यवाद संजीव जी, आपसे बात करके हमें अच्छा लगा।
2: अभी आप सुन रहे थे एथलेटिक्स कोच जगदीश द्विवेदी और संजीव श्रीवास्तव से आकांक्षा सिंह की बातचीत। इसी के साथ संपन्न होता है कार्यक्रम खेल दर्पण का आज का अंक। वाचन, संपादन और प्रस्तुति चंदन कुमार सिंह की।
3: श्रोताओ, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के वाराणसी केंद्र पर तैयार किया गया और लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर रात्रि के 10:30 हुए हैं। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं पंडित भीमसेन जोशी और धोंदुदाई कुलकर्णी का ख्याल गायन। सबसे पहले पंडित भीमसेन जोशी का गाया राग शुद्ध कल्याण में ख्याल सुनते हैं।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आप सुन रहे थे धौंदुताई कुलकर्णी का ख्याल गायन। शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम अब संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 11 बजे हैं। थोड़ी ही देर में आप हमारा अगला कार्यक्रम सुनेंगे, प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नॉर्डिक देशों के साथ भारत की भागीदारी को पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी और नवाचार रणनीतिक भागीदारी के स्तर पर ले जाने का निर्णय लिया गया है। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में आयोजित तीसरे भारत नॉर्डिक सम्मेलन के बाद श्री मोदी ने ये बात कही।
1: आज हमने भारत और नॉर्डिक संबंधों को ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का स्वरूप देने का निर्णय लिया है। इस ग्रीन टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप से हम आइसलैंड की जियो थर्मल और फिशरीज, नॉर्वे की ब्लू इकोनॉमी और आर्कटिक और सभी नॉर्डिक देशों की मैरिटाइम और सस्टेनेबिलिटी की एक्सपर्टीज भारत के स्केल के साथ जोड़कर पूरे विश्व के लिए एक बेहतर भविष्य सुनिश्चित करेंगे।
0: प्रधानमंत्री ने भारत नॉर्डिक संबंधों में विस्तार का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले एक दशक में द्विपक्षीय व्यापार में 4 गुना वृद्धि हुई है।
1: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब्स क्रिएट किए हैं।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों पक्षों के बीच अनुसंधान, कौशल विकास और प्रतिभा के आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, प्रयोगशालाओं और स्टार्टअप तंत्र के स्तर पर सहयोग मजबूत किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और नॉर्डिक देश आतंकवाद के खिलाफ कड़ा रुख रखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 5 देशों की यात्रा के अंतिम चरण के लिए इटली रवाना हो गए हैं। वे देर रात राजधानी रोम पहुंचेंगे। श्री मोदी का 2 दिन का दौरा

0: अपार निवेश और तकनीकी नवाचार के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करेगा। इटली में भारत की राजदूत वाणी सर्राजू राव ने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के बीच आगामी वर्षों में प्रतिभा का आदान प्रदान, नवाचार और गतिशीलता के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 3 दिन की यात्रा पर आज दक्षिण कोरिया की राजधानी सोल पहुंचे। रक्षा मंत्री दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री आन ग्यू बैक के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता रक्षा और सहयोग की समीक्षा करेंगे तथा द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए नई पहलों पर चर्चा करेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नई दिल्ली में एक उच्च स्तरीय बैठक में नीट यूजी की दोबारा परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की। परीक्षा के आयोजन में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता की जरूरत पर बल देते हुए श्री प्रधान ने निर्देश दिया कि पिछली परीक्षा प्रक्रिया में पाई गई सभी कमियों को पूरी तरह से दूर किया जाए। इस बीच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले में जांच तेज कर दी है। सीबीआई ने महाराष्ट्र के लातूर जिले में स्थित रेणुकाई केमिस्ट्री क्लासेस कोचिंग सेंटर में एक और तलाशी अभियान चलाया। सर्वोच्च न्यायालय ने जनसुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रेबीज से संक्रमित और जानलेवा कुत्तों को मौत का इंजेक्शन देने की अनुमति दी है। न्यायालय की पीठ ने देश में आवारा कुत्तों की बढ़ती संख्या से निपटने के मद्देनजर कई निर्देश जारी किए हैं। कलकत्ता उच्च न्यायालय आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आगे की जांच के लिए पीड़िता के अभिभावकों और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के आवेदन पर बृहस्पतिवार को सुनवाई करेगा। भारतीय रेलवे का विद्युतीकरण अब 99.6% तक पहुंच गया है। देश में 69,873 किलोमीटर से अधिक रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया जा चुका है। मणिपुर के महान नाटा संकीर्तन गुरु युमनाम जात्रा सिंह को 25 मई को राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नागरिक अलंकरण समारोह के दौरान यह पुरस्कार प्रदान करेंगी। मौसम विभाग ने बृहस्पतिवार तक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में रातें अधिक गर्म रहने का रेड अलर्ट जारी किया है। कल पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली एनसीआर में भी भीषण लू की चेतावनी है। अगले 2 से 3 दिनों तक हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, दक्षिण पश्चिम बिहार और उड़ीसा में लू चलेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। ENTA and the Nordic nations comprising Norway, Sweden, Denmark, Finland and Iceland have elevated their bilateral ties to a green technology and innovation strategic partnership. Mr. Modi made the announcement while addressing a joint press meet with leaders of Nordic nations after attending the third India-Nordic summit in Norwegian capital Oslo today. Prime Minister Modi said investments from Nordic countries in India rose by 200% in past decade.
2: 10 वर्षों में हमारा बायलेटरल ट्रेड लगभग 4 गुना बढ़ा है। नॉर्डिक देशों के इन्वेस्टमेंट फंड भी भारत की रैपिड ग्रोथ में अहम साझेदार बन रहे हैं। पिछले एक दशक नॉर्डिक देशों से भारत में निवेश में लगभग 200% की बढ़ोतरी हुई है। तेजी से बढ़ते ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट ने भारत की ग्रोथ स्टोरी में तो योगदान दिया ही है, साथ ही नॉर्डिक देशों की अर्थव्यवस्थाओं में भी बहुत सकारात्मक भूमिका निभाई है और हजारों नए जॉब क्रिएट किए हैं।
1: Prime Minister Modi affirmed that the relations between India and the Nordic countries are set to usher in a new golden era with the recently concluded trade agreements including Trade and Economic Partnership and India-EU Free Trade Deal. On terrorism, Mr. Modi said the two sides have a clear and united stand, no compromise, no double standards. Speaking on the occasion, the Prime Ministers of Norway, Sweden, Iceland, Finland and Denmark reiterated their commitment to shared values of democracy, a rules-based global order and urgent reforms in multilateral institutions in today's changing world. Acknowledging India's global stature, they stressed the need for enhanced cooperation with New Delhi as countries sharing similar values, particularly to address the challenges of conflict and global disruptions. Prime Minister Modi has since left for Italy on the fifth and final leg of his five-nation tour after concluding his visits to Norway, Sweden, the Netherlands and UAE. Mr. Modi is set to arrive in Italy's capital Rome later tonight.